ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:48 हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी पहली सभा।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चिंतन से। वाचन और निर्माण सुरेंद्र झा का है।
1: महान आविष्कारक सर हेम्फ्री डेवी एक बेर बाजार में ठाड़ छला। दुपहरियाक समय छल। तेज रौद हुनक अनावृत माथ पर सोझे लागि रहल छल। कारण हुनका माथ पर टोपी नहीं रहनि। सौंसे देह पसेना से तर भ रहल छलनि। क्यों परिचित ओम्हर दने जा रहल छल। सर डेवी के यह स्थिति में देखि ओ पुछलकनि, सर अहाँ यही दुस्सह रौद में एना किएक ठाड़ छी? अहाँक माथ पर टोपियो नहीं अछि, शरीर पसेना से लथपथ भ रहल अछि। सर हम्फ्री डेविक आँखि में नोर डबडबा गेलनि। ओ दुखी स्वर में बाजला, हमरा एखन अपना युवावस्थाक एकटा बात मोन पड़ि गेल अछि। एक बेर हमर वयोवृद्ध पिता किछु वस्तुजात आनक लेल बाजार जाय कहलनि। एहने विकट रौद छलैक। हम कहलियनि यही रौद में हम बाजार नहि जायब। बाजार जायब आवश्यक छल। पिता हमरा दोहरा कऽ पुनः किछु नहि कहलनि आ स्वयं झोरा लऽ कऽ बाजार विदा भऽ गेला। हमरा पिताकेँ ओहि दिन बाजार जयबामे कतेक कष्ट भेल हेतनि तकरे स्मरण कय हम ग्लानिक अनुभव कऽ रहल छी। हम तऽ युवा रही, कष्ट सहन कय सकैत रही। बाजार जयबामे हमरा विशेष शांति नहि होइत, किन्तु हमरा पिताकेँ तऽ अतीव कष्ट भेल हेतनि जकर उत्तरदायी हम स्वयं के बुझै छी। ओहि समय में हमरा एकर आभास नहि भेल, किन्तु आइ जखन हम अपनहूँ ओही अवस्था के प्राप्त भऽ गेल छी, बुझि रहल छी जे हम कतेक पैघ अपराध केने रही। दैनन्दिन जीवन में हमर व्यवहार सुविचारित आ शिष्ट हेबाक चाही। स्वजन परिजन समस्त मानव समाज विशेष कऽ घरक वृद्धजनक प्रति हमर व्यवहार एहन हो जाहिसँ हमरा कहियो पश्चाताप नहि करय पड़य।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख वाचन और निर्माण सुरेंद्र झा का था। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुनते हैं कृषि चर्चा। विषय है सूत्रकृमि का नियंत्रण। वाचन और निर्माण आशुतोष कुमार झा का है।
3: आजुक कृषि

0: चर्चा के संग हम आशुतोष कुमार झा। किसान भाई लोकन, आजुक कृषि चर्चा के संग हम आशुतोष कुमार झा। किसान भाई लोकन, आजुक दिन के चर्चा के विषय है सूत्रकृमि के नियंत्रण कोना करी। किसान भाई लोकन, सूत्रकृमि पौधा सभक जड़ के नुकसान पहुँचाबत जैसे ओकर पैदावार घटि जात एकरा नियंत्रित करबाक लेल गहीर जोताई कऽ खेत के रौदा देखाबी। किसान भाई लोकनि, सूत्रकृमि पौधा सभक जड़ में रहे ओकरा भीतर से खोखला कऽ दैत अछि जाहिसँ पौधा सभक वृद्धि रुकि जात अछि आ पात पियर पड़ि जात अछि। एकरा प्रभावी ढंग से नियंत्रित करबाक लेल कारगर तरीका अपनिया ओकर निदान करी। किसान भाई लोकनि, जैविक नियंत्रण करबाक लेल नीमक खल्ली एकटा आवश्यक चीज अछि। खेतक तैयारी के समय नीमक खल्ली के प्रयोग करबासँ सूत्रकृमि सभक संख्या में कमी आबैत अछि। किसान भाई लोकनि, अपना सब एक बेर फेर से बुझि ली, सूत्रकृमि माटि में रह वाला सूक्ष्म कीड़ा होइत अछि जे पौधा के जड़ के नुकसान पहुँचाबैत अछि। एकरा नियंत्रित करबाक लेल गहीर जोताई आ गेंदा के फूल के सह फसिल नीमक खल्ली के उपयोग, जैविक एजेंट जेना कि ट्राइकोडर्मा और आवश्यकता के अनुसारे दवाई सभक उपयोग करबाक चाही। किसान भाई लोकनि, एकरा लेल किछ जैविक आ प्राकृतिक उपाय सेहो अछि जेना कि फसिल चक्र। किसान भाई लोकनि, एक ही खेत में बेर बेर एक ही फसिल नहीं उगाबी। सूत्रकृमि से बचबाक लेल दलहनी यानी कि चना मटर वा फिर सरसों के फसिल लगाबी। गेंदा के खेती, मुख्य फसिल के बीच बीच में गेंदा एकर फूल अपना सब लगा सके छी। गेंदा के जड़ एहन रसायन छोड़त अछि जे सूत्रकृमि के नष्ट कऽ दैत अछि। नीमक खल्ली बुआई वा रोपाई के समय खेत में 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से नीम के खल्ली मिलाबी। ई प्राकृतिक रूप से सूत्रकृमि के दूर राखैत अछि। जैविक कीटनाशक, किसान भाई लोकनि, पेसिलोमाइसिस लेलाइसिनस वा फिर ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास के उपयोग माटि में करी। संगहि अपना सबके कृषि वैज्ञानिक से अवश्य सौ समय सलाह लैत रहबाक चाही। एकर किछ भौतिक और यांत्रिक उपाय सेहो अछि। मृदा सौरीकरण, गर्मी के मौसम यानी कि मई जून में खेत के गहीर जुताई कऽ ओकरा किछ दिन खुलल छोड़ दी जाहिसँ कि तेज रौदा में कीड़ा नष्ट भऽ जाय। नमी भेला पर खेत में पारदर्शी पॉलीथीन बिछा कऽ ओकर किनारी के दबा दी। ऐसे माटिक तापमान बढ़वा से सबटा हानिकारक कीड़ा खत्म भऽ जात अछि। किसान भाई लोकनि, खेतक जुताई कऽ कऽ किछुए दिन में खेत में पानि भरि दी। एहन केला से सूत्रकृमि नष्ट भऽ जात अछि। एकर किछ रासायनिक उपाय सेहो अछि जेना कि रोपाई से पहले पौधा सबके जड़ के कार्बोसल्फान वा फिर आन अनुशंसित निमेटिसाइट के घोल में 2 घंटे डुबा कर राखी। माटि में दवाई देनाय यानी कि संक्रमण बेसी भेला पर कृषि विशेषज्ञ के सलाह के अनुसारे कार्बोफ्यूरॉन वा फिर फोरेट के इस्तेमाल बुआई के समय माटि में करी। किसान भाई लोकनि, अइ तरहें जखन अपना सब सूत्रकृमि पर पूरा तरहें ध्यान राखब, ओकर निगरानी राखब, तखने एकरा नियंत्रित कऽ सकब। एकरे संग आजुक कृषि चर्चा के एतहि विराम दैत आशुतोष कुमार झा के विदा देल जाओ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा, विषय था सूत्रकृमि का नियंत्रण कैसे करें। वाचन और निर्माण आशुतोष कुमार झा का था।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program.
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा।
2: आज की स्वास्थ्य चर्चा में चर्चा का विषय है माइग्रेन यानी अर्धकपाली। बतौर विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद यासीन हमारे साथ हैं। डॉक्टर यासीन, ये माइग्रेन जब हम बोलते हैं डॉक्टर साहब, तो इसका अर्थ क्या है?
3: माइग्रेन एक तरह का सर दर्द है। इसके बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। इसे अर्धकपाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि अमूमन ये दर्द जो है आधे सर से शुरू होता है। ये सिर के दाएं या बाएं भाग में हो सकता है और ये अपना स्थान बदल सकता है, और ये सिर के एक तरफ होने के साथ साथ और भी बहुत सारी इसकी लक्षण है। सर दर्द के साथ उल्टी हो जाना, 4 घंटे से ज़्यादा का सर दर्द रहना, फोनोफोबिया या आवाज़ का पसंद ना आना, फोटोफोबिया या रोशनी का पसंद ना आना, ज़्यादा दूर तक सफ़र करने के बाद दर्द शुरू होना। पुरुषों की तुलना में माइग्रेन महिलाओं में 3 गुना ज़्यादा होता है। कुछ महिलाओं में मासिक शुरू होने से 3 दिन पहले, मासिक ख़त्म होने के 3 दिन बाद तक ये कुछ महिलाओं में दर्द की संभावना माइग्रेन वाली ज़्यादा हो सकती है।
2: अन्य जो सर दर्द है उससे और माइग्रेन का जो दर्द होता है सर दर्द, उसमें क्या फर्क है?
3: अन्य दर्द जो होता है वो सिर के किसी हिस्से में हो सकता है। माइग्रेन का दर्द टेम्पोरल साइट माने कान के ऊपर वाले हिस्से में विशेषकर होता है। दर्द के साथ उल्टी होना और ये थ्रॉबिंग हेडेक होता है, सिर में लगेगा धड़कन के साथ दर्द का होना, इसको थ्रॉबिंग हेडेक बोलते हैं। ये हो सकता है। माइग्रेन का दर्द 4 घंटे या उससे अधिक रह सकता है, और सर दर्द के साथ फोनोफोबिया या फोटोफोबिया होना ये इसकी खासियत है। और किसी प्रकार के दर्द में ये स्पेशल टाइप का रोशनी या ध्वनि से जो एक तरह का दर्द बढ़ जाने की समस्या और दर्द में नहीं होती है। अदर ऑरा जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोट्रोमल स्टेज, माइग्रेन में दर्द शुरू होने से पहले लक्षण आ जाना, आँख के सामने कुछ चमकना या आँख के सामने अंधेरा जैसा छा जाना, कुछ लोगों में हाथ के या चेहरे के कुछ भाग में सूनापन या और तरह का दिक्कत शुरू हो जाना, प्रोड्रोमल फेज और तरह के सिर दर्द में नहीं होता है, ये माइग्रेन की खासियत है।
2: कब कब हो सकता है ये दर्द?
3: इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये दर्द 1 सप्ताह में या 1 महीने में कितने बार आ रहा है? अगर ये दर्द 1 महीने में 15 दिनों से कम का रह रहा है तो इसे सिंपल माइग्रेन बोलते हैं, या ये दर्द 1 महीने में 15 दिनों से ज़्यादा रह रहा है तो इसे हम लोग क्रोनिक माइग्रेन बोलते हैं।
2: कब डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत होती है, कब दवाएं शुरू करने की ज़रूरत होती है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
3: जी, इसमें दवाएं 2 प्रकार की दी जाती हैं। एक तो तुरंत दर्द में आराम दे दे, और उल्टी जो होता है उसमें आराम दे दे, एनाल्जेसिक और एंटीएमेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, वो तुरंत आराम के लिए एक्यूट फेज के लिए दिया जाता है, और क्रोनिक फेज के लिए लंबे समय तक आराम के लिए दोबारा दर्द का अटैक नहीं आए उसके लिए प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशन दिया जाता है, जो डेली रोजाना लेने की ज़रूरत है क्योंकि आगे का दर्द का अटैक नहीं हो। तुरंत दर्द वाली दवा तो आपको लेनी पड़ेगी जब आपको दर्द हो तो, लेकिन प्रोफाइलेक्सिस आगे की क्या दर्द को रोकने वाली जो दवा है वो लेने के लिए उसका क्राइटेरिया होता है कि अगर महीने में 3 दिन से ज़्यादा वैसा व्यथित करने वाला दर्द हो जिससे आपकी रोजमर्रा के काम करने में रुकावट आए, तब प्रोफाइलेक्सिक मेडिसिन जो है वो लगातार लेने पड़ेगी। दर्द रहित अवधि, बिना दर्द का जो समय अवधि है वो 6 महीना तक होना चाहिए, तब तक दवा लेना पड़ेगा। कम से कम 6 महीना तक प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन चलेगा। जो माइग्रेन से ग्रसित लोग हैं उन्हें एक हेडेक डायरी बनाना चाहिए। जिस दिन दर्द हुआ उससे पहले उन्होंने क्या ऐसा खाया या क्या ऐसा

0: काम किया या किस चीज से ऐसे एक्सपोज हो गए जिसके वजह से दर्द बढ़ गया। कुछ लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों खाने से दर्द हो सकता है, जैसे किसी को चॉकलेट खाने से, किसी को प्रॉन या झींगा मछली खाने से, किसी को ब्रिंजल खाने से, किसी को कॉटेज चीज खाने से या रेड वाइन पीने से ये दर्द हो सकता है, किसी को बार बार देर तक टीवी देखने से या मच्छर वाली जो अगरबत्ती आती है या मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड आता है उसके सुगंध से ये दर्द हो सकता है। तो ये डायरी बना करके उसे अपने डॉक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे हम लोग इसका ये निष्कर्ष निकाल सके कि किस चीज से आपको बचना है।
1: डॉक्टर मोहम्मद यासीन, आपने माइग्रेन को लेकर इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, विशेषज्ञ थे डॉक्टर मोहम्मद यासीन। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये देशगान संवेद स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये भजन। अगला भजन हमने लिया है हरिहरन की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे हैं अनुपमा देशपांडे के गाए इस भजन को। अगला भजन हमने लिया है संवेद स्वर में।

भगवान शिव को समर्पित इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी। लीजिए अब निवेदित है रामचरितमानस गान।

शूद्र वंश में जन्मे काकभुशुंडी को, जो अकाल से त्रस्त होकर अयोध्या से उज्जैन नगरी में आ बसे थे, वहां के शिव मंदिर में ब्राह्मण देवता का अपार स्नेह और कृपा प्राप्त हुई। लेकिन गुरु से कपट तो उन्होंने किया ही था। स्वयं भगवान शंकर की आराधना करते, किंतु वैष्णव तथा अन्य मतावलंबियों से ईर्ष्या और द्वेष की भावना बनी रही। गुरु इनके आचरण से दुखी थे, फिर भी उन्हें सदुपदेश देते, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते। किंतु जिनके स्वभाव में ही अनीति होती है, वे कब किसकी सुनते हैं? उपदेश देते हुए ब्राह्मण देवता ने जब स्वयं भगवान शिव को हरि का सेवक बताया, तो शूद्रवंशी काकभुशुंडी के आक्रोश की सीमा न रही। इन्होंने तब गुरुद्रोह करना आरंभ कर दिया। किंतु फिर भी उदार मना द्विज का स्नेह कम न हुआ। सच तो ये है कि नीच व्यक्ति जब बड़ाई पाता है, तो सबसे पहले उसी के नाश पर उतारू हो जाता है जिसने उसे बड़ाई दी है। एक दिन जब ये मंदिर में शिव मंत्र का जाप कर रहे थे, गुरुजी वहां आ पहुंचे। मदांध शिव भक्त ने उनकी अनदेखी ही नहीं की, अपितु अनादर भावना से अजगर की भांति बैठे रहे। द्विज तो उदार और महामना थे, किंतु स्वयं भगवान शिव को गुरु का ये अनादर और अपमान सहन न हुआ। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उन्हें शाप दे डाला। हे गुरुद्रोही, तू गुरु और मेरा मंत्र देने वाले को देखकर भी इस प्रकार अजगर की भांति बैठा है, जा तू अजगर हो जा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, मुख्य स्वर थे ए हरिहरण के। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए जानकारी प्राप्त करते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। समाचार प्रभात का समय होगा 8:00। मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे 8:15 पर और 8:30 पर आप सुनेंगे खबरनामा। अंजुमन कार्यक्रम आप हमारा ये उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:10 पर। इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे।

दस बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे बच्चों के लिए कार्यक्रम फुलवारी। सुबह 11 बजे आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात को। इसके ठीक बाद यानी 11:30 पर आप सुनेंगे मन की बात के 134वीं कड़ी के मैथिली अनुवाद का प्रसारण।

0: सखी बहिन, इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे। वहीं 12:30 पर प्रसारित किया जाएगा मैथिली नाटक घसल अठन्नी। कुछ देशभक्ति गीत आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर। और फरमाइशी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप सुनेंगे 1:15 पर। प्रादेशिक समाचार दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे। साथ ही कुछ रोजगार संबंधी सूचनाएं आप प्राप्त करेंगे 2:10 पर। 2:30 पर आप कुछ फिल्म संगीत सुनेंगे। युवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5 बजे। गांव घर का समय होगा शाम 6:30 पर। मन की बात के 134वीं कड़ी के मैथिली अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे रात 8 बजे। रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम रात 10 बजे आप सुनेंगे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप कुछ ही देर में समाचार सुनेंगे। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे।

मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन नाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला। आई नमस्कार मिथिला कार्यक्रम में हम उपस्थित छी अनिल कुमार कर्ण आ संगे छथि कल्याण जी। नमस्कार कल्याण जी। संगे सब श्रोता लोकन के स्वागत आई कार्यक्रम में। संगे सब गोटे के नमस्कार।
1: अनिल भाई आपको भी नमस्कार। अनिल जी और समस्त श्रोताओं को भी मेरी ओर से नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ हम हमेशा से करते आए हैं एक सुविचार से, और आज का सुविचार हमने लिया है रहीम के दोहे से। पानी नियरे राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी का तीन अर्थ है। एक जो पानी चमक के रूप में जो मोती में विद्यमान होता है, मनुष्य में पानी उसकी इज्जत या यूँ कहें कि उसके कृतज्ञता लाजो हया के रूप में, और एक सामान्य अर्थ में है पानी जो चून के साथ होता है। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य को शर्मो हया या जो अनुशासन है, जो शिष्टाचार है, उसको अपने अंदर रखना चाहिए। और जिस तरह मोती में चमक न हो तो उसका कोई मोल नहीं होता है, वो बेकार हो जाता है। चूने में अगर पानी ना हो तो वो बेकार हो जाता है। ठीक उसी तरह मनुष्य में अगर पानी शर्मो हया या अनुशासन शिष्टाचार वगैरह ना हो तो फिर वो उसका व्यक्तित्व बेकार ही समझा जाता है। और अब रुख करते हैं आज का दिन यानी 31 मई के इतिहास की ओर।
0: इतिहास में आजुक दिन एक महत्वपूर्ण एक कौन कौन घटना सब भेल छल इस संदर्भ में कहल जाए।
1: बिल्कुल, 1774 की बात करें अनिल जी, तो भारत का पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया था। 1867 में बम्बई में, जो अब मुंबई कहलाता है, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकार किया गया। 1959 में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई। 1964 में बम्बई में इलेक्ट्रिक ट्राम अंतिम बार चली। 1994 की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका गुट निरपेक्ष आंदोलन का 109वां सदस्य राष्ट्र बना। 1996 में बेंजामिन नेतान्याहू इसराइल के नए प्रधानमंत्री बने। 1999 में एडोल्फ ट्यूटर स्लोवाक गणराज्य के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, और कृष्ण प्रसाद भट्टराई इसी वर्ष इसी दिन नेपाल के प्रधानमंत्री बने। 2007 में सैप ब्लेटर तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने। 2010 की बात करें तो भारत में मान्यता प्राप्त प्रत्येक निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का कानून बना। और जन्म की बात करें तो नूरजहां मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी, जिनका जन्म हुआ था 1577 ईस्वी में, और 1756 में एव्वे फारिया, जो सम्मोहन कला को वैज्ञानिक आधार दिए थे, उनका जन्म हुआ था। 1725 में अहल्याबाई होलकर प्रसिद्ध वीरांगना थी, उनका जन्म हुआ था। 1843 में अण्णा साहेब किर्लोस्कर प्रसिद्ध मराठी नाटककार थे, इनका जन्म हुआ था। 1925 में राज खोसला, जो हिंदी फिल्मों के शीर्ष निर्देशक, निर्माता व पटकथाकार थे, उनका जन्म हुआ था। और वहीं 1899 में लाला जगत नारायण, ये प्रसिद्ध पत्रकार थे, इनका जन्म हुआ था। निधन की बात करें तो 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायक के का निधन हुआ था आज ही के दिन। 1988 में द्वारका प्रसाद मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ था। 1987 की बात करें तो जॉन अब्राहम, जो मलयाली फिल्म निर्माण

0: माता निर्देशक व पटकथाकार थे, उनका निधन हुआ था 1973 में। गुरनाम सिंह जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ था 2003 में। अनिल विश्वास प्रसिद्ध संगीतकार थे, इनका निधन हुआ था 2009 में। कमला दास जो अंग्रेजी व मलयालम की प्रसिद्ध लेखिका थीं, उनका निधन हुआ था। और 1998 में विचित्र नारायण शर्मा जो जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका निधन हुआ था। और आज विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जा रहा है।
1: तो इछल इतिहास के नज़र में आजुक दिनक की महत्व है, तो हम सब आब गप करब।
0: अब सीधे चलते हैं मैथिली संगीत की ओर। मैथिली सुगम संगीत के अंतर्गत हम सुनते हैं आज श्याम मोहन मिश्र के स्वर में एक बेर दर्शन दिया।
1: तो सुनी हम सब ये सुंदर संगीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओ, विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे मैथिली सुगम संगीत।
4: कलाकार छला श्याम मोहन मिश्र अब बेर पहुँच चलल
3: और बोल था एक बेर दर्शन दिया। हाँ तो श्रोताओ, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित हालचाल लेकर उपस्थित हैं अनिल कुमार कर्ण।
4: आजुक हालचालक संग उपस्थित छी हम अनिल कुमार कर्ण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी में काल शनि दिन प्रभारी चिकित्सा प्रभारी के अध्यक्षता में 0 डोज वैक्सीनेशन आ नियमित टीकाकरण के सुदृढ़ बनेबाक उद्देश्य से 1 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन कयल गेल। एहि कार्यशाला में उपस्थित लोक सब के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के महत्व आ पंचायत स्तर पर ओकर भूमिका के संबंध में विस्तार से जानकारी देल गेल। प्रभारी चिकित्सा प्रभारी कहलन जे पंचायत प्रतिनिधि सब अपन क्षेत्र में स्वास्थ्य आ पोषण सेवा के उपलब्धता के मूल्यांकन कऽ सकै छै, संगे एकर अतिरिक्त आन कार्यक्रम आ संसाधन सभक व्यवस्था में सेहो सहयोग दऽ सकै छै। आगामी 6 जून 2026 के सेंट्रल बैंक के दिस से मेगा कृषि ऋण कैंप लगाओल जाय, किसान आ कृषि उद्यमी लोकन के वित्तीय सहायता उपलब्ध करबाक लेल ई कैंप के आयोजन कयल जा रहल अछि। एहि विशेष अभियान के तहत बैंक के सबटा 20 शाखा में कृषि आ ग्रामीण व्यवसाय से जुड़ल लोक सब के विभिन्न योजना के अंतर्गत अग्रणी जिला प्रबंधक विकास कुमार झा कहलन जे ऋणक स्वीकृति आ वितरण कयल जायत, संगे एहि कैंप में किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह, गव्य विकास, मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन आ ग्रामीण भंडारण से संबंधित लोक सब के ऋण वितरण कयल जायत। संगे श्रोता लोकन कहती जे आई विश्व तम्बाकू निषेध दिवस है, एहि अवसर पर काल शनि दिन अनुमंडलीय अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। एहि अवधि में केंद्र में उपस्थित सबटा चिकित्सक लोकन, स्वास्थ्यकर्मी लोकन तम्बाकू आ धूम्रपान से दूर रहबाक संकल्प लेलन, संगे ई लोकन ई प्रतिज्ञा कयलन जे अपन जीवन में कखनो तम्बाकू आ धूम्रपानक सेवन नहि करब, संगे एकर हानिकारक प्रभाव के संबंध में लोक सब के सेहो जागरूक करब। अपने हालचाल आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहल छी।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हाँ तो श्रोता लोकन, हालचाल अपने आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहल छी। मैथिली भाषा के CBSE पाठ्यक्रम में प्राथमिक कक्षा से लऽ कऽ माध्यमिक कक्षा धरि मैथिली भाषा के शामिल करबाक लेल सांसद महोदय सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के सम्मानित कयल गेल। बिरौल प्रखंड के महबूदा गांव में शनि दिन एक दिवसीय सत्संग आ भंडारा के आयोजन कयल गेल। श्रोता लोकनि, 2.5 दशक से पहिने निर्मित जननायक कर्पूरी ठाकुर बाबा नागार्जुन स्टेडियम बेनीपुर में के दिन अब घूरय लागल अछि, संगे एहिठाम बहुत रास काज सब सेहो चलि रहल अछि।

0: एहि संग आब आजुक हालचाल सम्पन्न भेल।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: श्रोताओ, विज्ञापन से पूर्व सुन रहे थे आप सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित हालचाल। हालचाल लेकर उपस्थित थे अनिल कुमार कर्ण। और श्रोताओं, मौसम पूर्वानुमान से अवगत करवा दें। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 30 मई 2026 से 3 जून 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 48 घंटों तक उत्तर बिहार के जिलों में वर्षा की संभावना बने रहने की आशंका है। उसके बाद मौसम के आम तौर पर शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 48 घंटों में जिस क्षेत्र में वर्षा होगी, हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। उसके बाद हवा की रफ्तार कम होने की संभावना है। अधिकांश क्षेत्रों में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। श्रोताओं, सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो सुबह में 85 से 90 प्रतिशत तथा दोपहर में 35 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। तो ये था मौसम पूर्वानुमान। और अनिल भाई,
0: देखियो कल्याण जी, किसान भाई लोगों के लिए 30 जून से 3 जून धरि किछ समसामयिक सुझाव सेहो देल गेल अछि। ओ एहि तरहे अछि, पूर्वानुमानित अवधि में बरखाक संभावना के देखैत किसान भाई लोकन के कृषि काज में बेसी सतर्की राखब आवश्यक। किसान भाई लोकन मकई के कटनी आ दौनी संगे संग दाना के सुखेबा वाला जे काज अछि मौसम के स्थिति देख कर सकांश भौ कर करी। संगे मूंग के तैयार फसिल जे भौ गेल हुए तो संभावित बरखा के ध्यान में राखत समय से ओकरा तोड़ लेवाक चाही। खरीफ प्याज के खेती नर्सरी बीजस्थली के तैयारी करी, स्वस्थ गाछक लेल नर्सरी में गोबर के खाद देनाई कखनो नहीं बिसरी। संगे संग छोट छोट उचास वाला क्यारी सभक निर्माण करी जाहि सँ अपने के एकर चौड़ाई जे छै से 1 मीटर आ लंबाई अपन सुविधा अनुसार राखि सकै छी। खरीद प्याजक लेल अपने N53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ई सब किस्मक अनुशंसा कयल गेल अछि। संगे किसान भाई लोकनि इहो ध्यान राखी जे बिया गिरेबा सँ पहिने बिया के उपचारित निश्चित रूप सँ कऽ लेबाक चाही। खरीफ प्याज के खेती में बिया दर अपने के 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से लगाइए। बिया सदिखन प्रमाणित बिया व्यवहार करी और प्रमाणित दुकान से एकरा कीनक चाहिए। किसान भाई लोकन बिचरा में धानक बिचरा बीजस्थली में लगेबा वाला जे काज है, चूँकि बरखा आरंभ भ गेल ई काज अपने आरंभ कऽ सकै छी। 10 जून धरि अपने नमहर अवधि वाला धानक बिचरा खसेबाक वाला काज जे छै कऽ लेबाक चाही, एकर उपयुक्त समय चलि रहल अछि। संगे संग किसान भाई लोकनि इहो ध्यान राखी जे बेसी अवधिवला जे धानक प्रजाति अछि जेना राजश्री, राजेन्द्र मंसूरी, राजेन्द्र श्वेता, स्वर्णा, स्वर्णा सब एक, PPTP 5204 ई सबके नर्सरी में अपने लगा सकै छी। संगे संग किसान भाई ध्यान राखी जे नीक विकास के लेल पौध के विकास के लेल खेत के निक जकां तैयारी करी। सरल

0: गोबरा खाद निश्चित रूप से देवाक चाहिए। क्यारी के चौराई अपने सवा सौ डेढ़ मीटर चौराई राख सके छी। बिया सदिखन प्रमाणित स्रोत से लेवाक चाहिए। एक हेक्टेयर के रोपनी के लिए सामान्य रूप से 800 से 1000 वर्ग मीटर के नर्सरी पर्याप्त हुई है। बीया के रोपा से पहले बीजोपचार करी आ बीज जनित रोग से बचाव के लिए किसान भाई सेहो सतर्क रहे। खरीफ मक्का के बुआई के लिए खेतक नर्सरी अपने तैयार कर सके छी। खेतक जुताई में 8-10 से 15 टन सरल गोबरक खाद प्रति हेक्टेयर के दर से सामान्य रूप से व्यवहार करक चाहिए। संगे बुआई काल में ध्यान राखी जे अपने नेत्रजन 30 किलोग्राम, सल्फर 60 किलोग्राम आ पोटास 50 किलोग्राम के व्यवहार सामान्य रूपे करक चाहिए। उत्तर बिहारक लेल जे अनुशंसित मकई के किस्म अछि जेना देवकी, सुवान, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11, शक्तिमान 5, शक्तिमान 2, शक्तिमान 1, एकर सभक अनुशंसा कयल गेल अछि। किसान भाई लोकनि आद के खेती सेहो कऽ सकै छी, एकर बुआई कऽ सकै छी। आद के मरान आ नदिया किस्म उत्तर बिहारक लेल अनुशंसा कयल गेल अछि। खेत के जोत में अपने ध्यान रखी 25-30 टन सरल गोबरक खाद नेत्रजन के व्यवहार सदिखन 30-40 किलोग्राम, सल्फर के व्यवहार 50 किलोग्राम, पोटाशक मात्रा 80-100 किलोग्राम, जिंक सल्फेटक मात्रा 20-25 किलोग्राम, बोरेक्स 10-12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से समान रूपे व्यवहार करक चाहिए। ओना बेसी जानकारी के लेल अपने खेतक माटिक जांच करा ली। कृषि वैज्ञानिक लोकन जे अनुशंसा करे छै ताई अनुरूपे अपने खाद उर्वरक के व्यवहार कऽ सकै छी। कुसियार के फसिल में कलिका एस्मट रोग के प्रकोप हेबा के बेसी संभावना बरखा में भ जाइए। जो कुसियारक गाछ में पीका वा काली कारी रंगक जे छै चाबुक नुमा डांट निकल लागे तो अपने के बुझ जेबाक चाही कि हमर कुसियारक फसिल में जे छै से रोगक प्रकोप भ रहल अछि। ई जे उज्जर रंग के झिल्ली जका झाँपल रही है ई कलिका रोगक लक्षण है। प्रभावित गन्ना के जे छै ओकरा पॉलीथीन से सावधानी पूर्वक झाँपि दी आ ओकरा काटि कऽ खेत से बाहर कऽ देबाक चाही। किसान भाई लोकनि पशु के चारा के लेल ज्वार, बाजरा, मकई के अपने रोपनी कऽ सकै छी। एकर संग मीथ, लोबिया, राइस बीन के बुआई अंतर्वर्ती खेती के रूप में अपने चारा फसिल के रूप में कऽ सकै छी, जाहि सँ चारा फसिल के गुणवत्ता बढ़ जाइए, दुधारू पशु के पौष्टिक चारा प्राप्त भ जाइए। तो ई छल किसान भाई लोकनि के लेल समसामयिक सुझाव।
1: कृषि संबंधी ये समसामयिक सुझाव बहुत ही उपयोगी था अनिल जी। और चूंकि आज हम लोग विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहे हैं, यह दिवस मुख्य रूप से धूम्रपान से संबंधित है कि क्योंकि धूम्रपान में भी तंबाकू की ही मात्रा होती है, और इसलिए अगर इसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी कहें तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन मूल रूप से धूम्रपान निषेध दिवस है। इसका तात्पर्य है कि ये जो धूम्रपान या तंबाकू का सेवन, ये हमारे स्वास्थ्य पर इतना हानिकारक प्रभाव डालता है कि कभी कभी वो असामयिक मृत्यु का भी कारण बन जाता है। और मुंह के कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, इस सब का तो मुख्य कारण है। आप क्या कहना है?
0: देखियो, बहुत सुंदर चर्चा आरंभ केलों। आई विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, एकर 2026 में जे आई मना रहल छी, एकर संदेश एकदम साफ है, तंबाकू के नहीं आ जीवन के हों कहब आवश्यक है। क्योंकि अब ई विचार करी जे तंबाकू के छोड़ब किएक आवश्यक है, एकर अल्पकालिक आ दीर्घकालिक खतराक संबंध में लोक सब के जागरूक करब, संगे तंबाकू सेवन से होबय वाला खतराक संबंध में विज्ञान की कहते, सबसे बेसी महत्वपूर्ण ई गप है।

जे सफलतापूर्वक एकरा कोना छोड़ल जाए। संगे तमाकू सेवन पर रोक एकटा छोड़बाक व्यावहारिक विधि की सब अइ पर जोर देल गेल छै। खाली ज्ञान से कल्याण भाई किछ नहि होइ छै, जा धरि ओ व्यावहारिक ज्ञान के अपने उपयोग में नहीं आनबै ने ता धरि नहि होइ छै। ज्ञान तो सब गोटे के लगभग 70 से 80 लाख लोग संपूर्ण विश्व में अइ तमाकू सेवन के कारण असमय काल कल्पित भ जाय छथि। एकर प्रभाव जे छै हमरा अहाँ के शरीर पर सबसे पहिने फेफड़ा पर अखन देखब जे बहुत रास लोग अनेक रूप में ई बुझै छथिन जे हम तो धुआं वाला व्यवहार नहीं करै छी। पहिने चलन छल, आबो चलन बढ़ गेल अछि, प्रचार एकरा अनर्गल रूपे कयल जा रहल अछि। मुदा खाली सिगरेट सहायन नहीं हुई है, कोनो रूप में अहाँ

0: बहुत रास लोग अनेक रूप में ई बुझै छथिन जे हम तो धुआं वाला व्यवहार नहीं करै छी। पहिने चलन छल, आबो चलन बढ़ गेल, प्रचार एकरा अनर्गल रूपे कैल जा रहल अछि, मुदा खाली सिगरेट सँ हानि नहीं हुई, कोनो रूप में अहाँ निकोटीन लै छियै तऽ एकर असर बड़ खराब होइए।
1: बिल्कुल, वो अगर तंबाकू के रूप में उसको सीधे ओठ में रख करके उपयोग करते हैं तो भी खतरनाक है, और गुटखा में मिला के अगर तंबाकू का सेवन करते हैं तो खतरनाक है, पान के साथ अगर आप तंबाकू का इस्तेमाल करते तो भी खतरनाक है, और बीड़ी सिगरेट वगैरह जो भी धुएँ के साथ उसको जला करके धुआं के साथ जब हम अंदर ग्रहण करते हैं तो फेफड़े सहित शरीर के अन्यान्य जो अंग हैं, आंत वगैरह, इन सब चीज़ को, सभी अंगों को, आंतरिक अंगों को वो दुष्प्रभावित करता है, और परिणाम स्वरूप हम गंभीर बीमारी कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। और जब हम बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं तो फिर कोई उपाय नहीं बच जाता है,
0: उपचार मात्र विकल्प रही है।
1: उपचार भी कैंसर का इस हद तक कभी नहीं हुआ है कि हम जिस जब तक हमें मालूम पड़े कि हमें कैंसर हुआ है तो हम उसको पूरी तरह निवृत्त हो सके कैंसर से, ऐसा उपाय अभी तक नहीं निकला है। हाँ, उसके कुछ चरण है, अगर प्राथमिक चरण तक या अधिक से अधिक दूसरे चरण तक अगर कैंसर पकड़ में आ गया तो फिर उससे मुक्ति पाना संभव हो सकता है, वो भी निश्चित नहीं है, लेकिन अगर ये प्रथम चरण के बाद और दूसरे चरण से हल्का भी आगे बढ़ा तो फिर वो जब तक आप जीवित हैं तब तक एक असहनीय कष्ट से तो पीड़ित रहेंगे ही, और उसके अलावे असामयिक मृत्यु का कारण ये बन जाता है।
0: देखियो कल्याण जी, तंबाकू सेवन मानव शरीर के लगभग हरेक अंग के क्षति करते हैं, एकर प्रभाव लगभग तुरंत आरंभ भ जाते हैं, जे समय के संग बढ़ते जाते हैं, जाहि से स्वास्थ्य समस्या के एकटा श्रृंखला उत्पन्न होते हैं, जीवन के प्रत्याशा बड़ बेसी कम भ जाते हैं, जीवन के गुणवत्ता घट जाते हैं, धूम्रपान शुरू करवा के किछे मिनट में एकर अल्पकालिक प्रभाव देखवा में अबैये, हृदय गति बढ़ जाइए, रक्तचाप बढ़ जाइए, रक्त में ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड के मात्रा बढ़ जाइए, ई तो भेल तत्कालिक प्रभाव से हृदय प्रणाली पर दबाव पड़े, शारीरिक क्षमता कम हुई है, कतेक धूम्रपान करय वाला लोक सब में सहन शक्ति में कमी हुई है, लगातार खोखी स्वाद आ गंधक अनुभूति के कमी सेहो होइए, एकर दीर्घकालिक परिणाम के जँ गप करी तऽ फेफड़ा के कैंसर तंबाकू से होबय वाला सबसे कुख्यात रोग अछि, एकर अतिरिक्त अतबे नहीं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जकरा COPD कहल जाइए, एम्फिसेमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस फेफड़ा के कार्यक्षमता पर बड़ बेसी खराब असर करिए, जाहिसँ सांस लेना या छोड़ना दुनू मुश्किल हो जाए, तो हृदय रोग स्ट्रोक के खतरा बढ़ जाइए।
1: तो ये तो हुआ तंबाकू या धूम्रपान के सेवन से होने वाले शरीर के बाह्य या आंतरिक दुष्प्रभाव के बारे में। आपने अभी अभी कहा था कि तंबाकू छोड़ना सबसे बड़ी बात है, कि हम अगर अभी तक इसके आदि नहीं है तो भविष्य में कभी आदि होने का सोचे भी नहीं, और यदि हम तंबाकू का सेवन कर रहे हैं अभी तो उसे छोड़ने का प्रयास करें, और उसे छोड़ने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने आत्मबल को संयमित करें, आत्मबल को दृढ़ करें, दृढ़ आत्मबल ही हमें इन चीज़ों को छोड़ने में कामयाब बना सकता है।
0: देखियो एहिमे दो तीन टा गप छै, अहाँ देखब बहुत व्यक्ति के जे प्रण लै छथि जे हम तंबाकू छोड़ि देलहुँ, पान छोड़ि देलहुँ, गुटखा छोड़ि देलहुँ, आ किछु दिनक उपरान्त फेर आरम्भ भऽ जाइ छै, तऽ दृढ़ इच्छा शक्ति के आवश्यकता अछि,
1: और
0: एकर लाभ जँ गप करी तऽ 20 मिनट के भीतर एकर लाभ अहाँके हृदय गति सामान्य, रक्तचाप स्वस्थ स्तर पर आबि जाइए, 12 घंटा के बाद रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइडक स्तर सामान्य होइए, जाहिसँ अपन के अपने के शरीर में ऑक्सीजन के आपूर्ति में सुधार होइए,
1: और
0: 2 से 12 सप्ताह के भीतर रक्त संचार में सुधार होइए, फेफड़ा के कार्यक्षमता बढ़िए,

0: शारीरिक गतिविधि करवत। एक बरखक बाद हृदय रोग के खतरा धूम्रपान करे वाला व्यक्ति की तुलना में आधा हो जाए।
1: बिल्कुल, और कार्यक्रम में भी रक्त का संचार संयमित रूप से होता रहे, तो कार्यक्रम के रक्त संचार का संयमन है फिल्म संगीत, और श्रोता भी इंतजार में होंगे। तो
0: हम बुझ रहे यहाँ के गप, तो सुनी हम सब।

0: तो अब बेर भ चलल हमसब सुनी जे पिछला सप्ताह के की सब गतिविधि रहल, कौन कौन घटनाक्रम सब भेल, तो कल्याण जी इस संबंध में कहल जाए।
1: श्रोताओ नमस्कार, गतिविधियां गत सप्ताह की लेकर मैं कल्याण कुमार झा। श्रोताओ, मिथिला हाट में सांस्कृतिक संध्या के तहत संगीत, लोक नृत्य और गायन का साप्ताहिक कार्यक्रम मधुबनी के झंझारपुर में आयोजित किया गया। इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अफ्रीकी देशों की गैर जरूरी यात्रा न करने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने जीत हासिल की। पूर्व मॉडल और अभिनेत्री दिशा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम के बाद भोपाल के भदभदा श्मशान घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए और उसके अगले दिन अपने 3 दिवसीय सिक्किम यात्रा पर निकली। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांसू सीमा चौकी का दौरा किया। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर तत्वों पर द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। जापान में भारतीय दूतावास ने किया इंडिया कनेक्ट के 4th संस्करण का आयोजन। असम UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद से त्यागपत्र दिया। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की। पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने अपनापन पुस्तक का विमोचन किया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए। राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी तूफान और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मृत्यु हो गई। सिक्किम के पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई। NTA ने CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी किए। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार बशीर बद्र का भोपाल में निधन हो गया। देश भर में मुस्लिम समुदायों द्वारा धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया ईद उल अजहा। स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की 143वीं जयंती मनाई गई। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पर विश्वभर में संयुक्त राष्ट्र शांति सेवकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देशभर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। वाइस एडमिरल

0: कुचर ने 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्काईकास्ट सिस्टम सुविधा का उद्घाटन किया। ओडिशा में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण आरंभ हुआ। पंजाब नगर निकाय चुनावों के नतीजों में आपको पहला और निर्दलियों को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग फ्लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा के अंतर्गत सप्ताहांत में बिहार पहुंचे। गोवा का स्थापना दिवस हर्षोल्लास और राजकीय आयोजनों के साथ मनाया गया। श्रोताओं, खेल गतिविधियों की ओर रुख करते हैं। गत सप्ताह आरंभ में पेरिस में आरंभ हुआ फ्रेंच ओपन ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट। फुटबॉल में भारत ने गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हराया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के साथ क्वार्टर फाइनल में भी पहुंची। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के तीसरे दौर में मैग्नस कार्लसन को हराकर आर प्रज्ञानंद ने 3 अंक हासिल किए। 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की निपम ने कांस्य पदक जीता और साधना रवि ने रजत। एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के 2 पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। निशानेबाज और खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आईपीएल की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटन्स को हराकर फाइनल में पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। गुजरात टाइटन्स ने दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में पहुंची। इसी के साथ संपन्न होती है गतिविधियां गत सप्ताह की।
1: अब बेर भोचल चर्चा के सुनी आई हम सब अनुशासन के जीवन में की महत्व है। जीवन के सफल बनेवा कामना सब गोटे करे छी, मुदा आहां देखब जे सफल होबा वाला लोक सभक संख्या बड़ कम हुई है। एकर कारण की है जीवन में अनुशासन के अभाव। सफलता अंतिम पड़ाव नहीं है, निरंतर जीवन में अपनावा वाला काज है। जीवन में अनुशासन के अर्थ होते नियम, सही समय के प्रबंधन, संयम के संग अपन कर्तव्य पालन करब। ई कोनो व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार हुई है जी लक्ष्य के प्राप्ति, जीवन के सुव्यवस्थित तनाव मुक्त आ सफल बनेबाक लेल बड्ड बेसी आवश्यक।
0: बिल्कुल, ये अनिल जी, मनुष्य में तो अनुशासन का होना सबसे अनिवार्य विषय है। और यदि हम गौर से देखें तो जिस प्रकृति में हम जी रहे हैं उस प्रकृति का भी अपना एक अनुशासन है। सूर्योदय का समय से होना, सूर्यास्त समय से होना,
1: नहीं देखो चिड़ै चुनमुनी से हो पाइंत में हो रही है।
0: बिल्कुल, तो अनुशासन के बगैर हमारी दिनचर्या जो है सो असंयमित हो जाती है और बना बनाया काम भी कभी कभी अनुशासन न होने के कारण या अनुशासनहीनता के कारण। अनुशासन से तात्पर्य आपने बहुत बढ़िया बताया ही है कि अपने आप को संयमित तरीके से और अपने दिनचर्या को सही ढंग से अनुपालित करना अनुशासन है। तो अनुशासन के बिना हमारा काम खराब हो सकता है। अनुशासन, विद्यार्थी अगर अनुशासन में न रहे तो उसकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो सकती है। एक गृहस्थ यदि अनुशासित न रहे तो उसकी गृहस्थी चरमरा सकती है। एक चिकित्सक अगर अनुशासन में न रहे तो फिर चिकित्सा व्यवस्था चरमरा सकती है,
1: लोकक जान जा सके।
0: बिल्कुल, तो अनुशासन सर्वोपरि है। और कार्यक्रम के समय को ध्यान में रखते हुए और श्रोताओं के रुचि को ध्यान में रखते हुए हमें एक बार फिर से चलना है मनोरंजन की ओर। तो सुनते हैं ये फिल्म संगीत।
1: सुनिए हम सब।

0: श्रोता लोकनि एखन हमसब सुनि रहल छलहुँ फिल्म संगीत। एहि संग आब आजुक नमस्कार मिथिला कार्यक्रम के समय सम्पन्न हेबा पे तो अनिल कुमार कर्ण के चलवाक आज्ञा दिल जाए
1: और साथ में मुझे भी अनुमति दें कल्याण कुमार झा को।
0: नमस्कार
1: तो नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रेडियो सेट के अलावे आप हमें ऐप के भी माध्यम से सुनते हैं। हमारा ऐप है न्यूज़ ऑन AIR, आपके मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और भारत के किसी भी आकाशवाणी केंद्रों को आप जीवंत रूप से सुन सकते हैं। श्रोताओं, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी

0: पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई

0: लाभ नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस थे जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
1: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गिब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
3: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष 2 में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल

0: बंगाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में डूब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defense Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail.

टाइटंस का मुकाबला डिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात को एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को मकामी जबानों में नशर करेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। लखनऊ में ओपन एयर बहरी म्यूजियम नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कल जनाब सिंह ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने में अहम

0: होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात को एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को मकामी जबानों में नशर करेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। लखनऊ में ओपन एयर बहरी म्यूजियम नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कल जनाब सिंह ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने में अहम रोल अदा किया। वजीर दिफा ने कहा कि बहर अरब में भारतीय बहरिया को पूरी तैयारी और ताकत के साथ तैनात किया गया था, जिससे लगातार दबाव बना रहा। इसके नतीजे में पाकिस्तान की पूरी बहरिया अपनी बंदरगाहों तक महदूद होकर रह गई। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, जिसका मकसद पहलगाम दहशतगर्द हमले का बदला लेना था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौजों ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त हमले किए।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहने, दूर तक कार्रवाई करने और जंग से बाज रखने की अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग एलैंग कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। इस मौके पर उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। इससे पहले म्यांमार के सदर अपने 5 रोजा भारत दौरे पर कल बिहार के बोधगया पहुंचे और महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कल शाम जनाब लियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने देरीना दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के तहत म्यांमार के सदर के मुस्बत रुझान की तारीफ की। म्यांमार के सदर कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और सकाफती राब्तों को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों की ईंधन की बरामदात पर आयात होने वाले महसूलात पर नजरसानी की है। इस कदम का मकसद मगरबी एशिया के बुहरान की वजह से जारी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की खातिरख्वाह घरेलू दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजारत मालियात की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की बरामद पर 1.5 रुपया फी लीटर और डीजल की बरामद पर 13.5 रुपये फी लीटर की ड्यूटी आयद होगी। हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदाती ड्यूटी 9.5 रुपये फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत मालियात ने वाजे किया कि खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी और सड़क बुनियादी ढांचा सेस पर मुश्तमिल बरामदाती लेवीज, जिन्हें इस साल 27 मार्च को मुतारिफ कराया गया था, का खाम तेल, पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन की औसत बैनुल अक्वामी कीमतों की बुनियाद पर हर 15 दिन बाद जायजा लिया जाता है। ताहम हुकूमत ने वाजे किया कि घरेलू खपत के पेट्रोल और डीजल की मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। नजरसानीशुदा ड्यूटीज का कल से इतलाक होगा, जो अगले 15 दिन तक नाफिज रहेंगी। नई दिल्ली से विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: सरकार ने कपास की दरामद को अगले महीने की पहली तारीख से इस साल 31 अक्टूबर तक कस्टम्स ड्यूटी से आरजी तौर पर मुस्तस्ना कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि कपास के किसानों और कपास से मुतालिक पूरी वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज़े खातिर रखते हुए यह फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है, तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, MSME इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को इतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबिकत को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वजारत ने जोर देकर कहा है कि इस इकदाम से किसानों के मफादात का तहफ्फुज़ होगा और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। आज तंबाकू नोशी मुखालिफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद तंबाकू के इस्तेमाल के खतरात के

0: बेदारी पैदा करना है। ये दिन तंबाकू के इस्तेमाल के खात्मे के लिए आलमी इदारे सेहत WHO की आलमी पहल है। इस साल के तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन का उन्वान है निकोटीन और तंबाकू की लत से निमटना। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन मनाए जाने के हिस्से के तौर पर मरकजी सेहत सेक्रेटरी पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने जुमे के रोज नई दिल्ली में तंबाकू से पाक तालीमी इदारों टॉफी ऐप का पायलट वर्जन लॉन्च किया। इस ऐप का मकसद मुल्क के स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुखालिफ जाब्तों की निगरानी और निफाज को मुस्तहकम करना है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा श्रीवास्तव ने कहा कि मुल्क भर के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, आयुष इदारों और दीगर सेहत देखभाल मराकज़ में 2000 से ज़्यादा तंबाकू नोशी मुखालिफ मराकज़ कायम किए गए हैं। नई दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम नस्ब किए जाने की सताइश की है। उन्होंने कहा कि स्काई कास्ट जैसे जदीद मौसमियाती निजाम कोहरे और खराब मौसमी हालात के दौरान परवाजों की कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। जनाब नायडू ने मजीद कहा कि इस टेक्नोलॉजी को मुल्क भर के मजीद हवाई अड्डों तक तोसी दी जाएगी, जिससे मुसाफिरों के सफरी तजर्बे को मजीद बेहतर बनाया जा सकेगा और सेफ्टी में इजाफा होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने के सानेहे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। मरने वालों में 7 अफराद का ताल्लुक पुणे शहर से और 14 अफराद का ताल्लुक पेचरी, चिंचोड़ और उरवली कंचन इलाकों से है। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जिम्मेदारी CID को सौंपी गई है। इस मामले में बड़ी इंतजामी कार्रवाई करते हुए 22 अहलकारों को अपने फराइज के अंजामदही में मुबैना तौर पर लापरवाही बरतने पर मौतल कर दिया गया है। मौतल किए गए अहलकारों में 9 पुलिस अहलकार और रियासती आबकारी महकमे के 13 अफसरान शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की वजीर सकीना इट्टू ने जम्मू डिवीजन के समर जोन के तहत आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में 1 जून से 15 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है। मोहतरमा इट्टू ने कहा कि जारी मौसम गर्मा के तनाजुर में यह फैसला लिया गया है ताकि तलबा तदरीसी अमले और कॉलेज अमले की बेहतरी को यकीनी बनाया जा सके। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संग मेल हासिल किया गया है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि एक मरबूत मुश्तरका तरीक़ेकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में ये एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा है कि 2021 में 14 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। आलमी इदारे सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गेब्रियासिस ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला की वबा फूट पड़ने के बाद सफरी पाबंदियां आयद करने या अपनी सरहदें बंद कर देने वाले ममालिक से इन इकदाम पर दोबारा गौर करने की अपील की है। जनाब गेब्रियासिस का कहना है कि इस तरह के इकदाम बीमारी से निमटने की कोशिशों में रुकावट बन सकते हैं। मशरकी कांगो के बुनिया में इजहार ख्याल करते हुए जनाब गेब्रियासिस ने कहा कि बुनिया के उनके दौरे का मकसद मुतासरा बरादरियों के साथ सीधे तौर पर मसरूफ अमल होना है और सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में बीमारी से निमटने की कोशिशों को मुस्तहकम करने में मदद करना है। जमहूरिया कांगो के सेहत हुकाम ने 900 से ज्यादा मुश्तबा इबोला मामलों में 200 से ज्यादा मुश्तबा अमवात रिपोर्ट की हैं। वहीं पड़ोसी युगांडा ने राजधानी कंपाला में नए इन्फेक्शन समेत मजमुई तौर पर 9 मामलों की तस्दीक की है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी कल तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मशरकी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ मकाम पर आज छींटे पड़ने के साथ झालाबारी भी हो सकती है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ मकाम पर कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी चलने का इम्कान है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कोंकण और गोवा में आज मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियाती एजेंसी ने अगले 2 दिन के दौरान राजस्थान के मुख्तलिफ मकामात पर धूल भरी आंधी चलने की भी पेशगोई की है। केरलम में शदीद बारिश के इम्कान के तहत 6 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों के दौरान रियासत में कहीं कहीं शदीद बारिश और 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की गई है।

0: कोलकाता केरला में बाजाब्ता तौर पर मानसून की आमद का ऐलान नहीं किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2026 सीजन के फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच खेला जाएगा। आरसीबी ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया है और 3 दिन के वक्फे के बाद फाइनल में दाखिल हो रही है। टूर्नामेंट की मजबूत तरीन उनकी बल्लेबाजी रही है, जिसमें विराट कोहली की कारकर्दगी नुमाया रही है, जबकि गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड नई गेंद के साथ टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। दूसरी जानिब शुभमन गिल की क्यादत में गुजरात टाइटंस ने लीग मरहले में टॉप 2 में जगह हासिल की और क्वालिफायर 1 में शिकस्त के बाद वापसी करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली। टीम एक बार फिर अपने अहम बल्लेबाजों गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर पर इंतजार करेगी, जबकि ऑलराउंडर जैसन होल्डर ने सीजन के दूसरे हिस्से में अहम विकेट्स लेकर गेंदबाजी को और मजबूत किया है। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। खातीन के क्रिकेट में कल रात ब्रिस्टल में T20 बैन अल्कामी क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 20 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज अब 1-1 मैच से बराबरी पर है। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के मर्दों की डबल्स की जोड़ी सत्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी मोहम्मद शोहेब उल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा। फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मेन ने कल रात बुडापेस्ट में होने वाले फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 3-4 से शिकस्त देकर यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब हासिल कर लिया है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने ज़राअत और किसानों की फलाह और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को सुर्खी के साथ पेश किया है कि मुल्क भर में खेत बचाओ मुहिम 1 जून से चलाई जाएगी, जबकि रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन के इस बयान को पहले सफ़े पर जगह दी है कि तरक्की याफ्ता भारत 2047 मुल्क के हर शहरी का ख्वाब होना चाहिए। मगरबी एशिया के बहरान के दरमियान भारत की मईशत मजबूत मगर एहतियात ज़रूरी, वजारत ख़जाना के इस बयान के साथ रोजनामा इनकलाब ने लिखा है कि वजारत ख़जाना ने मुख्तलिफ माशी इशारों की बुनियाद पर भारत की मईशत के करीबी मुस्तकबिल को मजबूत करार दिया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंगलियांग अपने 5 रोज़ा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और इसके साथ ही खबरनामा
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष

और सफलता का साक्षी है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया, नया शुल्क कल से लागू। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दो आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा को किया निलंबित। और मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सीवान, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण सहित राज्य के 12 जिलों में आंधी बारिश का जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार विशेष निगरानी इकाई से प्राप्त प्रवर्तन निदेशालय के दस्तावेजों के आधार पर अनुचित लाभ लेने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। निलंबित अधिकारियों में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक योगेश कुमार सागर तथा वर्तमान में जीविका की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत अभिलाषा कुमारी शर्मा शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने

0: कहा है कि निष्पक्ष और सही मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला होती है। आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कानूनी परामर्शदाताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बूथ स्तर के अधिकारियों और बूथ स्तर के एजेंटों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखने में अहम योगदान देते हैं। श्री कुमार ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव का भी उल्लेख किया और कहा कि इन राज्यों में कड़ी चुनावी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। उन्होंने देशभर की अदालतों में निर्वाचन आयोग का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं और कानूनी परामर्शदाताओं के समर्पण और मेहनत की सराहना की। लोक भवन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों में एक रूपता लाने के उद्देश्य से यूनिफॉर्म अकादमिक कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अब एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू होगा। नामांकन से लेकर परीक्षा तक की सभी प्रक्रियाओं की तिथियां निर्धारित रहेंगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों को इस कैलेंडर का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में शैक्षणिक कैलेंडर से विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 जुलाई से होगी, जबकि नामांकन की और पंजीकरण की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। इस पहल का उद्देश्य उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए दूसरी चयन सूची जारी कर दी है। प्लस टू विद्यालयों में सत्र 2026-28 के लिए चयनित विद्यार्थियों को 2 जून तक अपने आवंटित विद्यालयों में नामांकन कराना अनिवार्य होगा। समिति ने कहा है कि नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल कल से सक्रिय की जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन तथा पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विद्यार्थियों को सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, सिवान, सारण, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के कई क्षेत्रों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है।
4: दिनांक 31 मई राज्य के पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर प्रदेश के कई भागों में मौसम

0: शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पटना सहित राज्य के अधिकांश जिलों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की संभावना है। पटना के दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट सेंटर में आज अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। 24 सप्ताह के कठिन सैन्य प्रशिक्षण के बाद 1025 अग्निवीर जवान औपचारिक रूप से भारतीय सेना में शामिल हो गए। परेड के दौरान अग्निवीरों ने देश सेवा, अनुशासन और समर्पण की शपथ ली। इस अवसर पर विभिन्न धर्मगुरुओं द्वारा अग्निवीरों को गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब पर हाथ रखकर राष्ट्र सेवा के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में बिहार रेजिमेंट सेंटर के कमांडिंग ऑफिसर तथा समीक्षा अधिकारी मेजर जनरल जय सिंह बैसला सेना मेडल ने परेड की सलामी ली। गोपालगंज की एमपीएमएल अदालत ने जदयू विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर लगी रोक की सीमा 5 जून तक बढ़ा दी है। न्यायालय ने एक अन्य अभियुक्त भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को भी 5 जून तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों जिले के सिमराव गांव में एक कार्यक्रम के दौरान प्रतिबंधित हथियार प्रदर्शन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भोजपुर पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग से करोड़ों रुपए गबन करने के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस सिलसिले में ग्रामीण बैंक के 3 खातों से लगभग 8 करोड़ रुपए के लेन देन की जांच की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने विभिन्न बैंकों के 19 पासबुक समेत कई दस्तावेज बरामद किया है। इधर अररिया में भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस छापामारी अभियान में फरार अपराधियों और मादक पदार्थ के तस्कर सहित 41 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से 27 मई को गयाजी शहर के 10 केंद्रों पर हुई दरोगा बहाली मुख्य परीक्षा में मोबाइल के जरिए चोरी कराने वाले गिरोह का उजागर किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में गयाजी के रामपुर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले की पुलिस ने धौड़ाद थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए लूटकांड के मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बक्सर जिले की पुलिस ने 61 पुरानी बाजार चिमनी मोहल्ला के पास से 2 युवकों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। इधर विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कटिहार में आयोजित बिहार राज्य अंडर 13 शतरंज प्रतियोगिता में पटना के देवांश केसरी शीर्ष पर चल रहे हैं। इस प्रतियोगिता में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी देवांश ने मुजफ्फरपुर के सिद्धार्थ शांडिल्य को पराजित कर 5.5 अंकों के साथ बढ़त प्राप्त की है। आईपीएल क्रिकेट की फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष 2 में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी।
0: अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार मामलों में आईएएस

0: योगेश अभिलाषा सस्पेंड। अखबार लिखता है रिश्वत कमीशन और अनुचित लाभ लेने का आरोप। दैनिक जागरण का शीर्षक है नीट यूजी और सीबीएसई के बाद अब सीयूईटी यूजी में भी गड़बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा खामी का शिकार। पहली पारी की परीक्षा 2 घंटे देरी से शुरू हुई, दूसरी पाली का पेपर भी 1 घंटा लेट। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है एक देश एक चुनाव 2029 से पहला चरण 2034 तक पूरा चक्र। प्रभात खबर ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास खाली कराने के मामले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है राबड़ी बोली फोर्स भेजकर बंगला खाली करवा लें, कुछ देर बाद ही पुलिस पहुंची। आज अखबार ने मौसम से जुड़ी खबर को अपनी लीड बताते हुए लिखा है बिहार में कल 5 डिग्री चढ़ेगा पारा। राष्ट्रीय सागर का शीर्षक है राज्यभर से मिले आवेदनों की निगरानी के लिए विशेष कोषांग का हुआ गठन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया, नया शुल्क कल से लागू। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 2 IAS अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा को किया निलंबित। और मौसम विभाग ने आज सुपौल अररिया पूर्णिया कटिहार सिवान शेखपुरा पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के 12 जिलों में आंधी बारिश का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यंग समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर।
1: भोर होते उठ जाओ कि एकता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन एक
3: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुनी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खाब की
4: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। सुनते हैं उर्दू प्रोग्राम अंजुमन, इसे हम अपने पटना
3: अंजुमन

सामीन, एक बार गया हुआ मौसम तो यकीनन वापस आ सकता है, लेकिन एक बार जो सेहत चली जाती है वो वापस नहीं आती। दोबारा संजुमन में शगुफ्ता आप सभी का इस्तकबाल करती है। सामीन, सेहत एक अजीम नेमत है, इसे बुरी आदतों या लतों की वजह कर ख़राब नहीं करना चाहिए। आदतों को शायद हम बदल लें तो काफ़ी हद तक सेहत को बचा पाएँ, पर जो नशे की लत एक बार लग जाती है तो उससे बचना और बदलना दोनों बेहद दुश्वार होता है। आपको बताएं दोस्तों कि आजकल बढ़ता कैंसर और दिल के अमराज और फेफड़ों के अमराज की वजह तंबाकू भी है। नशे की लतों में तंबाकू नोशी एक नई नस्लों और बच्चों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है।

इसके मौलिक असरात नई नस्लों को ऐसी जकड़ में ले रहे हैं जिसका अंदाजा भी मुश्किल है। जी हाँ सामिन, हर साल 31 मई को तंबाकू नोशी की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जाता है ताकि नई नस्लों और नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों को इसके मुजर सेहत असरात से आगाह कराया जाए। बातें और भी हैं सामिन, फिलहाल आइए एक और प्यारी सी गजल आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ। समात कीजिए पिनाज मसानी की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गजल।

0: है वो खिलते बलगम कहलाती है, उसके बाद खिलते सफरा, खिलते दम और खिलते सौदा। इन चारों अखलात में क्वालिटी और क्वांटिटी के एतबार से अगर बैलेंस होता है तो हमें सेहत हासिल होती है, और अगर यही बैलेंस बिगड़ जाए तो हमारे जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियां लाहिक होती हैं। यही जो खिलते हैं इन्हीं को दुरुस्त करने के लिए जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, जो तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं, वो तिब में इस्तेमाल किए जाते हैं।
1: इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि जो भी अमराज हमारे जिस्म में होते हैं, जैसा आपने बताया कि खिल्त की वजह कर होते हैं, तो आखिर ये जो खिल्त का जो कॉन्सेप्ट है आपके तिब्बी या यूनानी इलाज के तहत, इससे मरीज़ को क्या नफ़ा और नुकसान होता है? मतलब उससे मरीज़ का जो जिस्म है, जो बीमारी है, उसमें अगर वो ट्रीटमेंट के लिए जाए जब आपकी तरफ, यूनानी वाली दवाइयों की तरफ, जैसा अभी आपने ख़ुद कहा कि दवाइयाँ महंगी हो रही हैं तो लोग ख़ुद से डॉक्टर बन रहे हैं और ख़ुद से ही घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो यूनानी दवाइयों की तरफ कोई मरीज़ अगर जाता है, उसके जो असरात होते हैं जिस्म के ऊपर, तो वो कैसे मुरतब होते हैं?
0: देखिए, हमारे यहाँ जो इलाज होता है बीमारियों का, वो उसको हम लोग जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी पैथीज में, ख़ासतौर से एलोपैथिक में, देखने में ये आता है कि ज़्यादातर सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। तो हम लोगों की अप्रोच ये होती है कि बीमारी का जो सबब है उस तक पहुँचा जाए, और जब बीमारी का जो सबब है वो दूर हो जाएगा तो फिर वो बीमारी भी जड़ से ख़त्म हो जाती है। जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर जो चार अखलात या चार खिलतें पाई जाती हैं, ये दरअसल हमारी जो बैलेंस डाइट है उसी से बनती हैं। लीवर में, लीवर के थ्रू इनका प्रोडक्शन होता है, और ये चार खिलते हैं वहाँ से प्रोडक्ट पाती हैं या बनती हैं। जब इन खिलतों को पर हम जब एड्रेस करते हैं, तो हमारी जो अप्रोच मरीज़ या मर्ज़ पर होती है वो हॉलिस्टिक अप्रोच होती है। जब मर्ज़ का इलाज करते हैं तो मरीज़ भी हमारे सामने होता है, उसका मिजाज भी हमें पता होता है, और मर्ज़ का मिजाज भी हमें मालूम होता है। तो इस तरीके से हम किसी एक सेल या किसी एक मॉलिक्यूलर बेसिस पे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बल्कि हम पूरे जिसमें इंसानी को एज ए होल मानते हुए होलिस्टिक अप्रोच हमारी होती है। तो इस तरीके से जब इलाज किया जाता है तो फिर बीमारी जो होती है वो रूट कॉज उसका मालूम हो जाता है, तो रूट कॉज से उसको जड़ से ख़त्म करते हैं। जैसे खिलते बलगम है, बलगम का मतलब है कि जिसमें इंसानी के अंदर हमारे यहाँ जो सफ़ेद रंग की रुतुबात या बेरंग रुतुबात पाई जाती हैं उनको हम लोग खिलते बलगम में शुमार करते हैं। फिर इसी एतबार से बलगमी अमराज तय किए जाते हैं कि कौन कौन सी बीमारियाँ बलगमी अमराज में आती हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ सफरावी अमराज में आती हैं, कौन सी बीमारियाँ दमवी में आती हैं, और कौन सी सौदावी में आती हैं। हर खिल्त का अपना एक मिजाज होता है, तबई मिजाज होता है उसका, फिर गैर तबई का मिजाज होता है। इसी तरीके से जो बीमारियाँ होती हैं उनका अपना मिजाज होता है, दवाओं का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका भी मिजाज होता है, जो मरीज़ होता है उसका भी मिजाज होता है। तो तीनों के मिजाज को हम मुताबिकत रखते हुए मरीज़ का जो है ट्रीटमेंट तजवीज़ करते हैं, नुस्खा तजवीज़ करते हैं।
1: तो जैसे अभी आपने बताया कि खिल्त को समझते हुए फिर आप उस मरीज़ के मर्ज़ को दूर करने की कोशिश करते हैं, उसका इलाज करते हैं, तो जिस तरीके से खिल्त बलगम है, तो इस तरीके से और भी कोई खिल्त कहलाते हैं उसमें?
0: जी, जैसा कि खिलते बलगम है, हमने कहा खिलते सफरा है एलो बाइल, खिलते सौदा है एलो ब्लैक बाइल, और खिलते दम यानी कि ब्लड। तो ये चार खिलते हमारे जिस्म के अंदर पाई जाती हैं, और जितनी भी बीमारियां होती हैं इन्हीं चार खिलतों से वो रिलेटेड होती हैं।
1: तिब्बी और यूनानी इलाज की तरफ अगर हम रुख करें तो बहुत तरह की बीमारियां अभी हो रही हैं, जैसे और हर बार कुछ नया नया आ ही रहा है, लोग परेशान हैं, जैसे अभी पिछले 2 साल से लोग परेशान हैं कोरोना में, तो क्या कोरोना के वक्त में जो इतनी जो परेशानियां हुई, खास करके सर्दी खांसी वाली, तो अगर मैं ये कहूँ कि आपकी इलाज की तरफ अगर कोई रुख करता है तो क्या उसका ट्रीटमेंट है वहाँ पर?
0: जी बिल्कुल, यूनानी तिब में कंप्लीट एक सिस्टम ऑफ यूनानी मेडिसिन है ये, और तकरीबन हर किस्म की बीमारियों को ये सिस्टम एड्रेस करता है। अभी पिछले गुज़िश्ता दिनों हम लोगों ने जो वबा को देखा, कोरोना वायरस, तो इसमें भी बहुत सारी दवाएं बहुत ही मुफीद पाई गईं, और बल्कि एक जुशादा या काढ़ा की शक्ल में मालेगांव में एक काफ़ी तजर्बा हुआ, और बहुत लोग जो है उससे फ़ायदा हुआ और उस वबाई मर्ज़ से बच पाए। इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हम लोग यूनानी मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, और बहुत ही उम्मीद अफजा भी है, और इस्तेमाल कराने के बाद हमें बहुत सारे फायदे भी देखने को मिलते हैं। कोविड में जैसा कि हमारे यहाँ जो तरीके से हुम्मा वबाइया या नज़ले वबाइया की एक शक्ल थी, बेशुमार नुस्खे जात हैं इस ताल्लुक़ से।
1: तिब्बी इलाज के कोई साइड इफेक्ट, इसका कोई मनफी असरात भी पड़ता है हमारे?

0: जिस्म के ऊपर।
1: जी बिल्कुल, हम ये मानते हैं कि जो आवाम में एक गलत तासुर ये पाया जाता है कि दवाएं या यूनानी दवाएं जो है नुकसानदेह नहीं होती हैं, ये एक गलत तासुर है। दवा जो भी है वो हमारे जिस्म के लिए एक फॉरेन बॉडी है, जिस्म का वो खारजी हिस्सा है। दवा अगर है तो बिल्कुल उसके नुकसानदेह असरात मुरतब होंगे। इसी वजह से दवा और ग़िज़ा में फ़र्क हम करते हैं। ग़िज़ाएं जो होती हैं हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती हैं, दवाएं जो होती हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनती हैं, बल्कि कैफियत से असर करके वो जिस्म से खारिज हो जाती हैं। यूनानी दवाएं भी साइड इफ़ेक्ट रखती हैं और उनके मुज़िर असरात होते हैं। चूँकि हम लोग मर्ज़ के दर्जात और दवा के जो मिजाज के दर्जात होते हैं और फिर दवा को मुख्तलिफ तरीक़ों से मॉडिफाई करके इस्तेमाल करते हैं, तो जब इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो फिर दवा के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। लिहाजा इस बुनियाद पर हम लोग कहते हैं कि हमारी दवाएं बहुत ही सेफ़ होती हैं। इन दवाओं को भी किसी तबीब या हकीम डॉक्टर की निगरानी में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि अभी वबा के अयाम

0: दवा को मुख्तलिफ तरीक़ों से मॉडिफाई करके इस्तेमाल करते हैं, तो जब इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो फिर दवा के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। लिहाजा इस बुनियाद पर हम लोग कहते हैं कि हमारी दवाएं बहुत ही सेफ़ होती हैं। इन दवाओं को भी किसी तबीब या हकीम डॉक्टर की निगरानी में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि अभी वबा के अयाम में देखने को मिला कि लोगों ने घरों में कोई दालचीनी का काढ़ा बनाकर पी रहा है, कोई काली मिर्च का काढ़ा बना के पी रहा है, तो कोई लौंग का काढ़ा बना के पी रहा है, तो उससे जो साइड इफ़ेक्ट सामने आए कि लोगों को अल्सर या गैस्ट्राइटिस की शिकायत होने लगी। तो अब ये चीज़ लाइलमी में हुई कि हमें दालचीनी का इस्तेमाल करना है, काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, लौंग का इस्तेमाल करना है, तो कब करना है, कैसे करना है, ये चीज़ जो है किसी हकीम या किसी तबीब के मशवरे से ही करना चाहिए। लिहाजा इस तरह के अवारजात सुनने को और देखने को मिले।
1: तो सामीन, जब भी अगली बार आप काढ़ा बनाएं किसी भी वजह कर, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि जो भी चीज़ हम उसमें इस्तेमाल करते हैं उसकी मकदार कितनी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसे हमें कब और कितना किस मकदार में लेना भी चाहिए। ये भी बहुत अहमियत रखता है हमारी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, कहते हैं कि हमारे किचन में जितनी भी चीज़ें हैं, गरम मसाले हैं, चाहे कुछ भी हो, प्याज ही क्यों ना हो, लहसुन ही क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरह से तिब्बी नुस्खे का काम करती हैं और उससे बीमारियां ठीक होती हैं, जो हमने अभी वबा के वक्त में देखा, या हम अक्सर देखते हैं घर में अगर किसी को पेट में नॉर्मल सा दर्द भी अगर हो जाता है तो शुरू हो जाते लोग नींबू पानी पी लो, तो कभी क्या मक्खी खा लो, या कुछ भी उस तरीके से बना करके लोग देते हैं। तो इस तरीके का जो इस्तेमाल करते हैं, इसका मैंने एक बहुत अभी रिसेंट में एक बहुत ख़तरनाक, क्या कहूँ, कि उसके असरात देखे हैं। एक जानने वाली हैं जिनको किसी ने बताया कि लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाएगा। बात तो सही है, लहसुन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। उन्होंने खाना तो शुरू किया और वो काफ़ी लंबे वक्त खाती रह गई, और अभी ऐसा हुआ है कि उनको पेप्टिक अल्सर हो गया है। मुझे लगता है कि जो घर में हमारे जो किचन में जो चीज़ें मौजूद हैं उसे भी हमें खुद से नहीं इस्तेमाल कर लेना चाहिए, बल्कि उसका इल्म हमें होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहना
0: जी
1: चाहेंगे आप इसके ऊपर?
0: जी किचन जो हमारा है वो एक तरीके से देखा जाए तो एक दवाखाना है। यूनानी तिब के एतबार से जितने भी मसाले जात हैं वो बतौर दवा हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। जितने भी मसाले जात हैं ज़्यादातर का जो मिजाज हम लोग देखते हैं वो गर्म खुश्क है, यानी कि ये हमारे जिस्म पहुँचने के बाद हमारे जिस्म के अंदर हरारत और यबूसत पैदा करते हैं। आपने जैसा कि जिक्र किया कि लहसुन का इस्तेमाल किसी ने किया और उसको इफ़ाक़त तो हुआ, लेकिन लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया और किस तरीके से इस्तेमाल किया, किसी तबीब की निगरानी में किया, ये जो है तय करना ज़रूरी है। कुछ दवाएं हम लोग जो मसाले जात इस्तेमाल करते हैं तो अब यह कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्या उसकी मकदार ख़ुराक है और कब इस्तेमाल करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कुछ मसाले जात ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए एलर्जिक हो सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि वो हम कोई दवा ले रहे हैं तो उसके साथ इंटरेक्शन भी उस दवा को हो सकता है। अगर कोई शख्स वारफरीन या मॉडर्न ड्रग्स ले रहा है तो अगर उसके साथ हम अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हेमरेज ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। इसी तरीके से देखने में आया है कि मुलेठी जो है बहुत कॉमन ड्रग है और लोग खांसी के लिए आमतौर पर मुंह में रख लेते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव्स के साथ अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। तो ग़िज़ाओं का और इस तरह के चीज़ों का, अशिया का भी दवाओं के साथ जो है इंटरेक्शन होता है, तो ये चीज़ें जो है तबीब के मशवरे से ही इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ तक बात है कि जो मसाले जात हमारे किचन में हैं इनको इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए, तो बिल्कुल इनको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि एक तरीके से इनको हम फर्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कंटिन्यूअस बहुत लंबे वक्त तक ज़्यादा मकदार में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एड के तौर पर, इमरजेंसी मेडिसिन के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी को अगर गैस की प्रॉब्लम हुई, अचानक पेट में दर्द हुआ, तो अब दर्द गैस की वजह से है या कोई और काज है हमें नहीं मालूम होता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अजवाइन का इस्तेमाल हम करते हैं या जीरे का इस्तेमाल करते हैं, तो अब ये कि इसको कितनी मकदार में लेना है, इसकी मकदार ख़ुराक कितनी होती है, अगर मकदार ख़ुराक आपने कम ली है तो वो भी हमारे जिस्म को उतना असर नहीं करेगी, और अगर आपने ओवरडोज ले लिया है तो आपके जिस्म को नुकसानदेह साबित होगी। इस तरीके से डोज़ का जानना बेहद ज़रूरी है। तो डोज़ हमें कैसे मालूम होगी, या तो हम उसके बारे में कंप्लीट मुताला करें, कंप्लीट स्टडी करें तब उसको इस्तेमाल करें, या फिर किसी तबीब या किसी हकीम से मशवरा करके जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए।
1: इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि जब भी हम किचन में जाते हैं और ये सोचते हैं कि जैसे किसी ने बता

0: किया कि अदरक खाने से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कई बार कुछ अलग बीमारियों की शक्ल में भी निकल करके आता है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया सामिन हजरात की ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हमारे हर एक जिस्म को सूट कर सके, यानी कि इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम जब भी किसी चीज़ का इस्तेमाल करें तो उसकी मकदार भी जाने और ये भी जाने कि सामने वाले को उससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, या उसकी कुछ अलग से कुछ दवाइयाँ अगर चल रही हैं तो उस पर भी शायद उस पर नुकसान हो सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, दवाएं
0: तो इस
1: परहेज
0: बात का ख्याल
1: करना।
0: रखिए। अब मैं चलती हूँ उस जानब, नई नई कुछ बीमारियाँ जो हमारे जिस्म में पनपते हैं तो उसमें ख़ास करके हम परेशान होते हैं कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी से। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं साइनस, अक्सर इसका इलाज लोग कहते हैं कि भई हमारे पास सिर्फ है तो वो ऑपरेशन ही है, बहुत ज़्यादा अगर वो बढ़ गया है तब। और फिर उसके साथ साथ जैसे थायराइड आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ये अक्सर जो हमारी ख्वातीन हैं उनके अंदर पाया जाता है, तो क्या इसका इलाज हमारे तिब्बी नुस्खे में है इस तरीके का कि उसमें इस्तेमाल से उनकी इस बीमारी से निकाला जा सके?
1: देखिए, हमारे यहाँ मुज़मिन अमराज जो हैं, जो अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ट्रीट नहीं हो पाते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट होता है, और जो एक्यूट डिसऑर्डर्स होते हैं उसका भी ट्रीटमेंट होता है। लेकिन चूंकि ये आमतौर पर पब्लिक में ये है कि अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है या ट्रेडिशनल मेडिसिन है, लोग पहले रुख करते हैं मेन स्ट्रीम मेडिसिन की तरफ, एलोपैथिक की तरफ। और एलोपैथिक में जब उनको इफाका नहीं होता है तब वो लौट के ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ आते हैं। तो अगर वो चीज़ें अगर स्टार्टिंग स्टेज में ही अगर हमें मालूम हो जाएँ तो उसका इलाज तिब के ज़रिए या रिवायती या ट्रेडिशनल मेडिसिन के ज़रिए करना आसान होता है। जैसा कि आपने जिक्र किया कैंसर का, जो एक तरीके से एक वबा की शक्ल इख्तियार कर रहा है, बहुत ही मोजी और जानलेवा मर्ज़ है ये। तो इसमें बहुत सारे नुस्खे जात तो बाज़ दफ़ा मुफीद भी साबित हुए हैं, जैसा कि गिलों के बारे में देखने में आया, सदाबहार एक प्लांट है उसके वे काम हुआ है और असरात देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप्स के कैंसर्स होते हैं और कैंसर्स टिश्यूज़ पे अलग दवाएं एक्ट करती हैं। तो अभी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी इस पे काम हो रहा है, इलाज जो है मौसर साबित हुए हैं। जैसे डायबिटीज़ है, ये भी एक वबा की शक्ल इख्तियार कर रहा है, तो डायबिटीज़ में भी जो है कोई सा कोई क्योर तो नहीं है, लेकिन ऐसी बीमारियों के लिए हम लोग तिब की तरफ रजू करते हैं, क्योंकि जो दवाएं लंबे अरसे तक इस्तेमाल करनी हैं वो दवाएं किसी न किसी ऑर्गन को डैमेज करने लगती हैं, क्या तो लीवर डैमेज होता है या फिर किडनी डैमेज होता है। हम लोग तिब की तरफ ऐसे मरीजों को ला सकते हैं और तिब्बी नुस्खों का इस्तेमाल करके फाका हो सकता है। ऐसी थायराइड प्रॉब्लम जो बहुत कसरत से ख्वातीन में हो रही है, तो थायराइड दरअसल ये हार्मोन्स की डिस्टरबेंस है, उसमें भी बहुत सारी दवाएं कारामद होती हैं और उसकी वजह से थायराइड जो है जो हाइपो या हाइपर कंडीशन बन जाती है तो उसको हम लोग रेगुलेट करते हैं और वो प्रॉपर फंक्शन अंजाम देता है।
0: एक सवाल और बनता है कि जब आपके तिब्बी नुस्खे में इन तमाम बीमारियों का इलाज है तो ये कितना वक्त लेती है किसी भी एक बीमारी को ठीक करने के लिए? मान लीजिए कि किसी एक मरीज़ के अंदर में एक ही बार में दो तीन बीमारियां हैं, क्या टाइम लगता है इस आपके यूनानी नुस्खे के ज़रिए से इन तरह के अमराज को ठीक करने में?
1: जी, हमारे यहाँ ये है कि आम तौर पर दवाएं फौरी तौर पर असर नहीं करती हैं, बल्कि थोड़ा वक्त लेती हैं। तो मिनिमम 3 से 7 दिनों में दवाओं का इफेक्ट देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है या फौरी तौर पर रिलीफ के लिए चीज़ें नहीं हैं, फौरी तौर पर रिलीफ के लिए भी दवाएं दी जाती हैं, लेकिन मरीज़ जो है अब उतने उस वक्त पहुंच नहीं पाता है या फिर वो जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहता है या मरीज़ के लिए इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये दवाएं ऐसी हैं जिनको हम लोग नेचुरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो मरीज़ जो है उसको ले नहीं पाता है। प्रॉब्लम कभी कभी आती है, मॉडर्न में आपने इंजेक्शन दे दिया, आपने टैबलेट खिला दी, लेकिन हमारे यहाँ इंजेक्शन तो नहीं है,
0: जी
1: लिहाजा उसका काढ़ा बनाकर मरीज को पिलाना बहुत ही जो है उसके लिए बदमजगी होती है। इस तरीके से मरीज़ बेहोश है या नहीं ले सकता है तो किसी और रूट से दवाओं को देना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन जो होती है उसमें तो हम लोग थोड़ा सा एड्रेस नहीं करते हैं, लेकिन जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं, जो मुज़मिन अमराज हैं, उसमें यूनानी दवाएं बहुत ही अच्छा काम करती हैं। और उसमें आमतौर पर जो मुद्दत होती है कम से कम 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जिस तरीके का मर्ज़ होता है उस तरीके से उसकी मुद्दत भी तय की जाती है।
0: अगर ये कहा जाए कि यूनानी दवाइयाँ अगर हम शुरू करते हैं किसी भी मर्ज़ के ट्रीटमेंट के लिए, उसके इलाज के लिए, तो हमें कम से कम 3 महीने तक इंतज़ार करना
1: बिल्कुल
0: चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि हर
1: खास
0: किसी
1: खास जो है कुछ बीमारियां ऐसी जिसमें 3 महीना है, कुछ बीमारियां ऐसी जिसमें है 3 महीने से लेकर 6 महीने तक हमें वेट करना पड़ सकता है। जैसे हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस के केसेस में बहुत सारे केसेस जो है यूनानी दवाओं से सही हुए, में जो वायरस जो है वो नेगेटिव होने

0: के लिए कम से कम 6 मंथ जो है दरकार होता है। इस तरीके से हम कोई एक टाइम फिक्स नहीं कर सकते कि इतने दिनों में ही हर मर्ज़ का इलाज 3 महीने 2 महीने में हो सकता है। ये वेरी करता है डिजीज़ के अतबार से।
1: यानी कि जो हमारी बीमारियां हैं उस बीमारियों के हिसाब से, यानी कि वो बीमारी हमारे जिस्म में दरअसल कब से है, कितने वक्त से है, कितने लंबे वक्त से हम उस बीमारी से दो चार हैं, उसका भी असर करता होगा। अच्छा, ये तो दवाइयों की बात हुई। जहां अगर बात करें, आप ये कह रहे थे कि हमारी जो ग़िज़ा है वो बहुत अहमियत का हामिल रखती है, तो क्या इन दवाइयों के साथ, जैसे होम्योपैथिक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप होम्योपैथिक ले रहे हैं तो आपको यही चीज़ें नहीं खानी हैं, या एलोपैथिक में भी कई बार ऐसा होता है कि आप जब ट्रीटमेंट में हैं उसके तो कुछ चीज़ों को मना करते हैं डॉक्टर कि आपको ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। तो क्या यूनानी दवाइयों में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप जब यूनानी तिब्बी इलाज जब करवा रहे हैं किसी मर्ज़ के लिए, तो कुछ ऐसी चीज़ जो आप खाते थे पहले बट अभी नहीं खाना है, ऐसा कुछ?
0: जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो उसूल इलाज है वो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं पहले इलाज बिल गिज़ा से, यानी कि डाइटोथेरेपी। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं इलाज बिल तदबीर, यानी कि रेजिमल थेरेपी। उसके बाद फिर जो है इलाज बिल दवा, यानी कि फार्माकोथेरेपी। उसके बाद फिर सर्जरी। इस तरह हमारे यहाँ एक सीक्वेंस है। तो उसमें जैसा कि आपने बताया कि जो ग़ज़ाएँ हम लोग लेते हैं, वो ग़ज़ाएँ भी अगर ओवरडोज होती हैं तो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होती हैं। जैसे कि अगर कोई शख्स गोश्त का इस्तेमाल न करे, सिर्फ सब्जियों का इस्तेमाल करता है, तो उसके अंदर देखने में आएगा एनेमिक होता है वो ज़्यादातर केसेस में। ऐसे ही कुछ लोग सिर्फ चावल का इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर सर्टेन किस्म की विटामिन की कमी हो जाती है। एक तो यह कि ग़ज़ाओं का सही तनासुब बहुत ज़रूरी है इटसेल्फ। उसके बाद आपने जिक्र किया कि क्या किसी शख्स का कोई इलाज चल रहा है और यूनानी दवाओं का ट्रीटमेंट हो रहा है, और उसके साथ क्या ग़ज़ाओं में भी कुछ परहेज़ होता है या नहीं। बिल्कुल, ग़ज़ाओं में भी परहेज़ होता है। और अगर किसी शख्स को बारिद मर्ज़ है, यानी कि बरूदत की वजह से मर्ज़ लाहिक हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी ग़ज़ाएँ जो कि बारिद हुआ करती हैं, जिनका मिजाज बारिद होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि चावल है, अचार है, या फिर जो है खीरा है, ककड़ी है, इस तरह की चीज़ें उसको नुकसानदेह होती हैं। लिहाजा उसको परहेज़ बताया जाता है कि आपको ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है।
1: तो यूनानी इलाज की तरफ भी अगर हम रुख करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है सामीन हजरात, कि हम कोई भी इलाज करवाएं, हमारा मस तभी ठीक होगा जब हम अपने डॉक्टर के हिसाब से पूरी तरह से अमल पैरा होंगे उसके ऊपर, और जो भी एहतियात बताई जाए, जिन चीज़ों से रोका जाए हमें, हमें उसको नहीं करने की ज़रूरत है ताकि मस जल्द अज़ जल्द ठीक हो सके। तो सामीन हजरात, जाते जाते हम एक बार फिर से डॉक्टर साहब से बस इतना ही पूछना चाहेंगे कि आप हमारे सामीन के लिए ऐसी कौन सी अहम बात बताने वाले हैं जिससे कि हमारे सामीन को इस्तफादा हो।
0: आपने जैसा कि टॉपिक रखा था कि अपना डॉक्टर आप ना बने, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही और मौजू टॉपिक है, क्योंकि आपका जिस्म आपके लिए बहुत ही अहमियत रखता है। अगर सेहत आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है, और अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो मैं समझता हूँ कि जो गुफ्तगू अभी आपसे हुई है, आपने मुलाहजा फरमाई, उसमें बड़ी अहम बातें आपने सुनी। इससे ये अखज़ किया होगा कि हमें खुद सेल्फ मेडिकेशन या खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। हमारे किचन में भी अगर चीज़ें मौजूद हैं तो उसको भी जो है किसी तजर्बाकार या किसी हकीम या किसी तबीब के मशवरे के बगैर नहीं करना चाहिए। और पैसों की खातिर या सुस्ती काहली में या किसी और वजह से हमें इन सब दवाओं को या इन सब चीज़ों को अख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि सीधे डॉक्टर या तबीब से मशवरा करके कर दवा का इस्तेमाल करना चाहिए।
1: इसके साथ ही डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला हमारे सामीन के लिए, और हम आपसे यही कहेंगे कि आप भी सेहतमंद रहिए और हमारे सामीन, हमारी आवाम को भी सेहतमंद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
1: एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके रूबरू अंजुमन लेकर। इससे कबल कि हमारी आज की गुफ्तगू को रफ्तार दी जाए, आइए सामीन हजरात एक प्यारी सी गजल से लुत्फ अंदोज होते हैं।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुनते हैं कुछ फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म आशा से। कलाकार हैं लता मंगेशकर। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में आशा फिल्म का ये गीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म आरजू से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

अभी आप लता मंगेशकर की आवाज़ में आरजू फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। अगला गीत हमने लिया है अंटी नंबर वन से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। समीर के लिखे गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में एंटी नंबर वन फिल्म का ये गीत। समीर के लिखे गीत को संगीत से सजाया था आनंद मिलिंद ने। अगला गीत हमने लिया है और प्यार हो गया इस फिल्म से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है नुसरत फतेह अली खान ने।

और प्यार हो गया। इस फिल्म से अभी हम गीत सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत से सजाया था नुसरत फतेह अली खान ने। अगला गीत हमने लिया है फिल्म बहू बेगम से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी। साहिर लिधवानी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है रोशन ने।

मोहम्मद रफ़ी की और लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए बहु बेगम फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम फुलवाड़ी।

0: नमस्ते प्यारे बच्चों,
1: नमस्ते दीदी।
0: स्वागत है आपका अपना कार्यक्रम फुलवारी के इस नए अंक में। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त रजनी दीदी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढेर सारी मजेदार बातें, प्यारी कहानियाँ और नई नई सीख। तो बच्चों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक बहुत ही खास और काम की बात करने वाले हैं, अनुशासन के बारे में। बच्चों क्या आपने ध्यान दिया है, सूरज रोज समय पर निकलता है, पंछी सुबह सुबह चहचहाते हैं, स्कूल समय पर खुलता है, यानी पूरी दुनिया अनुशासन से चलती है, तो हम क्यों नहीं। बच्चों अनुशासन का मतलब होता है नियमों का पालन करना, सही समय पर सही काम करना और अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना, मार पिटाई नहीं करना। प्यारे बच्चों, अगर हम अपने जीवन में अनुशासन अपनाते हैं तो हम हर काम में सफल हो सकते हैं। जैसे सुबह समय पर उठना, स्कूल का होमवर्क समय पर करना, बड़ों की आदर करना और अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सब अनुशासन के ही उदाहरण हैं। तो आइए मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाती हूँ। शीर्षक है अनुशासन का जादू। बहुत मजा आएगा। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, नाम था सोनू। सोनू बहुत प्यारा था, लेकिन एक समस्या थी, वह बिल्कुल भी अनुशासित नहीं था। वह देर से उठता, स्कूल जाने में आलस करता, होमवर्क अधूरा छोड़ देता, दिन भर खेलता रहता। उसकी माँ उसे रोज समझाती, बेटा समय पर काम करना सीखो, अनुशासन में रहना सीखो, अनुशासन अपनाओ। लेकिन सोनू उनकी बात को हल्के में ले लेता, मतलब मम्मी है वैसे ही कह रही है, अरे कर लूँगा। लेकिन उसी गांव में एक और बच्चा रहता था, मोनू। मोनू रोज सुबह जल्दी उठता, समय पर पढ़ाई करता और सब लोग उसकी तारीफ करते। जब कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसकी तारीफ तो करते ही हैं,

सभी का प्यारा हो जाता है। आप भी अगर अच्छे काम करोगे तो सभी आपको प्यार करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। अच्छे काम करिए और सच्चे बनिए। और एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, अगले हफ्ते परीक्षा होगी और जो बच्चा सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे इनाम मिलेगा। मोनू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। वह रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता और अपने समय का सही उपयोग करता। लेकिन सोनू ने सोचा, अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ लूँगा। और वह खेलता रहा, यानी कि वो अपने कामों को टालने की जो आदत थी यहाँ भी उसने टाल दिया। धीरे धीरे परीक्षा का दिन आ गया। अब क्या था, सोनू घबरा गया। उसने जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ समझ नहीं आया। परीक्षा हुई, मोनू रोज़ पढ़ाई की थी इसलिए अच्छे से लिखा, क्योंकि उसने समय पर तैयारी की थी। सोनू परेशान हो गया, उसे बहुत सारे सवाल के जवाब नहीं आए। जब रिजल्ट

पूरा करके पढ़ता और अपने समय का सही उपयोग करता। लेकिन सोनू ने सोचा, अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ लूँगा। और वह खेलता रहा, यानी कि वो अपने कामों को टालने की जो आदत थी, यहाँ भी उसने टाल दिया। धीरे धीरे परीक्षा का दिन आ गया। अब क्या था, सोनू घबरा गया। उसने जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। परीक्षा हुई, मोनू रोज पढ़ाई की थी इसलिए अच्छे से लिखा, क्योंकि उसने समय पर तैयारी की थी। सोनू परेशान हो गया, उसे बहुत सारे सवाल के जवाब नहीं आए। जब रिजल्ट आया, मोनू को पहला स्थान मिला और उसे इनाम भी मिला। सोनू अब उदास हो गया। वह मोनू के पास गया और बोला, तुम हमेशा कैसे सफल हो जाते हो? मोनू मुस्कुराया और बोला, मैं बस एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ, अनुशासन। मैं हर काम समय पर करता हूँ, इसलिए मुझे कभी डर लगता ही नहीं है। सोनू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने तय किया कि वह भी समय पर उठेगा, पढ़ाई करेगा और अनुशासित बनेगा। कुछ ही दिनों में सोनू की आदतें बदल गई। अब वह भी समय का पक्का हो गया और धीरे धीरे वह भी पढ़ाई में अच्छा करने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। जो समय पर काम करता है, वही आगे बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी जीवन में अनुशासन अपनाएंगे, तो आप भी अपने सपनों को ज़रूर पूरा कर पाएंगे। आज से ही संकल्प लीजिए, हम अनुशासित बनेंगे। बच्चों, मैं आप सभी को एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, जो आपके सेहत से जुड़ी हुई है। विद्यालय से आने के बाद तुरंत पानी ना पिए, वरना आपको सर्दी खांसी की समस्या हो सकती है। तो विद्यालय से आने के बाद थोड़ी देर बैठें, फिर पानी पिए। विद्यालय जाएं तो गर्मी से बचाव की पूरी तैयारी करके जाएं। सिर पे टोपी या छाते का प्रयोग करना ना भूलें। दोपहर में खाने के बाद आराम करें, यानी बाहर नहीं जाएं। 12 बजे से 4 बजे तक घर में ही रहना सेहत के लिए अच्छा रहता है। उस समय कड़ी धूप रहती है। शाम के वक्त आप खेलने के लिए जा सकते हैं। खूब उछल कूद करके खेल करिए, ताकि आपकी जो मांसपेशी हो मजबूत हो, मांसपेशियां मजबूत हो, हड्डियां मजबूत हो, ताकि आप ताकतवर इंसान बने। खाने पीने का भी अच्छे से ख्याल रखिए। ढके हुए खाने का सेवन करिए। ज़्यादा आइसक्रीम ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। हाँ, एक और बात बच्चों, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पिए। फ्रिज का ठंडा पानी पीने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सेहत के लिए यह नुकसानदेह है। इसीलिए फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीजिए। अगर आपको ठंडा ठंडा कुछ पीना ही है, तो मम्मा से बोलिए, आपको शरबत घोल के देगी, नींबू वाली शरबत देगी। या आप जो खाली समय में चित्रकारी करें, आपको ड्राइंग अच्छी लगती है तो आप चित्र बनाइए, या फिर प्रोजेक्ट वर्क तो भी रहता है, प्रोजेक्ट वर्क बनाइए, या होमवर्क बनाइए, या अच्छी अच्छी कहानियों की किताबें पढ़िए। किताबें पढ़ने से बहुत समझदारी आती है और किताबों में अच्छी अच्छी बातें रहती हैं। तो मम्मा पापा आपको अच्छे अच्छे कहानियों की किताबें ला के देंगे, आप पढ़िए। या फिर स्कूल में भी, स्कूल की किताब में भी तो अच्छी अच्छी कहानियाँ रहती हैं, तो आप उसको भी पढ़िए। और पढ़ने से आप समझदार होइएगा। अगर बाहर जाइएगा तो सेहत पर डायरेक्ट असर कर सकता है। बच्चों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये प्यारा गाना।

0: बच्चों आइए अब बच्चे मन के सच्चे अंक में राजकीय श्यामा मध्य विद्यालय मिर्जापुर के बच्चों के साथ मेरी हुई बातचीत का कुछ अंश सुने।
1: अभी मैं राजकीय श्यामा मध्य विद्यालय दरभंगा में उपस्थित हूँ। आइए यहाँ कुछ बच्चों से। नमस्ते बच्चों।
2: नमस्ते दीदी।
1: कैसे हो आप लोग?
2: अच्छे हैं।
1: पढ़ाई चल रही है?
2: हाँ।
1: नए वर्ग में आकर के कैसा लग रहा है आप लोगों को?
2: अच्छा लग रहा है।
1: नई नई किताबें, नई पढ़ाई, बहुत मजेदार गप है ये, है ना?
2: यस दीदी।
1: मजा तो आ रहा है ना?
2: यस दीदी।
1: पढ़ाई के साथ साथ खेलना और साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है ना?
2: यस दीदी।
1: आप लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हो?
2: यस दीदी।
1: घर में भी मम्मा का या पापा का हेल्प करते हो?
2: यस दीदी।
1: अपनी सामान, अपनी बुक किताब सब एक साथ रखते हो?
2: यस दीदी।
1: बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है?
3: आप कौन से वर्ग में पढ़ते हैं?
4: हम चौथे में पढ़ते हैं।
1: आप चौथे कक्षा में पढ़ते हैं? वाह। तो आज आप क्या सुनाना चाहेंगी?
4: कविता।
1: तो सुनाइए।
4: सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, गलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है, तो खुशबू की लहर

0: मैदानों में, वन बागों में हरियाली लहराती है। है जाके सृजनहार प्रभु तबिया तुम्हारी आती है।
1: वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी वॉइस में आपने ये कविता पढ़ी, और ये कविता हमको सादगी की तरफ ले जाती है। ठीक है, भगवान सुबह उठते ही हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो ये हमें मानसिक शांति देती है। नमस्ते, आपका क्या नाम है?
2: नमस्ते दीदी।
3: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते, कैसे हो, क्या नाम है आपका?
3: सुंदर कुमार मिश्रा।
1: कौन से कक्षा में पढ़ते हो आप?

0: अच्छा था जी।
1: वाह, पढ़ाई क्यों करते हो आप? खेलना अच्छा लगता है या पढ़ना या दोनों?
0: दोनों।
1: दोनों, बिल्कुल सही बात है, दोनों होना चाहिए, पढ़ाई भी होना चाहिए और खेल भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब खेलते हैं तो शारीरिक मजबूती आती है ना?
0: यस जी।
1: आज हमें क्या सुनाना चाहोगे आप?
0: हरिदास।
1: सुनाओ।
0: हरिदास पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक तितली, उसको आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी कली चिकन खेली न मिली, सुन खेल कर सुन की बात, तो आपकी लगी राग में तितली सुने उसे चली जाऊ या तुम आके खोलो और हमारे सब प्यारे सुनो तुम्हारी नक्की सारी गली वाली।
1: बहुत प्यारा कविता है, और तितलियां वास्तव में कितनी अच्छी लगती है ना? लेकिन उसको पकड़ना चाहिए?
2: नहीं
1: पकड़ना चाहिए, उसको सिर्फ देखकर दिल खुश होता है ना?
2: यस दीदी।
1: उसको पकड़ना नहीं चाहिए, किसी भी जीव को आहत नहीं करना चाहिए, है ना?
2: यस दीदी।
3: नमस्ते बच्चों।
4: नमस्ते दीदी।
3: कैसे हो आप लोग?
4: अच्छे हैं।
3: नए सत्र की शुरुआत है, अप्रैल महीना चल रही है, बहुत मजा आ रहा है। और पढ़ाई आप लोग किस लिए करते हो?
4: जिससे हम
3: यस हाँ अच्छे नागरिक बन सके, अनुशासित रह सके और मेरी समझ बढ़ सके सभी चीजों को जानने के लिए, ठीक है? और पढ़ाई के साथ साथ खेल करते हो कि नहीं आप लोग?
4: करते हैं।
3: अच्छा, खेल किस लिए करते हो? सबसे पहले तो मनोरंजन हो सके, है ना? और इसके लिए इसके बाद उछलने कूदने से क्या होता है? खेलने में क्या होता है? उछलना कूदना होता है ना, तो उसे क्या होता है? हाँ, और हम स्वस्थ होते हैं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत होशियार बच्चे हो आप लोग।
5: नमस्ते दीदी।
3: हाँ, आपका नाम क्या है?
5: पलक कुमारी।
3: और आप किस स्कूल के बच्चे हो?
5: राजकीय श्यामा मध्य विद्यालय मिर्जापुर।
3: तो क्या आपको स्कूल आना अच्छा लगता है?
5: जी।
3: पढ़ाई करना
5: जी।
3: मजा आता है ना?
5: हाँ।
3: और तो आप आज क्या सुनाना चाहोगी?
5: मैं गाना सुनाना चाहूंगी।
3: वाह, बहुत अच्छा, तो सुनाओ।
6: आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, वार जंग की घड़ी पे तुम उतार दो आन मान सान या फिर जान का औदान या फिर इंधन उसके वान को उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड।
3: वाह, बहुत अच्छा, ये तो जोश जगाने वाला गाना था। आपका क्या नाम है?
7: नमस्ते मेरा
3: नमस्ते
7: नाम, मेरा नाम सुष्मिता कुमारी है, मेरे स्कूल का नाम राजकीय श्यामा मध्य विद्यालय।
3: आप क्या सुनाना चाहोगी आज?
7: कविता।
3: सुनाओ।
7: बहुत दिनों बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था।
3: कविता नहीं, कहानी। आप क्या सुनाना चाहोगी आज?
7: कहानी।
3: हाँ सुनाओ, क्या कहानी का क्या शीर्षक है?
7: शीर्षक है एक ईमानदार लकड़हारा।
3: हाँ सुनाओ।
7: बहुत समय पहले की बात है, एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था रामू। वो भले ही गरीब था लेकिन दिल से बहुत ईमान था। उसने वो लकड़ी काटने के लिए जंगल किनारे गया, लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वो बोला, अरे अब तो मेरी एक ही कुल्हाड़ी थी, अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, मैं कुल्हाड़ी कहाँ से लाऊंगा। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी मुझे लौटा दे। फिर उसमें उस नदी में से जल देवता निकले और उन्होंने कहा, बालक तुम इतने परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, भगवान मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, कृपया आप उसे ला दें। वो गए और एक चांदी की कुल्हाड़ी लाए और पूछते हैं, बालक क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वो कहता है, नहीं भगवान ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर भगवान फिर जाते हैं और सोने की कुल्हाड़ी लाते हैं। वो पूछते हैं, फिर से वही पूछते हैं कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? फिर वो बोलता है, नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर भगवान जाते हैं और उसी की सेम कुल्हाड़ी लाते हैं और पूछते हैं, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वो बोलता है, हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है, धन्यवाद। भगवान उसकी ईमानदारी और प्रशंसा देख के कहते हैं कि बालक तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम ईमानदार आदमी हो, मैं तुम्हें अपनी तरफ से

0: सोने और चांदी दोनों की कुल्हाड़ी दे देता हूँ। उसने वो तीनों कुल्हाड़ी लेके चला गया और खुशी खुशी रहने लगा।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। और सीख इससे क्या मिली?
0: ईमानदारी के
1: हमें हमेशा ईमानदारी का पक्षधर रहना चाहिए, ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और ईमानदारी का फल हमें आज न कल मिलता ही है और अच्छा ही मिलता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: नमस्ते देवी, मेरा नाम अक्षर राज है, राज के सामंत विद्यालय में पढ़ता हूँ।
1: हाँ हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं आज? बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या सुनाना चाहते हैं आप? कविता?
2: नमस्ते देवी।
1: हाँ नमस्ते, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम अक्षराज है।
1: आप क्या सुनाना चाह रहे हैं आज?
2: मैं एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ।
1: हाँ बिल्कुल सुनाइए।
2: हे कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म धर्म आदियम, सत्य सत्य कलेश कलम है।

0: बहुत अच्छा। आप कौन से कक्षा में पढ़ते हैं? कक्षा 8 के स्टूडेंट है। बहुत अच्छा
1: बच्चों। अभी
2: नमस्ते दीदी, मेरा नाम राखी कुमारी है, मैं राजकीय श्याम मध्य विद्यालय मिर्जापुर दरभंगा।
0: कौन से कक्षा की छात्रा हैं आप?
2: क्लास 8।
0: आप आज क्या सुनाना चाहेंगी? कविता का शीर्षक क्या है?
2: यह सबसे कठिन समय नहीं।
0: हाँ बिल्कुल सुनाइए।
2: यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ, एक अभी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलवे जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी का जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त आ हो गया, अभी कहाँ जाता है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों की, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार, दुनिया से लाए बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं।
0: वाह बहुत अच्छा कविता।
1: आप क्या सुनाना चाहोगी? कविता आता है, राइम्स आता है, सुनाओ।
3: टमाटर बड़े मजेदार, वक्त टमाटर बड़े मजेदार।
1: बहुत अच्छा।
3: चींटी ने खाया, हाथी को भी मार पकाया, एक दिन उसको चींटी ने मारा,
1: अरे वाह,
3: हाथी को भी मार गिराया। टमाटर बड़े मजेदार, वक्त टमाटर बड़े मजेदार। ठंडी ठंडी हवा ने डाली डोल डोल रही है डाली डाली, आला छोड़ो मेरे प्यारे, उठो उठो मैनो की तारे।
1: बच्चों अभी बच्चे मन के सच्चे अंक में आप सुन रहे थे राजकीय श्यामा मध्य विद्यालय मिर्जापुर के बच्चों के साथ हुई मेरी बातचीत का कुछ अंश। आइए अब बातें करें सामान्य ज्ञान की। बच्चों भीमराव अंबेडकर भारत के महान नेता, समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उन्होंने समाज में समानता और दलितों के अधिकार के लिए जीवन भर संघर्ष किया। गंगा नदी बिहार के बीच से बहती है, यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ धान गेहूं और मक्का उगाए जाते हैं।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फुलवाड़ी।
5: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी, दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
6: हाँ यार उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
5: पर बैंकिंग में नहीं।
7: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले, अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
5: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने

0: एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: बोल बोल के थक गया।
5: क्या हुआ?
4: नया किट बैग चाहिए।
5: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग।
6: RBI कहता है
7: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
12: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
13: नमस्कार सर। नमस्कार।
14: नमस्कार सर।
12: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है, एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूँ कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
13: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है, मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर

0: एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ। एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था। एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया। एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है। एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ। एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज़ और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था, तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फ़ोटो कब की है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह, बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो।
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियाँ करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज़ किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज़ किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
2: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज़ किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
0: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस

0: पे अमल रहना है, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे। बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है। बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूव किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं। एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
0: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को ज़रूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी, अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहाँ पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, सम्बारम, और ओडिशा में बेलपना।

पेय नहीं भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात ना होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे, गर्व व्यक्त कर रहे। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी

इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शन 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना

रखना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब, कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण

0: भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है मन की बात कार्यक्रम का मैथिली रूपांतर।
3: हमर प्रिय देशवासी लोकन, नमस्कार। मनक बात में एक बेर फिर अपने लोकन से जुड़ कर हमरा बड़ प्रसन्नता भ रहल अछि। देशक फराक फराक हिस्सा में हमरा देशक लोक देश हित में, समाज हित में एहन अद्भुत चीज सब क रहल अछि। आ जखन हुनका विषय में सुनैत छी तो हमरा एकटा नव प्रेरणा भेटैत अछि। आइ कार्यक्रमक शुरुआत हम एथलेटिक्स में देशक एहने उपलब्धि सँ करब। किछुए दिन पूर्व झारखंडक रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन भेल। एहिमे लगभग 800 एथलीट्स भाग लेबाक लेल देश भरि सँ आयल छलाह।

0: एहि क्रम में चारिटा फराक फराक इवेंट में चारिटा नेशनल रिकॉर्ड टूटल। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा आ कुलदीप कुमार इस संगी लोकन फराक फराक कैटेगरी में नव रिकॉर्ड बनौलन। हम सबसे पहिने तो हिनका सबके बहुत बहुत बधाई दै छियन। संगी लोकन, एकटा इवेंट जकर देश भर में बहुत चर्चा भ रहल अछि ओ अछि 100 मीटर रेस, 100 मीटर केर दौड़। मात्र 2 दिनक भीतर मेन्स 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बेर टूटल। जे दूटा एथलीट्स ई कमाल देखौलनि अछि ओ छथि गुरिंदर वीर सिंह आ अनिमेश कुजूर। हम सोचलहुँ जे एहि बेर मोनक बात में एहि दुनू खिलाड़ी सँ गप कयल जाय। अनिमेश जी नमस्कार। गुरिंदर वीर अहूँ के नमस्कार। सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर।
0: अच्छा भाई, अहाँ तो बहुत पैघ अचीवमेंट केलहुँ अछि। अहाँ सभक जोड़ी सेहो बड़ कमाल केलक अछि। हम संगीत में तो जुगलबंदी देखने

0: हम सोचलहुँ जे एहि बेर मोनक बात में एहि दुनू खिलाड़ी सँ गप कयल जाय। अनिमेश जी नमस्कार। गुरिंदर वीर अहूँ के नमस्कार। सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर।
0: अच्छा भाई, अहाँ तो बहुत पैघ अचीवमेंट केलहुँ अछि। अहाँ सभक जोड़ी सेहो बड कमाल केलक अछि। हम संगीत में तो जुगलबंदी देखने छलहुँ, मुदा चुनौती में आब जुगलबंदी होइत अछि जे एक बेर एकटा चुनौती दिया फिर दोसर ओही चुनौती के उठा ले फिर तेसर बेर कऽ ले। बड़ इंटरेस्टिंग विषय रहल अछि अहाँक। हम चाहे छी जे मोनक बात केर श्रोता के पता चलनि जे अहाँ सभक विषय में हुनको जानकारी होइन। अहाँ सब जे पराक्रम केलहुँ अछि ओकर पता चले।
1: नमस्ते सर, हमर नाम अनिमेश कुजूर छी। हम 200 मीटर आ 400 मीटरक नेशनल रिकॉर्ड होल्डर छी आ हम छत्तीसगढ़ सँ बिलोंग करै छी सर। आ एखन हम उड़ीसा सँ खेलाइत छी। हम लास्ट ईयर एशियन मेडल आ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लऽ कऽ एलहुँ आ हम एथलेटिक्स 2021 सँ चालू केलहुँ जखन हम स्कूलसँ पास आउट भेलहुँ। हम सैनिक स्कूल अम्बिकापुरसँ पास आउट छी आ हम पहिने फुटबॉल खेलायल करैत छलहुँ आ हमर माता पिता कोविडक समय हमरा थोड़े बहुत छूट दैत छला जे तू जाकर बाहर दौड़ ले आ खेला ले। तँ जखन कोविड समाप्त होमय लागल तँ हमर फुटबॉलक जे मित्र सब छला ओ लोकनि हमरा कहलनि जे स्टेट मीट होयवला छै, जाकर तू पार्टिसिपेट कर। आ हम पार्टिसिपेट केलहुँ आ हमरा बुझल नहि छल जे ओतहिसँ नेशनल लेवलके सेलेक्शन छै। हम ओतहिसँ नेशनलमे सेलेक्ट भेलहुँ आ आइ हम इंडियाके रिप्रेजेंट कऽ रहल छी इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी की अछि?
2: नमस्ते सर, हमर नाम गुरिंदर वीर अछि आ हम इंडियन नेवीमे पेटी अफसर छी। इंडियाके सबसँ तेज स्प्रिंटर छी। एखन हम 100 मीटरमे 10.09 केर नेशनल रिकॉर्ड बनेलहुँ अछि आ हम पहिल इंडियन छी जे 10.1 केर बैरियर केर नीचा दौड़लहुँ अछि आ हम कोशिश कऽ रहल छी जे हम ट्रैक आ वर्दीमे सेहो अपन देशक सेवा करी। हमर फादर आ ग्रैंडफादर दुनू स्पोर्ट्स करैत छलाह। हमर इंडियाके कल्चर छी जखन कोनो पाबनि होइत अछि जेना दियावाती जेना नव साल तँ हम अपन घरक सफाई करै छी, तँ हम अपन फादर केर ट्रॉफी सभक आ मेडल सभक सफाई करै छलहुँ तँ हमरा ओ बड नीक लागै छल, तँ हम बड़ खुश होइ छलहुँ। तखन जखन हम कोनो ट्रॉफी साफ करै छलहुँ तँ हम पूछै छलियनि जे ई ट्रॉफी कतौ जीतलहुँ, ई मेडल कतौ जीतलहुँ, ई फोटो कहियाके अछि। तखन फेर ओ अपन खिस्सा सुनबै छला कि हम एतौ खेलाइ गेलहुँ, हम ई नेशनल मेडल जीतलहुँ, हम अपन टीमके एहिमे जीतेलहुँ। तखन फेर हमहूँ हुनका कहै छलियनि जे हमरो कोनो स्पोर्ट्स करबाक अछि। ओ रनिंग करबाक लेल जाइ छलाह मॉर्निंगमे, तँ हम हुनका कहऽ लगलियनि जे हमरो लऽ कऽ जायल करू अपना सङ्ग, तँ हमरा लऽ कऽ जाय लगलाह। तँ ओ जे अपन गेम स्पोर्ट्समे सीखने छलाह से हमरा सिखाबऽ लगलाह, तँ हमर इंटरेस्ट बनऽ लागल। हम उसैन बोल्ट केर वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटैत देखलहुँ तँ एकटा स्टोरी अछि एहन फनी। हम एखन टीवी देख रहल छलहुँ तँ मम्मी हमर टीवी बंद कऽ देलक जे एखन बेटा पढ़बाक टाइम भऽ गेल, अहाँ पढ़ू। तँ हम कहलियनि जे ठीक छै, अहाँ हमरा टीवी नहि देखऽ दै छी,
3: एक दिन एहन आयत अहाँ हमरा टीवीमे ताकब
2: जे देखू ओ गुरिंदर दौड़ रहल अछि तँ हमरो खुशी होयत। जखन हमर माँ हमरा टीवी पर दौड़ैत देखती।
0: वाह वाह वाह, बड़ सनगर गप अछि भाई अहाँके तँ।
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली छै सर। फेर हमर फादर ओहो वॉलीबॉल खेलाइत छलथि, घरक प्रॉब्लम केर कारण ओ अपन स्पोर्ट्स छोड़ि देलनि। हुनकर जे सपना पूरा करयवला रहि गेलनि तँ ओ हमरा भीतर ओ सपना देखलनि, भाई हमर बेटा ओ सपना पूरा करत। तँ हम हुनकासँ गप करै छलहुँ, फेर सुनै छलहुँ मिल्खा सिंह एतेक परिश्रम करै छलाह। हम हुनका कहै छलियनि जे हमहूँ अहाँके एक दिन सपना पूरा करब, तँ कहै छलाह सपना

0: पूरा एना नहीं होइ छैक। ओहि लेल बहुत हार्ड वर्क करऽ पड़ै छैक, परिश्रम करऽ पड़ै छैक। मिल्खा सिंह जी खूनक उल्टी करै छला, रौदमे दौड़ै छला, भरि भरि दिन ट्रेनिंग करै छला, तऽ ओ चीज सब हमरा इंस्पायर करै छल। हमर फादर हमरा इंस्पायर करै छला जे हम दौड़ब तऽ अपना देशक लेल, देशक लेल मेडल आनू, जीतू। आ इहो छल जे जखन हम इवेंट चूज केलहुँ 100 मीटर, तऽ सब हमरा कहै छल जे भाई 100 नहि करऽ, 100 इंडियन केर इवेंट नहि छै, इंडियन केर बॉडी 100 मीटर लेल नहि बनल छै। तऽ हमर फादर सदिखन बजै छला जे एखन गुरिंदर हम ई चूज केलहुँ अछि, हम एहिसँ पाछू नहि हटब। जे हमरा कहै छथि जे भाई हम नहि कऽ सकब, हम ओकरा कऽ कऽ देखेबै आ तू कऽ कऽ देखेमा, हमरा तोरा पर भरोसा अछि। तऽ ओ भरोसा जखन हमरा पर हमर फादर कयलनि तऽ हम ओहि भरोसक अपन हिम्मत बनाकर चललहुँ। आ आइ हर इंडियन कहै छथि जे भाई इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखू, अहाँ दुनू बड़ पैघ कमाल केलहुँ अछि आ मात्र 2 दिनक भीतर अहाँ दुनू 3 बेर नेशनल रिकॉर्ड तोड़लहुँ अछि 100 मीटर रेसमे दौड़ब। जेना गुरिंदर वीर कहलनि जे लोक कहै छथि जे भारतक लोकक तऽ शरीर एहि काज लेल छैहे नहि, एतेक कठिन होइतहुँ अहाँ काज केलहुँ, तऽ ई दुनूसँ हम जानऽ चाहब आ मोनक बातके श्रोता सेहो सुनऽ चाहता जे कोन साहस छल, की जिद्द छल, कोन सोच छल आ कोना कऽ रहल छलहुँ, ई कतेक कठिन होइत अछि।
0: जी सर, हम गुरिंदर, हम जखन स्टार्टिंगमे सर बहुत स्ट्रगल छल, बहुत बेर डाउट सेहो आयल जे हम सही कऽ रहल छी, हम सही चूज केलहुँ, किएक तऽ सब बेर अहाँ नहि जीतै छी, कखनो कखनो अहाँ सीखै छी। जखन हम हारै छलहुँ, जखन हम सही परफॉर्मेंस नहि करै छलहुँ, कोनो इंजुरी आबि जाइ छल तऽ हमर घरक लोक हमर सपोर्ट करै छला जे भाई कोनो बात नहि, एक दिन खराब चलि गेलै, एक साल खराब चलि गेलै, तऽ एहिसँ जिंदगी खराब नहि होइ छै, सपना देखब नहि छोड़ी। तऽ हमर कोच सेहो हमरा ई सिखौलनि जे यदि तू नहि करमे तऽ केओ नहि कऽ सकत। तऽ एना जखन हमर कम्युनिटी, हमर लग पासक लोक हमरा उत्साहित करैत छथि तऽ हमर कखनो ओ मोटिवेशन नहि टूटैत अछि।
1: अनिमेश जी।
2: सर, हमरा तऽ सब केओ कहै छल जे जखन हम 2021 चालू केलहुँ एथलेटिक्स, तऽ हमरा कहैत छला जे देखू ई नव फील्ड अछि, अहाँ कऽ सकब कि नहि, तऽ हम बजलहुँ जे आब हम एहि फील्डमे घुसल छी तऽ करबे करब। हमर पप्पा सेहो सदिखन हमरा कहैत छला जे तू एहि फील्डमे घुसल छ तऽ कखनो पाछू मुड़िके देखियौ नहि, किएक तँ सोचैत तँ सब छथि जे ई करबाक अछि, ओ करबाक अछि, लेकिन कऽ कऽ बहुत कमे देखबैत छथि। तू बस एहि फील्डमे घुसल छ तँ एहि पर अटल रहियँ, एहि पर आगू बढ़बाक छै, तोरा सबटा फैसिलिटीज सब चीज हम सपोर्ट करबो, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज हम सब करब, बस तू मेहनत कर आ इंडिया के देखा जे इंडियंस सेहो दौड़ सकैत अछि, किएक तँ ई हमरो लोक कहै छल जे इंडियंस के जीन्स एहन नहि छै जे ओ सब 10.1 के भीतर दौड़ सकैत अछि या केओ ओ स्प्रिंट कऽ सकैत अछि, मुदा एखन हम दुनू एहन साबित केलहुँ जे इंडियंस सेहो कऽ सकैत अछि, एहन कोनो हार्ड नहि छै हमरा लेल, हमहूँ सब किछु कऽ सकै छी। तँ सर, ई सब चीज हमरा बहुत मोटिवेट करैत अछि आ जेना जेना हम ट्रेनिंग कऽ रहल छी आ टाइमिंग तोड़ि रहल छी, अपना आ बाकी इंडियंस के सेहो ई चीज देखा रहल छी जे इंडियंस सेहो कऽ सकै छथि आ हम और करब सर एखन। आ एखन हमरा दुनूक सेलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लेल सेहो भेल अछि, तँ ओतय अपकमिंग कम्पिटिशन मे हम और नीक प्रदर्शन करब।
1: अच्छा देखू, हमरा मोन मे सेहो एकटा कौतूहल अछि आ लोको कहतनि, हम सुनै छी जे अहाँ दुनू गोटे नीक मित्र सेहो छी, अहाँ दुनू किछु ठानि लेने छलहुँ जे तू हमर रिकॉर्ड तोड़लें तऽ हम तोहर

0: रिकॉर्ड तोड़ दियो की पहले अनिमेश बताओ।
1: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 कर छल जे हमरे छल आ तखन ओकरा गुरिंदर वीर भैया सेमीफाइनल में तोड़लन 10.17 क के आ हम फिर से ओकरा सेमीफाइनल 2 में 10.15 क के तोड़ देलहुं। तो वही समय जखन हमर सेमीफाइनल भेल छल तो हम दुनू खुश छलहुं जे हाँ चलू ठीक छे आई रिकॉर्ड टूटल आ चलू हम दुनू तोड़लहुं किएक तो वही समय कंपटीशन में राइवलरी रहित अछि मुदा हम दुनू ठानि के रखने छलहुं पहिने सँ। ओही सँ पहिने हम सब सऊदी अरब सेहो गेल छलहुं कंपटीशन करबाक लेल तँ ओतै सेहो हम दुनू रूममेट्स छलहुं तँ हम दुनू ओतहु गप करैत छलहुं जे इंडिया के स्प्रिंटिंग के आगू लऽ के जेबाक छै आ हमरे हाथ में अछि ओ चीज हम जे करब वह बाकी के मोटिवेट करत।
0: गुरिंदर वीर की कह चाहब?
2: हम दुनू निर्णय केने छलहुं जे हम दुनू नीक दौड़ब तँ कखनो सर एक दोसर के जरूरत होइत छै तँ एक दोसरक संग ठाढ़ होइत छी। जेना एखन रिकॉर्ड करबा से पूर्व जखन हम रिकॉर्ड केलहुं फिर अनिमेश कयलनि तँ जखन हम वार्म अप कऽ रहल छलहुं तँ हम अनिमेश के बता रहल छलहुं एखन अनिमेश ओ ब्लॉक सही अछि ओहि पर जाके बैसू ओते स्ट्राइड कऽ लिय हम वार्म अप एते करब एते वार्म अप सही होयत तँ एक दोसरक मदद करैत अछि एक दोसरक मदद करै छी तँ दोसर सेहो इम्प्रूव करैत अछि हमहूँ इम्प्रूव करै छी तँ दोस्ती सेहो चाही मुदा सर हम ग्राउंडक बाहर छी कंपटीशनक बाहर छी तँ हम दोस्त छी जखन हम ग्राउंड में चलि जाइ छी तँ हम एक दोसरक कंपिटिटर भऽ जाइ छी तँ ई होइत अछि जे हम हिनका सँ फास्ट दौड़ब हम हिनका सँ फास्ट भागब।
0: देखू अहाँ सब जे स्पर्धा केलहुँ अछि ने ओ देशक मान बढ़ेबाक लेल केलहुँ अछि देश के भविष्य में एहि स्थान पर पहुँचेबाक लेल केलहुँ अछि आ एकटा पॉजिटिव स्पिरिट सँ केलहुँ अछि आ हम मानै छी जे अहाँक जे ई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अछि खेलब सेहो अछि एक दोसरा के चुनौती सेहो देब अछि आ फेर आगू निकलबाक लेल प्रयास करब अछि आ फेर आगू जेबा लेल एक दोसराक सहयोग करब अछि ई अद्भुत काज केलहुँ अछि अहाँ सब हमरा दिससँ अहाँ सबके बहुत बहुत बधाई हमर बहुत बहुत शुभकामना आ अहाँ देशक नाम सेहो रोशन करब ई हमरा पूरा विश्वास अछि अहाँ एहिना मेहनत करैत रहू बहुत प्रगति होयत बहुत बहुत शुभकामना हमर।
1: शुक्रिया सर शुक्रिया अहाँके
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हमर प्रिय देशवासी लोकनि एखन देशक अधिकांश भाग में बहुत गर्मी पड़ि रहल अछि तिखगर रौद गर्म हवा एहन मौसम में अपन ध्यान राखब बड़ जरूरी अछि पानि पिबैत रहू रौद में यदि निकलऽ पड़े तँ थोड़ेक सम्हरि कऽ निकलू एहि दिशा में सरकारक भिन्न भिन्न विभाग सब जे गाइडलाइंस जारी केलक अछि ओहो बिसरब नहि। संगी लोकनि एतौ गर्मी सँ लड़बाक तरीका कतेको बेर भनसाघर में सेहो भेटैत अछि अहूँ सब देखने हैब जेना जेना गर्मी बढ़ैत अछि ओहिना ओहिना घरक भानसक स्वाद बदलि जाइत अछि भानसक प्रकार बदलि जाइत अछि कतहु मटकीक जल निकलि अबैत अछि कतहु दही पौराय लगैत अछि तँ कतहु कांच आम उसनाय लगैत अछि आ फेर शुरू होइत अछि देसी पेय केर दौर। देसी पेय सँ अहूँ परिचित छी यदि अहाँ उत्तर भारत में जायब तँ कतेको ठाम अहाँके भेटत आम पन्ना कचका आमक स्वाद आ गर्मी सँ उसास सेहो पंजाब हरियाणा जाओ तँ लस्सी भेट जायत बड़का गिलास वाला लस्सी राजस्थान आ गुजरात में छाछ जेना सब भोजनक संगी बनि जाइत अछि आ बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू केर शरबत ओकर तँ बाते की अछि पेटो भरय तागत सेहो दिए कोंकण आ गोवा में कोकम शरबत सोल कढ़ी दक्षिण भारत में पानकम निरमोर सांबरम आ उड़ीसा में बेलपन्ना ओ मात्र पेय नहि भारतक फराक फराक क्षेत्रक परंपराक हिस्सा अछि आ एहि मे एक भारत श्रेष्ठ भारत केर भावनाक झलक सेहो भेटैत अछि।

पीछे। आ एक बात अवश्य ध्यान राखब, एहि में अधिकांश चीज हमर अपन भनसा घर सँ निकलल अछि, हमर खेत खरिहान सँ निकलल अछि। कोनो पैघ ब्रांडिंग नहि छै, मुदा पीढ़ीक अनुभव ओहि में सम्मिलित भेल अछि। अहूँ गर्मी क्रम में देसी पेय केर खूब आनंद लिअ। संगी लोकनि, गर्मी अबिते एकटा आर चर्चा घर घर में शुरू भऽ जाइत अछि, आ ओ अछि आम। आम सामान्य चर्चाक विषय होइत अछि। भारत में भरिसक्के कोनो घर हैत जतय गर्मी में आमक गप नहि होइत होय। सब इलाकाक अपन आम, अपन स्वाद, अपन सुगंध। महाराष्ट्र आ कोंकणक हापुस, अल्फांसो, गुजरातक केसर, ई तऽ आम रसक जान छी। उत्तर प्रदेशक दशहरी आ हमर काशी केर नेंगरा। ओना नेंगरा आमक एकटा विशेष बात होइत अछि, पकला के बाद ओकर रंग कतेको बेर हरियरे रहैत छैक। बिहारक जरदालू, जकर सुगंध दूरे सँ चिन्हय में आबि जायत। चौसा, मालदह, सब नामक संग लोक सभक याद जुड़ल अछि। दक्षिण भारत जाओ तऽ बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मालगोआ, बंगालक हेमसागर, उड़ीसा आ आंध्र प्रदेशक सुवर्ण रेखा, अर्थात जगह बदलैत अछि। आमक रूप, रंग आ ओकर स्वाद सेहो बदलि जाइत अछि। आ संगी लोकनि, आमक ई यात्रा आब गाम सँ ग्लोबल मार्केट धरि सेहो पहुँचि रहल अछि। आइ मोनक बातक माध्यम सँ हम आमक उपजा सँ जुड़ल अपन किसान भाई बहिन लोकनिक प्रशंसा करब। अहाँ देशक कृषि अर्थव्यवस्था लेल आम किसान नहि, बहुत विशेष छी। अहिना पसरल रहू। संगी लोकनि, गर्मीक एहि दिन मे एना तऽ स्कूलक छुट्टी सब होइत अछि, मुदा हम एकटा एहन क्लास केर बात करब जाहि मे अपनेक एडमिशन करबाक मोन करऽ लागत। संगी लोकनि, एकटा स्थिति केर कल्पना करू, एकटा एहन स्कूल जतय बच्चा सेहो अबैत हो, युवा सेहो आ बुजुर्ग सेहो, जतय कोनो फीस नहि होय, कोनो पैघ बिल्डिंग नहि होय, कोनो क्लासरूम सेहो नहि होय, आ सबसँ रोचक बात ओतय क्लास धार मे लगैत होय। संगी लोकनि, ई कोनो खिस्सा नहि छी, ई एकटा वास्तविक प्रयास अछि। केरलम केर आलुआ मे साजी बलासेरिल जी एहने एकटा स्विमिंग क्लब चला रहल छथि। एखन धरि 15,000 सँ बेसी लोक एतय हेलब सीख चुकल छथि। साजी जी दिव्यांग बच्चा सबके सेहो हेलब सिखेलनि अछि। एहि प्रयासक पाछू एकटा पीड़ा सेहो नुकायल अछि। किछु वर्ष पहिने एकटा नाह दुर्घटना, कतेको छात्र लोकनिक मृत्यु भऽ गेल छल। ओ घटना साजी जी के भीतर धरि झकझोरि देलकनि। ओ सोचलनि, यदि बच्चा सबके हेलय अबैत रहितै तऽ भरिसक कतेको जान बचि जैतै। बस एतहि सँ शुरू भेल हुनक ई अभियान। संगी लोकनि, साजी वलासेरिल जीक जीवन हमरा सबकेँ एकटा बहुत पैघ सीख दैत अछि। सेवा करबाक लेल बहुत पैघ साधन जरूरी नहि अछि, जरूरी होइत अछि एकटा नीक विचार आ लगातार कयल गेल प्रयास। एकरे दम पर हजारो लोकक जीवन में परिवर्तन आनल जा सकैत अछि। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, बीतल दिन में हमरा यूरोपक नीदरलैंड जेबाक अवसर भेटल। ओतय हम कतेको मीटिंग में शामिल भेलहुँ। एहि क्रम में एकटा एहन क्षण आयल जे प्रत्येक भारतीय के गर्व सँ भरि देलक। नीदरलैंड में आयोजित एकटा विशेष समारोह में चोला कालक प्राचीन ताम्र पट्टिका भारत केर वापस सौंपल गेल। ओहि कार्यक्रम में नीदरलैंडक प्रधानमंत्री सेहो उपस्थित छलाह। एहि ताम्र पट्टिका सबके लऽ कऽ हमरा देश विदेश सँ लगातार संदेश भेटि रहल अछि। लोक सब खुशी प्रकट कऽ रहल छथि, गर्व व्यक्त कऽ रहल छथि। दुनिया भरिक तमिल समुदाय में सेहो एकरा लऽ कऽ विशेष उत्साह छनि। संगी लोकनि, एहि ताम्र पट्टिका के लऽ कऽ लोक सब में बेस जिज्ञासा सेहो छनि। तैं आइ हम एहि सँ जुड़ल किछु गप अपने लोकनिक संग बिलहऽ चाहै छी। एहिमे 21 पैघ, 3 छोट ताम्र पट्टिका सब अछि। ई मुख्य रूप सँ राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपन पिता राजा राज राजा चोला केर एकटा वचन के पूरा करबा

सँ जुड़ल अछि। एहिमे अनै मंगलम गामक एकटा बौद्ध विहार के दान देबाक उल्लेख अछि। एहि ताम्र पट्टिका सबमे चोला वंशक उपलब्धि सभक सेहो वर्णन भेटैत अछि। एहि सँ भाँज लगैत अछि जे चोला साम्राज्यक समुद्री शक्ति कतेक मजगूत छल। दक्षिण पूर्व एशियाक देश सभक संग हुनक संबंधक जनतब सेहो एहिमे भेटैत अछि। चोला साम्राज्यक समृद्ध इतिहास आ संस्कृति पर हमरा सबकेँ बहुत गर्व अछि। संगी लोकनि, हमर सरकार भारतक एहन अमूल्य धरोहर सभक संरक्षण लेल लगातार प्रयास कऽ रहल अछि। एहि क्रममे ज्ञान भारतम अभियान केर अन्तर्गत छत्तीसगढ़ केर मल्हारमे सेहो एकटा महत्वपूर्ण खोज भेल अछि। एतय 3 दुर्लभ ताम्रपट्टिका सभ भेटल अछि। ई पांडुवंशी राजवंशक महर्षि बालार्जुनक शासनकालसँ जुड़ल मानल जा रहल अछि। विशेषज्ञ मानै छथि जे ई इंस्क्रिप्शंस 6th-7th शताब्दीक छी, अर्थात 1400-1500 साल पुरान ई ताम्रपट्टिका सभ प्राचीन ब्राह्मी लिपि आ पाली भाषामे लिखल गेल अछि। एहिसँ ओहि समयक शासन व्यवस्था, धर्म आ संस्कृतिक विषयमे महत्वपूर्ण जनतब भेटैत अछि। संगी लोकनि, हमरा सभ भारतीयमे खगोल विज्ञान अर्थात एस्ट्रोनॉमी के लऽ कऽ सदिखन विशेष आकर्षण रहल अछि। हमरा देशमे आइयो सदियों पुरान ऑब्जर्वेटरी उपस्थित अछि। एतय अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज भेल अछि। नेविगेशन होइ, पंचांग होइ वा हमरा सभक पावनि तिहार, एहि सभक संबंध आकाश आ तारा सबसँ रहल अछि। हमरा ओतय एस्ट्रोनॉमी सब पीढ़ीमे कौतूहल जगौने अछि। ओकरा एक्सप्लोरेशन लेल प्रेरित केलक अछि आ आजुक युवा लोकनिमे सेहो एकरा लऽ कऽ बेस उत्साह देखाइ दैत अछि। आइ काल्हि अहूँ देखैत हैब देशभरिमे एस्ट्रोनॉमी क्लब सब तेजीसँ लोकप्रिय भऽ रहल अछि। पैघ शहरसँ लऽ कऽ छोट कस्बा धरि, इसकुलसँ लऽ कऽ पार्क धरि एकर गतिविधि सब देखाइ दैत अछि। हमरा बंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटीक विषयमे जानकारी भेटल। एतहि ऑब्जर्वेशनल सेशन आयोजित कयल जाइत अछि। ई संस्था ग्रामीण क्षेत्रमे एस्ट्रोनॉमीके लोकप्रिय बनेबाक मिशन सेहो शुरू केलक अछि। खगोल मंडल नामक एकटा टीम 30 एकटा बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू केलक अछि। संगी लोकनि, रातिमे तारा सबके निहारब अपनामे अद्भुत अनुभव होइत अछि। एस्ट्रो केरला नामक एकटा संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप्स आ वर्कशॉप्स आयोजित करैत अछि। एतय युवा संगी टेलीस्कोप बनाएब आ स्टार मैप्स केर प्रयोग करब सीखैत छथि। राजकोटक बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब गिर केर जंगलसँ कच्छ केर रन तक अपन एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित केने अछि। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था सेहो एस्ट्रोनॉमी केर सबसँ पुरान संस्थानमे सँ एक अछि। एतय ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज केर सङ्ग सङ्ग पोथी, पुस्तकालय आ टेलीस्कोप लाइब्रेरी केर सुविधा सेहो छैक। हम आइसैक केर सेहो चर्चा करय चाहब। ई एकटा स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क अछि जे एस्ट्रोनॉमी आ एस्ट्रोफिजिक्स क्लब के आपस में जोड़ैत अछि। संगी लोकनि, अपन हॉबीक लेल समय निकालब आ लगातार किछु नव सीखैत रहब बड आवश्यक अछि। हम युवा लोकनिसँ आग्रह करब जे ओ कोनो एस्ट्रोनॉमी क्लब सँ अवश्य जुड़ैथ आ एहि छुट्टीमे कोनो तारा मंडलकेँ सेहो अवश्य देखऽ जाइथ। संगी लोकनि, मोनक बात कार्यक्रमकेँ जे लोकनि टीवी पर देखि रहल छथि, हम हुनकासँ कहबनि एकटा वीडियो अवश्य देखब। ई वीडियो पिछला दिन बहुत चर्चामे रहल। एहिमे किछु लोक बड्ड धैर्यसँ, बहुत सावधानीसँ एकटा गंगा डॉल्फिनकेँ बचेबाक प्रयास कऽ रहल छथि। अपनेकेँ ई जानि कऽ आश्चर्य होयत, एहि पूरा प्रयासमे लगभग 13 लागल आ अंततः ओ डॉल्फिन बचि गेल। संगी लोकनि, एहिमे बहुत पैघ भूमिका रहल भारतक पहिल गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस केर। ई घटना उत्तर प्रदेशक छी। ओतय एकटा गंगा डॉल्फिन नहरमे फँसि गेल छल। एहन समयमे नमामि गंगे अभियानक अंतर्गत

बनल ई एम्बुलेंस ओकरा लेल आशा बनि कऽ पहुँचल। फिर बहुत सावधानी सँ ओकरा बाहर निकालल गेल, ओकर जांच कयल गेल, ओकर इलाज कयल गेल आ ओकर बाद ओकरा सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ी देल गेल। एक तरह सँ कही तऽ एकटा जीवन फेर अपन घर घूमि गेल। संगी लोकनि, ई डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत विशेष अछि। एकरा एकटा चलंत अस्पताल जकाँ तैयार कयल गेल अछि। एहिमे डॉल्फिन के सुरक्षित रखबाक व्यवस्था अछि, ऑक्सीजनक सुविधा अछि, विशेष स्ट्रेचर अछि, बचावक उपकरण अछि। अर्थात यदि कोनो डॉल्फिन घायल भऽ जाय, नहर में फंसि जाय वा नदी सँ कटि जाय तऽ तुरंत ओकर मदति कयल जा सकैत अछि। संगी लोकनि, जखन हम गंगा डॉल्फिन के बचबैत छी तऽ हम मात्र एकटा प्रजाति के नहि बचबैत छी, हम गंगाक जैव विविधता के बचबैत छी, नदीक पूरा जीवन तंत्र के बचबैत छी आ अपन आबय वाला पीढ़ी लेल प्रकृति केर एकटा अमूल्य धरोहर सेहो बचबैत छी। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, अहाँ सब में सँ बहुत लोकक नदी, पोखरि वा इनारक पानि सँ जुड़ल स्मृति अवश्य होयत। ककरो पोखरि में हेलब मोन होयत, ककरो मित्र लोकनिक संग पोखरि कछेर में खेलायब, ककरो ओहि माटिक सुगंध मोन होयत। नेनपनक एहन स्मृति जीवन भरि मोन में बसल रहैत अछि। संगी लोकनि, एहने स्मृति सबकेँ बचेबाक एकटा प्रेरक कथा उत्तर प्रदेशक बस्ती जिला सँ सोझा आयल अछि। बस्तीक आकाश गुप्ता अपन गामक मनोरमा नदीकेँ देखि कऽ बहुत दुखी होइत छथि, किएक तँ जाहि नदीकेँ ओ बचपनमे साफ आ जीवंत देखने छलाह, समयक संग ओहि नदीमे प्लास्टिक जमा होमय लागल छल, गंदगी बढ़ैत चलि जा रहल छल। श्रीमान आकाश ई तय कयलनि जे शिकायत नहि करता, एकटा नव शुरुआत करता। शिकायत नहि, शुरुआत मंत्र बनि गेल। ओ अपन मित्र सबकेँ संग लेलनि। मात्र जाल छल, फावड़ा छल, टोकरी छल आ सबसँ पैघ ताकत छल किछु बदलबाक संकल्प। ई युवा नदीमे उतरैत छल, जलकुम्भी निकालैत छल आ प्लास्टिक आ कचरा बाहर अनैत छल। कतेको बेर एक दिनमे 50-60 किलो धरि कचरा नदीसँ निकालल गेल। धीरे धीरे मनोरमा नदीक ओ हिस्सा फेरसँ साफ देखाय लागल। लग पासक लोक सभक ध्यान सेहो एहि काज दिस गेल। लोक सबमे स्वच्छताकेँ लऽ कऽ जागरूकता बढ़ल। संगी लोकनि, एहने एकटा प्रेरक कथा गोवासँ सेहो सोझा आयल अछि। गोवाके बालकृष्ण अय्याजी रिटायर्ड टीचर छथि, मुदा समाज लेल काज करबाक हुनक उछाह आइयो ओहिना छनि। हुनका मड्डी तोलाप इलाकामे पानिक समस्या बहुत परेशान करैत छलनि, ओहो समाधान लेल काज आरंभ कयलनि। बालकृष्ण जी पाइपलाइन बिछेबाक काजमे महत्वपूर्ण भूमिका निमाहलनि। एहिसँ कतेको घर धरि जल पहुँचल। जाहि परिवारकेँ पानि लेल रोज संघर्ष करय पड़ैत छलैक, हुनका लेल ई बहुत पैघ उसास बनल। संगी लोकनि, पछिला मास हमरा एकटा बहुत नीक अनुभव भेल, एकर सम्बन्ध मोनक बातसँ सेहो जुड़ल अछि, तैँ आइ हम एकर चर्च अपने लोकनिसँ करय चाहैत छी। तमिलनाडु केर नागरकोइलमे हमर भेंट एकटा शिक्षकसँ भेल। लगभग 3 दशक पहिनहुँ हम हुनकासँ भेंट कयने छलहुँ। हम बात कऽ रहल छी गिरिजा अम्माजी केर। एहि भेंटघाटक क्रममे किछु युवा छात्र लोकनि सेहो हुनका सङ्ग छलखिन। संगी लोकनि, गिरिजा अम्माजी लगभग 15 टा स्कूल चलबै छथि। एहिमे चेन्नई केर जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विश्वविद्यालय बहुत प्रमुख अछि। हुनक देशभक्ति केर भावना सभ भारतवासीकेँ प्रेरित करय वला अछि। ओ मोनक बातसँ प्रेरणा लऽ कऽ देशक अनेक सैनिक लेल योगदानक संकल्प लेलनि। एकरा लेल ओ अपन सभ स्कूलक छात्र लोकनिकेँ प्रेरित कयलनि। ओ बच्चा लोकनिसँ कहलनि जे ओ वीर जवान लेल प्रत्येक दिन 1 टका योगदान दैथ। अर्थात एक सालमे प्रत्येक छात्र दिससँ 365 टका जमा भेल। एहि छोट छोट योगदानसँ लगभग 40 लाख टाका इकट्ठा भेल। गिरिजा अम्माजी एहि पूरा राशि केर चेक हमरा सौंपलनि।
हुनका

0: सँ बातचीतक क्रम में हम अनुभव केलहुँ जे माँ भारतीक प्रति हुनक समर्पण कतेक गहीर छनि। पछिला वर्षे चेन्नई केर पहिल हिंदू विद्यालय अपन 50 वर्ष पूरा केलक अछि। देशक शिक्षा आ सांस्कृतिक गौरव के आगू बढ़ेबा में एहि स्कूल नेटवर्क केर भूमिका बहुत प्रशंसनीय अछि। हम एहिसँ जुड़ल सब गोटाकेँ बहुत बहुत बधाई दैत छी आ ओहि छात्र लोकनिक सेहो विशेष सराहना करैत छी जे अपन वीर सैनिक लेल योगदान देलनि। संगी लोकनि, भारतक सबटा गाम में, सब शहर में किछु ने किछु एहन भऽ रहल अछि जे हमरा प्रेरणा दैत अछि। कतेको बेर एहि प्रयास सभक बेसी चर्चा नहि होइत अछि, मुदा जखन हम एकरा जनैत छी तऽ ई विश्वास आर मजगूत होइत अछि जे देश अपन लोकक शक्ति सँ आगू बढ़ि रहल अछि। हमर अहाँ सबसँ आग्रह अछि, अपना लग पास एहने प्रयास सबकेँ अवश्य देखू। जे लोक समाज लेल नीक काज कऽ रहल छथि हुनका चिन्हू, हुनक सराहना करू, हुनकासँ सीखू आ भऽ सकय तऽ अपनहु कोनो नीक काजसँ जुड़ू। अगिला मास मोनक बातमे किछु आओर प्रेरक कथा सभक सङ्ग फेर अपने लोकनिसँ जुड़ब। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, इस कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण आप सुन सकेंगे हमारे केंद्र से आज रात 8 बजे।

0: सखी बहिन
1: नमस्कार। कार्यक्रम सखी बहनक संग हम छी माला झा। अपने समस्त गोटे के आधा घंटा के एहि कार्यक्रम में स्वागत अछि, जतो समसामयिक चर्चा के संग किछ जानकारी के करब गप, स्वास्थ्य रक्षा सुनने लगबाक किछ टिप्स, ताई मध्य आजुक एकटा कन्याक मोनक किछ गप, गीत संगीत आ भानस भातक गप सेहो। एतेक गप जेना एकटा छोट छीन पत्रिका हुए, ते अपने सब गोटे जुड़ल रही हमर संग। अपन सभक काज छोट आ पैघ सब तरहक उत्तरदायित्व वाला होइत अछि। कतबो काज करैत छी मुदा अपन सभक मुस्की आ हंसनाई सतत चलित रहैत अछि। यह तो अपन सभक विशिष्ट गुण अछि। विशेष कऽ मिथिलांचलक स्त्रीगण के ई गुण रहिते छनि। जो कियो पाहुन आबि गेला त मुस्कीक संग स्वागत प्राचीन काले सँ अछि। कहि सकै छी एहिठामक माटि पानि मे मुखक मुस्की आ हँसी रचल बसल अछि। अभिवादन काल एकमात्र मुस्की अपन परिचय करा दैत अछि। सखी बहिन जो कखनो काल आगा बढ़ि के मुस्की दऽ दी त सामने वाला सेहो मुस्का देत। हंसी खुशी जतेक बाँटब उतबे बढ़त। कनी काल बिसरि जाय जे आइ कतेक काज कऽ लेलहुँ। कनी पानि पिबली आ मुस्कीक संग केकरोसँ गप कऽ ली। बुझल अछि सखी बहिन, आइ राष्ट्रीय मुस्कान दिवस के रूप में मनाओल जा रहल अछि।

स्वस्थ मुस्कान मे बड़ शक्ति होइत अछि। पहिने स्त्रीगण खुजि के नहि हँसैत छली, मात्र मुस्की दैत छली, मुदा मुस्की में ततेक शक्ति आ आनंद भेटैत छल जे संपूर्ण परिवार के समेट के राखि देबाक क्षमता रखैत छली। जतेक बेसी मुख पर मुस्की रहत तनाव सेहो कम होयत, आ जखने तनाव कम रहत बहुतो रोग व्याधि सँ बचब, रोग प्रतिरोधक क्षमता सेहो बढ़त, आनंदित रहब आ तखने गीत संगीत सुनय में मोन लागत।

सुन रहल छलहुँ गीत। वास्तवमे गीत संगीतसँ जतेक आनन्द भेटैत अछि ओतबे काज करबाक क्षमता बढ़ैत अछि, किछु विश्राम सेहो भऽ जाइत अछि। मोन जखन प्रसन्न रहत तऽ गर्भस्थ शिशु सेहो स्वस्थ आ ऊर्जावान बनत। बच्चा सबके सेहो नेनपनेसँ एहन आदतके विकास करी जाहिसँ ओ सकारात्मक दृष्टिकोण राखऽ वाला बनैत, मोनमे नकारात्मक विचार नहि आबनि। विद्यालय परीक्षा हुए वा कोनो प्रतियोगी परीक्षा, नंबर कम एनाय के माने अहाँ कमजोर थोड़े न छी। बच्चा के बुझाबी जे कोनो परीक्षा जीवन से बेसी पैघ नहीं भ सकैत अछि। जान अछि त जहान

अछि। पहिने जीवन रक्षा लेल सोची, फेर और परीक्षा जे लक्ष्य बनाबऽ चाहत, ओहिमे हम सब साधक बनी, हुनक सहयोग करी, सतत परिश्रम करित रहब त निश्चय सफल हेबे करब। बच्चाक मुख पर मुस्की बनल रहे, एहि लेल किछु किछु प्रयास सदिखन करित रही। बच्चा सने समय दी, बैसी हुनका लग, किछु खेल खेलाली, आ खेल खेल में त अपने सब बड्ड चीज सिखा सकै छी। आइ काल्हि त विद्यालय सब में सेहो खेला के हंसा के पढ़ाओल जाइत अछि, सिखाओल जाइत अछि। तब अपनो लोकनि सुनै छी खेल खेल में मनोरंजन लेल एक गीत।

जँ एहना धियापुता के नैनपनै सँ खेल खेल में सिखायब त हुनक नैतिक मूल्य के विकास हेतन। की नीक आ की अधला तेकर ज्ञान हेतन। समाजक एकटा सभ्य नागरिक बनि सकता जेकरा अपन उत्तरदायित्व ज्ञान रहत आ सामाजिक अपराध सेहो ऐसे कम हैत। युवा लोकन में नशा करबाक प्रवृत्ति नहीं जन्मत। युवा की किशोर वर्गक बच्चा सेहो नशा वाला कतेक चीज खाए में व्यवहार करे छथि। जो नेनपने से उचित संस्कार नैतिक मूल्यक ज्ञान हम सब करे बन त निश्चय देश समाजक ई रोग से सब बच सकत। आई विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाओल जा रहल अछि जेकर उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार आ नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव दिस ध्यान आकर्षित केनाई अछि। संग संग सबके संकल्प लेबाक बेर अछि जे समाज सँ परिवार सँ एहि तरहक ग्रसित लोक के आदत सँ बचाओल जा सके जाहि मे सभक सहयोग के काज अछि। जा धरि किशोरावस्था सँ धियापुता अपन संगत व्यवहार में समावेश बनेनाई नहि सीखता ता धरि ऐसे कोना बचब। तैं अपन सभक कर्तव्य अछि जे यथासंभव एहि चुनौती के

0: स्वीकार को बच्चा सबके नैतिक मूल्यक विकास करावी। हुनक संगी साथी से गपशप करित रही। विद्यालयक शिक्षक, अभिभावक आ समाज सभक योगदान सो बच्चा के विकास हैत। बच्चा सबके एहन एहन खिस्सा पिहानी गई जैसे पाई रुपया के महत्व बुझेत, शिक्षाक महत्व बुझेत, पर्यावरण की रक्षा करेत, माइट पाइन सो देश सो प्रेम करेत। सखी बहन, अब कार्यक्रम में आगा सुनब आजुक एकटा कन्याक गप जे कार्यक्रमक आकर्षण एच।
1: नमस्कार, हम भारती कुमारी, हम सब सखी बहन के नमस्कार करैत छी। हम संपत्ति लक्ष्मी सागर में रहै छी। एकटा गप सत्य थिक जे बच्चा त बच्चा होइत अछि। बच्चा के विकास एकटा सतत प्रक्रिया थिक। गर्भाधान से लऽ कऽ मृत्यु पर्यंत धरि सब प्राणी के जीवन अछि। ओ अपन कर्म आ परिवेशक अनुरूप जीवन यापन करैत छथि। ओना तऽ शारीरिक विकास निरंतर होइत अछि, मुदा एक सीमा के बाद ओ रुकि सेहो जाइत अछि। शारीरिक क्रिया में निरंतर विकास होइत रहैत अछि। एहि क्रिया के अंतर्गत मानसिक, भाषाक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास अबैत अछि। एकर विकास विभिन्न आयु स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकारक होइत अछि। यह आयु स्तर मानव विकासक अवस्था कहवैत अछि। भारतक मनीषी लोकन मानवक विकासक अवस्था 7 बतेने छथि, जाहि मे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था आ वृद्धावस्था होइत अछि। जन्म सँ 6 धरि जे अवस्था होइत अछि से शैशवावस्था कहवैत अछि। एहि मे जन्म सँ 3 धरि बच्चा मे शारीरिक आ मानसिक विकास बड़ तेज गति सँ होइत अछि। बच्चा लोकनि मे नीक आदतक विकास करब ओकर भविष्यक लेल बड़ महत्वपूर्ण होइत अछि। एतय किछु तरीका हम बतबैत छी, जाहि के माध्यम सँ बच्चा मे नीक आदतक विकास कयल जा सकैत अछि। जाहि मे सबसँ पहिने हम कहब जे बच्चा हमरा अहाँ के देखि कऽ सीखैत अछि। एहि लेल नीक आदतक पालन हमरा लोकनि के करबाक चाही आ बच्चा के समक्ष प्रस्तुत करबाक चाही। दोसर हमर विचार अछि जे बच्चा मे नियमितता बनल रहबाक चाही। बच्चा के लगातार रूप सँ नीक आदतक पालन करय के लेल हम सब हुनका प्रोत्साहित जरूर करी। तेसर विचार अछि जे बच्चा लोकनि के नीक आदतक महत्व के लेल सेहो हुनका बुझाबी आ हमरा लोकनि के चर्चा अवश्य करबाक चाही। ओना तऽ सबटा गप महत्वपूर्ण अवश्य अछि, मुदा जँ समय के दिस ध्यान नहि देल जाय तऽ सबटा बेकार भऽ सकैत अछि। एहि लेल बच्चा मे नीक आदतक विकास करबा लेल उचित समय पर हम सब प्रयास शुरू करी। बच्चा लोकनि मे नीक आदतक विकास होबय मे समय लगैत अछि। एहि लेल हमरा सबके धैर्य सेहो राखय पड़त। बच्चा सबके छोट मोट जवाबदेही सेहो देबाक चाही, जाहि सँ हुनका नीक आदतक विकास करबा मे मददगार साबित हेतनि। संगहि संग हुनक प्रशंसा सेहो हेबाक चाही आ प्रेरित सेहो करबाक चाही।
0: जँ अपनो सब लग कोनो नव जनतब हुए, किछु विचार सुझाव हुए, खिस्सा पिहानी वा कविता लिखै छी, कोनो व्यंजन वा किछु और रुचि कौशल, तऽ अवश्य आकाशवाणी दरभंगा के एहि कार्यक्रम धरि पहुँचाबी, साझा करी। एहि लेल पता लिख लेल जाओ, कार्यक्रम सखी बहिन द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड अछि 8460004। सखी बहिन, अब स्वास्थ्य रक्षा के किछ गप कऽ ली। अपने सब तक काज बात में कहियो काल ततेक व्यस्त भऽ जाइ छी जे खेनाई जलखे बेरहट की करब, कखनो एक बेर खा लै छी, मुदा एना में स्वस्थ कोना रहब। कतेक गोटे कहती डाइटिंग करै छी, कखनो के धियापुता लेल फास्ट फूड मंगा लै छी तब व्याख्यानाय मानि लै छी, एहन दिनचर्या उचित किन्नो नहि भऽ सकै।

0: छोट पैघ अराँची, दालचीनी दऽ के, काटल टमाटर दऽ के भुजली। आब ओहिमे सबटा मसाला सब दऽ के लारैत रही। रान्ह कयल इरहर के बाँचल पानि झोर लेल दऽ दी। आवश्यकता अनुसार झोर मे और पानि मिला सकै छी। अब अंदाज से ओहिमे नून दऽ दी आ बड़का दी। बरे गेलाक बाद इरहर के टुकड़ी खसा दी आ 3-4 मिनट के बाद आँच से उतारि ली। आब जीर हींग दऽ के छौंक दी, धन्नी पात काटि के मिला दी। गरम गरम भात आ इरहर खायब त हाथ खाइते रही। अपन मिथिलाक ई विशेष व्यंजन मानल जाइत अछि। सखी बहन केहन लागल सेहो लिखब वा मेल करब akashvani@gmail.com पर। सखी बहन आब एक कार्यक्रम से अपने लोकनि से आज्ञा चाहे छी। अगला सप्ताह नीतू सखी रहती अपने लोकनिक संग। ता धरि आज्ञा देल जाओ। नमस्कार।
1: सखी बहिन।

ये था बहनों को संबोधित कार्यक्रम सखी बहिन। इस समय आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। अगला कार्यक्रम मैथिली नाटक बस कुछ ही पलों में।

0: आ रे निनिया आ रे आ रे निनिया नहीं हो नहीं नहीं कानू सुगा हमर नहीं कानू बुआ आ रे निनिया आ रे निनिया
1: बुझनी छाले
0: के काकी आबत घरे में छी
1: अगे की भले ये बुआ के भरी रात कनते छो मन तो ठीक छै ना
0: और की हेते काकी नेना के की कोनो शौक से हंता होइ छे भूख लागल त कानल पेट भर गेल त सुइत रहल
1: मर भूख लागल छै त दूध पिया दई ऐ में कानवा कोन बात
0: कत्तो स दूध पियबियौ काकी आप त सोनी तो नहीं अछि देह में दूध कत्तो स अतेक काकी आई तेसर साँझ उपास ले छी परसु यह जे अलुआ देलन सह खेने छी
1: से त ठीक है बिन खेने दूध कत्तो से हेतो मुदा तू तो बकरी दूध दैत रही ना
0: हाँ गरीबक जिंदगी में दुखक कोनो और छोड़ छै काकी ओहो बकरी भुटकुन बाबू खोलवा लेलन
1: कखन तू नहीं देखल ही
0: कल साँझ में मखना तमसाइत आयल आ बकरी खोल कर ड्योढ़ी पर लग गेल
1: आ तू रोकल ही ना
0: हम की रोकती है काकी ओ उनटे गाय शराब दै छल जे तोहर घर वाला ततेक ने उधारी खा के मरि गेल छौ जे पूरा घर घराड़ी बेचियो का सुई तक नहीं दे सकबहुन
1: मुदा बकरी से उनका कौन बेगरता भला
0: और तो कोनो नहीं हाँ हुनको नैनाक पेट खा

0: खराब रहै छन। कोनो ठाम सुनलखिन जे बकरीक दूध पियौला सँ पेट ठीक रहै छै। बस बस खोला लेलनि हमर बकरी।
1: ओह हे भगवान, ई की भऽ रहल छैक? अब तऽ पाई वाला सब गरीबहाके काँचे चिबावत चाहै छै। सत्य आ भगवान तगवान धर्म पाप सब झूठ भऽ गेलै।
0: काकी आब हम की करियौ? पछिला 4 मासमे तऽ घरक वस्तु जात उखड़ि ढेकी बर्तन बासन जे जहाँ छलै बेच कऽ जीव लेलिए। मुदा मुदा काकी आब की करियौ? आब की करियौ काकी?
1: की हेतु? अरे हमरा लोकनी जीवन तो बस पोखरि खत्ता उपज कर माछ काकुर पकड़वाक अलावा ककरो खेत पथार में बोइन करब बस।
0: मुदा मुदा हमरा तने कियो जौन में

0: आप की करियो, आप की करियो काकी।
1: दूर बताए, इतना कानला सब की है तो। अरे हमरा लोकनी जीवन तो बस पोखर खत्ता उपज का माछ काकुर पकड़वा अलावा ककरो खेत पथार में बोइन कर बस।
0: मुदा मुदा हमरा तने क्यों जौन में राखत चाहे थे आने अंगने कमनिहार में काकी कहत जे ई नैना ला कर तो की मजूरी करवे आ राड़ मसो मात के अंगना काज द के भोरे भोर दर्शन करत
1: की अंत संत ढाले जका बाजे छ जो भूत कुने बाबू जोड़ी पर कोनो ने कोनो काज देवे करथो
0: काकी आई बच्चा
1: हमरे लग रह दे हम बकरी चराबा जाब तब नेने जेबे
0: जे हिनकर विचार यह टा त हमरो समाजक हिस्सा बुझे छथि नहीं त सभक लेल बोझे छिए काकी बोझे छिए मलकाइन मलकाइन
2: के छी सामने क्या अपने आवे छे
0: हम छी बुचनी
2: से त बुझा लियो मुदा ई भोरे भोर पूजा पाठक पहर में कोन बेगरता भ गेल हुआ
0: मलकाइन आई दू दिन से उपास ले छी
2: त हम की करियो
0: हमर माय बाप त यह लोकन छथि ने जौं कोनो काज धंधा नहीं देथिन त अन्न बिनु मर जा मलकाइन
2: चल चल बात बना त क्यों तोरा से सीखे भरि गाम गर्द मचौने छथि जे हमरा घर वाला के मालिक के मरवा देले
0: जे सपत खुआ लेथ मलकाइन जानत कपलेश्वर बाबा जो हम किछुओ बाजल होई हे लोग फुसिए हिनकर कान भरे छन हम किछु नहीं बजलों हैं
2: बेस बुझलियो चल हट बाट पर से बाड़ी जाए फूल तोड़ ले पूजा के बेर बीतल जाए दे
0: नहीं मलका नहीं कोनो जो गाड़ कहिए देथुन हे हम एकदम असहाय भ गेल छी
2: मर त हम की करियो घर आंगन कुटिया पिसिया तोरा से त करीबे नहीं करबो के भर दिन राण के आंगन में राखे आ अखन कोनो कटनी रोपनी के त समय छै नहीं त कोन काज दियो
3: मलकाइन आप जो इतने खखनिया करे है तो बोलू बरम बाबा के पाछू में जे कोला मरुआ है से है कमौनी करा दियो ने
2: की गए बुचनी है तो मरुआ कमाल की ने
0: मलकाइन रोपब कमाब आ काटब अही सब लेल त हमर सबक जन्म भेल अछि फिर हम त एखन बेगरताक मारल छी मलकैन ओहुना रौदो में ठाड़ हुआ परा तरहबैक मलकैन
2: बस बस बस गई तोरा सबसे गप जतेक ली पैग फैग भेंट जात मुदा काजक बेर में टग हानो लगबे अहे सुन
0: की
2: जाय छे कमाबा त जो मुदा हमरा एखन लोक नै अछि जे जल खै देतो अपन कोनो जगाड़ कर लिए हम सीधा पठा दू
0: मलकैन हे मुदा मुदा हमरा त आई तीन साँझ भ गेलैय
2: हे आप बेसी मात नहीं भूखा काज करवा के छौ त कर गो आने त चल हट हमर जान छोड़ बुझले
0: जाय छी मलकैन

0: एखने त एता छाहर रहे त सुता का कमौनी कर लगलिए, मुदा ई एना अई पहर में एतो की करे छे?
1: की कहियो, छोटका छागर पड़ा गेल रहे पलटू बाबू बाड़ी दिस, तई बेंगवा के कहलिए जे जो बउआ के बुचनी लग दो, हम छागर हेरने अब छी।
0: भेटलन छागर?
1: हाँ भेटल, तो मुदा दसटा गारि फझैत सुना।
0: आइ तो बुझाइ छै जे सूरज भगवान पूरा धरती के जरा कर खकसियाह कर देथिन।
1: गई हमरा तोरा सन जीवक नाम मनुख नै छै, मनुख तो बड़का धनी भुटकुन बाबू सन लोक छै।
0: हाँ काकी, कियाक नहीं एखनो अई झरको में बर्फ आ मिश्रिक शरबत पीबैत हेता, बिजुरीक पंखा तौर में बैस कर ताश फेटैत हेता। काकी वह सब मनुख छथि, हम सब त कीड़ी मकोड़ी छी काकी, कीड़ी मकोड़ी।
1: छोड़े सब में मोन उजरवाला से दुखेता होइत छे, चल उठ कने भाल सरीतर जिरा ले, मुँह कारी झामर भ गेल छो।
0: नहीं काकी, ई जात बउआ एखन सूतल छे, अहिना नेने जात। हमरा ता एखन आधो खेत नहीं भेलैए,
1: मर तो साँझ नहीं पूरा हेतो तो एतै पड़ल रह।
0: की करबै काकी, कहुना क त पूरा करै के छै, ओहो बिन पनपियाई गाज गछलिए, नै त ऐ गरीब अभागल मुसमात के जौन में के रहितै काकी।
1: बेस त हम जाइत छी, आहे सवेरे अभी आइ हाट छै, हेतै त हमहू जेबै।
0: हाँ हाँ ई जात, हमहू साँझ में बोइन लऽ कऽ सोझे हिनके आंगन एवन। हे रौद बड़ तेज छै, आँचर सँ झाँपि लेथुन बउआ के।

0: बुचनी बुचनी छ गे गन्ना नाके ना आइल पर सुता क कत चल गेली
1: के कहा कि आबत हे एतै छी उत्तर बढ़िया आड़ी के पाछू में आबत
0: गई तोरा एको रति सुरता नहीं रहे छो कहता कोना के नैना के आई आयर पर सुता देने छही
1: की करियो काकी

0: मलकान मलकान
1: के छी, अरे के छी, क्या एना गर्द मचौने छे?
0: हम छी मलकान बुचनी।
1: हाँ हाँ, तो आर दोसर के भ सकैत अछि? गई तोहर त टाहिए तेहन छौ जे दूरे से लोक के बुझ पड़ै छे।
0: मलकान मरुआ कमाल भ गेले
1: त कोन बड़का उपकार क देले है? अरे बोइन त लेबे करबे कि नै लेबे? कोनो मंगनी त नहिए केने छे?
0: हाँ, ताहि लेल त आयल रही मलकान। असल में असगरुआ छिए ने, कूटब पीसब रान्हब सबटा सबटा अपने करे पड़े छे मलकान।
1: त तोहर की विचार, हम ही पीस पका दियो कि?
0: नहीं नहीं, से हम कहाँ कहे छे मलकान। हे असल में बेर बहुत भेल जाए छे, से
1: बेस तक काल लो जइहे। हट बाट पर से धात्री गास्तर सांझ देखेबाक अछि। साँझ बीत गेला पर फूल तोरा मुश्किल भ जाए।
0: नहीं नहीं मलकान, हे एखने किछु बोइन दऽ दे तू, तीन साँस सँ भूखल छी, कहुना कर ठाढ़ भेल होइत अछि। मलकान गाम पर बच्चा से भूखे आक्रोश करैत हैत।
1: मर्दूर हो गए, हम तोरा बेगर ते आन्हर भ जाओ। काल भोरे मालिक देखथुन जे केहन काज भेल छे। भोर में मखना रहते तो भंडार खोल कर बोइन तोल देतो।
0: नहीं नहीं मलकान, नहीं एना नहीं करत मलकान। हे कोनो ब्योत कह को देत, हम पैर पकड़े छे, हमरा पर दया करत मलकान।
1: ओह बड़ मुश्किल लगे है,

0: महीना भरल साँच ई महाजनी चुकवाएले हैं, कहे छियो से नहीं बुझे छही।
1: हम की नहीं बुझे छिये मलकैन।
0: आर की गए अखन आ बोइन के तोल तो साँझक पार में लोग घरक लक्ष्मी के धूप दीप देखवे देछ, आ हम हिनका लेल तराजू डंडी पकड़ी नहीं। एह बड्ड बुद्धि आयल छथिन।
1: मुदा मुदा हम तो एही बोइनक आस में भर दिन रौद में खटल छी मलकैन, जो आबो अन्न नहीं भेटत तो हम कोना रात खेबै आ कोना फिर प्रात में कोनो काज करबै मलकैन।
0: ओ तो तो दूधुर मरुआ कमेले हैं तो आब रात कोना खेबै, भोर कतो रहबे आ दिन में की करबे, सबक ठिकेदारी हम लेने छियो गए
1: मलकैन। हे हमरा पर कृपा करत मलकैन, जे कहबाक हम कहत, मुदा मुदा कोनो व्यवस्था करत कॉल जोड़े छेन मलकैन।
0: हे संजोग से हमरा खुट में ई अठन्नी एच लो ले, जो किछु बेसाही का खाली हैं आहे फिर भोरे भोर जुम जई हैं।
1: आठे आना मलकैन, ई आठ आना में की हेते
0: लेबे त ले, आ नहीं तो हमरा बकतूत करबाक पलखेत नहीं अच्छ बुझले
1: लावत।

0: की भाव दै छ हक?
1: 4 रुपये से कतेक लेबे? 1 मोन, 2 मोन कि पूरा पट्टा?
0: नहीं नहीं, ओते कत्तो से लेबे? आधा से लेतो, मुदा संग में 8 आना एच हे भोरे सबटा चुकता क देब।
1: हे हम साझुक पहर उधारी नहीं देत छिए, आ फिर तोरा लोग काज भरोसे उधारी देतौ त के सधे तू तोहर उधारी?
0: हे भगवान, केहन छे ई दुनिया? भर दिन हम खटलौ त सुपथक बोइन नहीं भेटल, किएक त साँझ भ गेल रहेक, आ अब तो उधार नहीं देबा?
1: जो हट हट, साँझुक पहर मास नहीं भूको, आई कल तुहर सभक मास चढ़ल रही छो, सबटा कानून हिनके बुझल छें।
0: जे तुहर इच्छा, जुइन दे उधारी। हे ई अलुआ की भाव छे? वह दो दे।
1: 8 आना में कतेक है तो? हाँ, आधा सेर। पाई निकाल।
0: दै छिय हो, कने बांध देबा कि नहीं? हाँ ले।
1: अरे रे रे, ई की थम थम गए? तेहन लात न मारबो जे मरिए जाबे, कि हमरे से छठू पनी?
0: हाँ हाँ हाँ, एना क्या करे छ? आचर क्या पकड़े छ तू? हा
1: गे तोरासन खिलार मौगी के आचर के कहे, सौसे गत्र उघार को दाग दितियो, राख सबटा अलुआ।
0: आही रे बा, हो एना क्या करे छ? हो आखिर हम कह न जे की के लिया, आ की भेल हो?
1: कोना ओरिया क पूछिए जे की भेल? गे होशियारी करी है कतु अंत, जगदीश साहू लगने चलहा आ घसल अठन्नी द क धोखा देव चल रहे हैं, राखे छ अलुआ कि नहीं? चल उठा अपन अठन्नी।
0: हे मुदा ई अठन्नी त हमरा भुटकुन बाबूक आंगन में बोइन भेटल है।
1: हम कहै छियौ ने, उठेबे अपन अठन्नी कि नहीं, कि बजबियौ चौकीदार के?
0: हो देव देव, हो देव, अब हम की करू? हा महादेव।

0: ملكة عين، ياي ملكة عين، ملكة عين.
1: كيتي كيتي

0: काटलक ठार एम्हरा।
1: हम छी बुचनी, मलकायन से काज अछि।
0: मलकायन से कोन काज छौ? ओ पूजा कर रहल छथि, कह हमरा की चाहियो।
2: अरे काम कोन होतै, ई 10 खेप आयल होइत बोलू। प्रेत जका धेने छन मलकायन, पूजा पाठ के बेर कुबेर कुछो बुझबे नहीं करे है।
1: हम की करियो मालिक, ओ अठन्नी कतौ चलते नहीं छै। बनिया कहै छै जे घोसल छै टलहा, उनटे हमरा गाड़ी फज्जत केलक अछि।
0: कोन अठन्नी?
1: एखने कने काल पहिने मलकायन बोइन में देने रहे थे, कतेको लोग के देख दिलिए एक मालिक, सब कहे छे जे टलहा छे।
0: ये सुने छी, कने अमहराओ तो दलान पर।
3: की कहे छी?
0: ई की कहत अछि जे अहाँ एकरा घसलहा अठन्नी देलिए गछ?
3: गई बुचनी, हमरा नहीं बुझल छल जे तो एहन खेलाउल मौगी छै गई। कहू तो भला, हम कथी लेल टलहा अठन्नी देबै? से ई तो बड़ सपरति भेल जाइत अछि।
1: सत्य कहै छिअनि मलकैन, ई विश्वास करत मलकैन, ई अठन्नी हिनके देलहा छिअनि। भूख प्यास सब बाजल नहीं होइत अछि, दोसर अठन्नी देत मलकैन, हम गाम पर जाएब।
0: हे भगवान, कतौ से एहन एहन छुछुनेर पहुँच जाइत अछि।
1: अब हमरा बुते बाजल पर्यंत नहीं होइया मालिक, हमरा पर कृपा करियो मालिक।

0: आब हमरा बुते बाजल पर्यंत नहीं होइया मालिक, हमरा पर कृपा करियो मालिक।
1: चुप रहलो छी, ई दू पैग बोनिहारिन के जो हम निकति पर तोल के बोइन देव लागी तखन त भ गेल हमर कल्याण। चल भागे त से जल्दी, न त एकके लात मारबो टन द रहि जमे। जुग जुग जीवत दरोगा जी, कीड़ो मखना।
2: हाँ त आर की, एकरा सन सन केते के खून क के पचा देलियै आ ढेकारो नहीं लेलियै। ई चलल है कानून पढ़ावे।
0: मुदा मुदा हमर अपराध की है, हमर अपराध की?
2: गए तो भगवे एठान सा की दियो दूला।
0: किया कि नहीं देव दूला? सत्य अनुचितो पैघे के शोभा दे छक ने।
2: हे तो ले।

0: আমার বাবা, বাবাকে কি বলে কাকি?
1: আহিরে মা, ই কি ভাগলে বেহস ভাগলে হতে?
2: उठा दुनू के अन्हारे में जल्दी फेंका पोखरी के बाहर पर। आगे
3: ऐ बुढ़िया के सेहो कंठ मचोड़ दे।
1: जी हां हां, हमरो कंठ मोइक दे मखना, मखना हमरो कंठ मोइक दे। मुदा हमर कंठ मकवा से पहिने दुनू के उठा के फेंकवा से पहिने पुछली तरहती पर भरल अठन्नी के उठा कऽ दादहुन मालिक के। अहाँ कहुन जे अइ अठन्नी के कोनो तेहन ठाम फेंक आबैत जे फेर ककरो अदृष्ट मे नहि पड़े, नहि पड़े, फेर कोनो बुचनी बुचनीक नैनाक प्राण नहि जाय। मखना उठा ले, उठा ले, असला अठन्नी उठा ले, मखना उठा ले।

प्रस्तुत करता थे सीताराम शर्मा। प्रतिभागी कलाकार बुचनी के रूप में थी रेणु कुमारी, काकी लक्ष्मी देवी, मखना नंदलाल, तारा चरण झा भुटकुन बाबू और मल्लिकायन के रूप में थी मीरा झा। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने ही वाला है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट

0: ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक चार मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

कार्यक्रम विवरण, इसके तहत श्रोताओं हम आप तक जानकारी दे रहे हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। 1:10 पर अब से थोड़ी ही देर बाद में आप सुनेंगे समवेत स्वर में देशभक्ति गीत। 1:15 से सुनिएगा पत्रों पर आधारित फार्मेसी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

2:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से सुनिएगा रोजगार सूचना। और दोपहर समाचार दिन में 2:15 पर हमारे दिल्ली केंद्र से होगा। फिल्म संगीत दिन के 2:30 और अपराह्न 3:00 हम आप तक पहुंचाएंगे कुछ विद्यापति गीत। ये थे पहली सभा के शेष कार्यक्रम। एक नज़र हम डालते हैं अपनी दूसरी सभा के ऊपर। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत 5:00। आरंभ में हम आप तक पहुंचाएंगे चंद गजलें। मैथिली संवाद 6:25 पर, गाम घर 6:30 और 7:00 आप सुनेंगे खेती गृहस्थी। श्रोताओं याद रखें रात्रि 8:00 आप सुनिएगा मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण। समय याद रखें रात्रि 8:00।

समाचार संध्या का समय है, रात्रि 8:45 पर, और न्यूज एट 9 हम आप तक पहुंचाएंगे रात 9 बजे। पर आप सुनिएगा उर्दू में खबरें, और रात 9:30 दिल्ली से कार्यक्रम सुनिएगा अनुगुंज। रवि बासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, ये कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाएंगे रात 10 बजे अपने दिल्ली केंद्र से रिले करके। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। आकाशवाणी दरभंगा से अगला कार्यक्रम देशभक्ति गीत।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

मई माह के अंतिम रविवार के साथ हाजिर हूँ आपकी सेवा में आपके द्वारा भेजे गए ढेर सारे खतों के साथ। स्वीकार कीजिए हमारा यानी कि रंजू का नमस्कार कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। जी हाँ श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? हम तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित भी होंगे, और भला हो भी क्यों नहीं। और अपने भेजे गए फरमाइश किए गए गीतों के इंतज़ार में बैठे होंगे। तो ये इंतज़ार तो अब ख़त्म, और कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले श्रोताओं आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ। और कहना यह है, जो देखिए मौसम का जो ये अनुरूप है, पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि, जैसा कि हम

सभी जानते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, मौसम और सामान्य रूप से बदलते जा रहा है। और अभी देखिए ना, कभी बहुत तेज़ बारिश होने लगती है तो कभी बहुत गर्मी का एहसास होने लगता है। ये सब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही तो है। कहीं आंधी तूफान आ जाती है तो कहीं बारिश तेज़ हो रही है तो कहीं बर्फ़ गिर रहा है, कहीं ग्लेशियर पिघल रहा है। और अभी जो हमारे यहाँ है, जो तेज़ गर्मी का एहसास, उसके साथ तुरंत आंधी तूफान का आना, ये सब हमें क्या सिम्टम देता है? जो समय के साथ हमें चलना चाहिए और मौसम के अनुरूप ढलना चाहिए। इस तेज़ गर्मी में खाली पेट कभी ना निकलें, पानी हमेशा अपने साथ रखें, घर पर सत्तू गन्ने का जूस या आम पन्ना का भी सेवन करें, और साथ ही इस समय में मिर्च मसाले वाले भोजन से भी परहेज करें। और वैसा तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन एक बार याद फिर से दिला रहे हैं अपने श्रोताओं को, जो जानते हुए भी हम लोग परहेज करते हैं, समझते हुए भी करना नहीं चाहते, जिससे क्या होता है तो परेशानी का सबब उठाना पड़ता है। अभी हम सूती कपड़े, ढीले कपड़े और हल्के रंग के पहने तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून महसूस होता है। धूप में निकलते हैं, एक तो अनावश्यक निकले ही नहीं, अगर निकलते हैं तो टोपी, गमछा या छतरी का उपयोग कर लें। ज़्यादातर जगह तो अब देख रहे हैं, जो हर जगह हम लोग एसी यूज कर रहे हैं, एसी लगाते जा रहे हैं और उसमें रहना भी पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बहुत आनंद देता है जितना, उतना नुकसानदेह भी है। तो उसे निकलने के बाद तुरंत धूप में ना निकलें। इस तरह यदि हम अपने आप का बचाव करते हैं तो निश्चित है जो गर्मी से हमें राहत मिल सकती है। और बड़े बुज़ुर्ग और बच्चों का ख्याल खास करके इस समय में ज़्यादा हमें रखना चाहिए, और यदि रखते हैं तो परेशानी से बचा जा सकता है। तो अब देर ना करते हुए करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। और ये रहा कुछ खत हैं ऐसे जो हमारे श्रोता ने लिखा है, जो आप अपने पसंद का कोई भी गीत हमें सुना दें। तो चर्चा करते हुए अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है खानदान।

0: अपनी फरमाइश किए गए गीतों में आपने लिखा था, पत्रों में आपने लिखा था कि अपने फरमाइश किए गए कोई भी गीत आप सुना दें, तो मैंने तो पूरा किया। अब पत्र लिखने की बारी आपकी है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप सबों द्वारा भेजे गए खतों पर ही आधारित होता है। तो लिखते रहिए ढेर सारे खत और सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा, और बने रहिए हमारे साथ अभी से दिन के 2 बजे तक। और जिन्होंने खत लिखा था अपने पसंद सुनने के लिए, जो आप सुनाइए, तो ये थे सुंदरखंड राज माता नगर बुल्ढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवारे, ज्योति नरवारे, आकांक्षा नरवारे, आकाश कुमार, प्रदीप अंचल वाडेकर जी और आपके सारे दोस्त। कुशेश्वर स्थान सलमगढ़ से आप थे मोहम्मद ईशा, सबीना नाज, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद मुस्तफ़ा, नवासी सना आफरीन, नवासी सादिया नूर, शमा प्रवीण, साहिन प्रवीण, नेमत प्रवीण, रौनक और सुनैया फातिमा जी थी। और आप थे कोटबा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय जी। बेरडी से आप थे राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे दी। गोविंदपुर धनबाद से आप थे शराफत हुसैन अंसारी, बेगम रेहाना, परवेज अशरफ और हसन इमाम।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत को संगीत बद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है रखवाला। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर। और इस गीत को सुनने की जो फरमाइश आई है, आप हैं बंदना नगर एयरपोर्ट रोड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से पूजा, बबीता, शोभा, रेखा रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, परी ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक नारायण भाव खर्चे और आपके सारे दोस्त।

बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से आप थे संतोष कुमार, मुखिया रानी अनीता राज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, अमरेंद्र और वंश प्रसाद जी। आप हैं पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया जी। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से आप हैं राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे और गायत्री धंजे जी। खुर्दी रोड मानपुर से आप हैं विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य और नीतू वैद्य जी। और आप हैं अनुपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री के भट्ट, कृष्णा के भट्ट, रुद्रानी के भट्ट, अंजलि के भट्ट और पूरा के भट्ट परिवार के सभी लोग। तो लीजिए, आप सबों के अनुरोध पर पेश है रखवाला फिल्म का ये गीत।

0: हाथ की सफाई। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को। पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांग्स ठाकुर जी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से आप थे द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और पूरा वर्मा परिवार के सभी लोग। नाज मंजिल मैसोल सीतामढ़ी बिहार से आप थे अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, आरिज वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बचू शेख, रुबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा और चीना शेख जी। साथ ही क्वाथ बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर, हुमारा नाज, सुमारा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू और हामजा बाबू। और ये खत आया था भाया भेलवा सर्किल, ग्राम मठिया भोपत, जिला पूर्वी चंपारण बिहार से। हमारे श्रोता थे वसंत कुमार राय, जगदेव राय और पूरा राय परिवार के सभी लोग। इसी गीत को पसंद किया था सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मुरवा, जिला समस्तीपुर बिहार से। भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, नीतू, मोहम्मद फारूक और जयंत कुमार बैरागी जी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा और इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं पत्रों पर आधारित फार्मेसी।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए उठाइए कलम और कागज, लिखिए हमारा पता कार्यक्रम आपके अनुरोध पर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। श्रोताओं, हमें रहता है आपके खतों का बेसब्री से इंतजार, क्योंकि आप तो जानते ही हैं यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप सबों द्वारा भेजे गए खतों पर ही आधारित होता है। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले अनुरोध की तरफ। तो मैं देख रही हूँ ये खत आया है रंगोली लिसनर्स क्लब राजनगर जिला मधुबनी बिहार से। हमारे श्रोता हैं नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, प्रदीप कुमार नायक, लाल बाबू शास्त्री, साथ ही आप हैं भूमिका देवी, कपिलेश्वर प्रसाद और आपके सारे दोस्त, कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं मुकेश बाटिया, नीलम बाटिया, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बाटिया जी। नरहन स्टेट जिला समस्तीपुर बिहार से आप हैं उदयकांत ठाकुर, अमन पराशर, ललन मिश्रा, नूतन भाभी जी और बेबी आराध्या। अगला जो खत हम पढ़ने जा रहे हैं ये है लाल पोखर नाका नंबर 5 जिला दरभंगा बिहार से। आप हैं मोहम्मद कलीम दीवाना, दानिश बाबू, सरफराज बेगम, रोजी प्रवीण, खुशबू प्रवीण, साहिस्ता प्रवीण, डॉली प्रवीण, मेहरा प्रवीण और आयशा प्रवीण जी। श्रोताओं, आपसे अनुरोध है जब भी आप खत लिखा करें तो साफ साफ अक्षरों में लिखा करें, जिससे क्या होगा हमें भी पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी और आपको भी अपना नाम सुनने में अच्छा लगेगा। गांधी चौक रोड पर पंजाब से आप हैं हरदेव मिका, बलबिंदर बिरक, जितेन बिरक और मिका बिरक जी। और अगला अनुरोध है औरंगाबाद से। आप हैं राजेश सांवले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजे देव जी। तो लीजिए, आप सबों की फरमाइश पर पेश है कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म आबरू से है, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से हाजिर हैं श्रोताओं आपके द्वारा भेजे गए ढेर सारे अनुरोध के साथ आपकी सेवा में। आप इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं आपके अनुरोध पर। अगला खत है दौलतबाग मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। आप हैं जाफर हुसैन, नैना बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। हनुमानगढ़ राजस्थान से आप हैं महाकांत सिंह और सिंह परिवार के सभी लोग। पुणे से पंकज बरोद, आर्या प्रियंका, जरूर बरोद, बाबा साहब बरोद, मीनाक्षी चरणे और रजनी कानेरे जी। बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 जिला दरभंगा बिहार से आप हैं। संतोष कुमार मुखिया, रानी अनीता राज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, अमरेंद्र और वंश प्रसाद जी। बड़सरा नैला से आप हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू जी। ये खत आया है एकता रेडियो श्रोता संघ बड़ी खंजरपुर भागलपुर बिहार से। आप हैं भाई गुलफराज आलम, बेगम शमा आरा, दोस्त जमालुद्दीन, फायजा, फातिमा, यूसुफ और हामजा। पिरपापारा पालचुआ मुंगैली छत्तीसगढ़ से आप हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और बंसिता दिवाकर जी। और आप हैं ब्रह्मपुरा मनिगाछी जिला दरभंगा बिहार से। भाई अच्छीलाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय,

कुमार राय, प्रिंस कुमार राय और आपके सारे दोस्त। तो लीजिए, आप सबों के अनुरोध पर पेश है लव इन टोक्यो फिल्म का ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है और कुछ खत मेरे हाथ में बचे हुए हैं। तो ये है महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पागरिया, पराग पागरिया, प्रदीप पागरिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल जी। लक्षनपुर से आप हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू जी। लाल माता सुदामा नगर अटलाय जिला झालावाड़ राजस्थान से आप हैं हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा सफलता, कपिल मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाय, प्रभुलाल बागरी। और फलजिका पंजाब से आप हैं बिशु खेरा, ट्वेंसी खेरा, आरबी खेरा, जीवन सिंह खेरा और खेरा परिवार के सभी लोग। ग्राम चोलादा से आप हैं संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल जी। तो लीजिए, आप सबों ने सुना चाहा है किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए इस गीत को। फिल्म का नाम है जुदाई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का निर्देशन है। तो लीजिए।

श्रोताओं, घड़ी हमें इशारा कर रही है इस कार्यक्रम से विदा लेने के लिए। तो अगले अंक तक के लिए रंजू को दीजिए इस कार्यक्रम से विदा। तब तक के लिए आप खुश रहेंगे, अपनों के बीच खुशियां बरकरार रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ चाहती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। मन की बात कार्यक्रम की यह 134वीं कड़ी थी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भीषण गर्मी को लेकर इन दिनों अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करना उपयोगी है। उन्होंने कहा कि ये पेय पदार्थ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हैं और इनमें पीढ़ियों का अनुभव समाहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हाड़ में छठी शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता की चर्चा की। इसमें लगभग 800 एथलीटों ने भाग लिया था। श्री मोदी ने गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारा मंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और कार्यक्रम में विशेष तौर पर बिहार का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में भीषण गर्मी से बचाव के लिए बिहार के पारंपरिक पेय सत्तू तथा प्रसिद्ध जरदालु आम का उल्लेख करना राज्य की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उत्पादों और जनजीवन से जुड़े विषयों का उल्लेख राज्यवासियों के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री स्वामीनाथन ने कहा कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, सिवान, सारण, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के कई क्षेत्रों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40

0: से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। अररिया जिले में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर अलग अलग क्षेत्रों से 900 लीटर देसी विदेशी शराब के साथ 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिला में साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। शेखपुरा जिला में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज जिला विविध सेवा प्राधिकार द्वारा न्यायालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सकीर से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के आवाम से अपने ख्यालात शेयर किए। वज़ीर आज़म ने मुल्क के आवाम से शदीद गर्मी के पेश नज़र इन दिनों ज़्यादा एहतियात बरतने और हुकूमत के रहनुमा हिदायत पर अमल करने की अपील की। उन्होंने लोगों को ज़रूरी मकदार में पानी पीने और धूप से बचने के तदाबीर करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमौर, सांबरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का इस्तेमाल मुफीद है। उन्होंने कहा कि ये मशरूबात एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को जाहिर करते हैं और इनमें नस्लों का तजुर्बा शामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क की बेशकीमती विरासत के तहफ़ के लिए कोशा है। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं सदी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से मुंसलिक नायाब तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। वज़ीर आज़म ने झारखंड की राजधानी रांची में मुनक़िद नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन टूर्नामेंट का तज़किरा किया। इसमें तकरीबन 800 एथलीटों ने हिस्सा लिया था। जनाब मोदी ने गुरुवेंद्र वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरेंद्र वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इल्म फलकियात ने मुल्क की हर नस्ल में शौक पैदा की है। उन्होंने कहा कि इन फलकियात मुल्क में तेज़ी से मकबूल हो रहा है। जनाब मोदी ने नौजवानों से इल्म फलकियात क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। वज़ीर आज़म ने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें अहम किरदार अदा किया। जनाब मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन तहफ़ नदी के हयातियाती तनव और बेशकीमती कुदरती विरासत का तहफ़ भी होता है। वज़ीर आज़म ने चेन्नई के पहले हिंदू स्कूल का तस्करा किया जिसने गुज़श्ता साल अपने 50 साल मुकम्मल किए थे। उन्होंने कहा कि इस स्कूल नेटवर्क ने मुल्क के तालीमी और सकाफती वक़ार को बुलंद करने में अहम किरदार अदा किया है। जनाब मोदी ने मुल्क के आवाम से अपील की है कि वह अपने आस पास समाज की बेहतरी के लिए मुसलसल काम कर रहे लोगों को पहचानने और ख़ुद भी अच्छे कामों से जुड़ें। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को सुना और प्रोग्राम में ख़ास तौर से बिहार का जिक्र किए जाने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। जनाब चौधरी ने कहा कि प्रोग्राम में शदीद गर्मी से बचाव के लिए बिहार के रवायती मशरूब सत्तू और मशहूर जरदालू आम का तज़किरा रियासत की ख़ास शनाख्त को कौमी सतह पर ज़ाहिर करना है। जनाब चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म के ज़रिए बिहार की शानदार सकाफती विरासत, मुकामी पैदावार और आम जिंदगी से जुड़े मौजूदात का तज़किरा रियासत के आवाम के लिए फ़ख्र एजाज़ का बायस है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 27वें बहरिया सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। जिम्मेदारी संभालने के बाद एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में बहरिया की जदीदकारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसे आला मियार की जंगी सलाहियत से लैस किया जाएगा। महकमे मौसमियात ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, सीवान, सारण, शेखपुरा, मशरकी चंपारण और मगरबी चंपारण समेत रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में

आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी इम्कान है। अररिया जिले में पुलिस ने छापेमारी मुहिम चलाकर अलग अलग इलाकों से 900 लीटर शराब के साथ 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले में साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी करने का इल्ज़ाम है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर।

अब सुनिए रोजगार सूचना। भारतीय नौसेना भर्ती 2026, कुल पदों की संख्या है 60, आवेदन 29 मई से शुरू है 2026 से, आवेदन की अंतिम तिथि है 18 जून 2026। इच्छुक अभ्यर्थी इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एक और सूचना है, एसएससी सीजीएल संयुक्त स्नातक परीक्षा 2026, पदों की संख्या 12,256, आवेदन 21 मई 2026 से आरंभ करने की तिथि आरंभ है, अंतिम तिथि है 22 जून 2026। उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 32 वर्ष। इच्छुक अभ्यर्थी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा, पदों की संख्या 11,127, आवेदन शुरू होने की तिथि है 15 मई 2026 और अंतिम तिथि 14 जून 2026। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ रोजगार सूचना अब समाप्त हुई।

0: आपको थोड़ी ही देर में सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
2: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांसो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के

0: सागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
1: नेवी, एयरफोर्स,
2: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
1: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

0: होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर समाचार के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं फिल्म संगीत में। शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म दामिनी के इस गीत के साथ।

डर, सलामी, दूल्हा मिल गया। जिन कलाकारों के गाने आप तक हम पहुंचा रहे थे वो थे कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण और श्रेया घोषाल। प्रसारण इस समय आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जा रहा था।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। लीजिए अब सुनिए विद्यापति गीत, पहले समवेत स्वर में।

इसी गीत के साथ ही विद्यापति गीतों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। गायक कलाकार थे गौतम मिश्र और विनय कुमार झा। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो चुके हैं। आज की पहली सभा यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा इसी मीटर पर संध्या 5 आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए
1: मन चाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहते हैं। भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी, दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एम जी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा।
2: नहीं, बल्कि ये तो मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डिजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूं दो हफ्ते की छुट्टी ले लूं। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेंगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाए तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: ओ डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना।
2: प्यारा प्यारा सा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना। छोड़ दीजिए ना।
3: अरे अरे सुनो तो।
2: नहीं सुनती।
3: ओफो, अरे बात तो सुनो
2: बेनी। देखो देखो, तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
3: ओ डेजी, डेजी माय लव।
1: डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
2: ईश्वर की कृपा हुई तो।
1: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
2: क्यों, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
1: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा।

0: मैकेंजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूं। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी,
0: डेजी व्हाट इज दिस, क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की हुई

दिन मैं सिनेमा गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने मैंने एक बच्चे को

0: किया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
2: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
2: मुझे तो ऐसा नहीं लगता,
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
2: तो पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
2: पहले उसे दवा दी जा रही है,
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
2: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में नहीं।
2: तेजी,
0: जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
2: तो क्या करूँ मैं, आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
2: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
2: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
2: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
2: अपने बच्चे से माय फुट।

0: बेरहम हो रहे हो। बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
1: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
1: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
1: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
1: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
1: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं ढो सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूं। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
1: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूं, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
1: जब छोड़ो, वो डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
2: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
1: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्यों जी?
0: जी
2: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
0: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
2: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
1: अरे भाई, वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
2: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा है? ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
0: एक साथ घूमने लगेंगे?
2: हाँ?
0: आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
2: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है?
0: वो
2: सो रहा है।
0: वो तो बहुत बीमार है। दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
1: अरे भाई, बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
2: चलिए एक बार मैं भी देख लू। ओ, लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है।
1: That doesn't matter, डॉक्टर, स्लाइट फीवर ओनली, मैंने दवा दे दी है वैसे।
2: अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरे को जरूरी काम है। चलो डेजी।
1: ओके,
0: अच्छा
1: बाय डॉक्टर, बाय।
0: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
1: जब तक जरूरी होगा।
0: मुझसे अब और नहीं सहा जाता। कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
1: अपने लिए।
0: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
1: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
0: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
1: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
0: आपसे कहा था जरा बच्चे की जांच कर लो।
1: जांच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
0: ये क्यों नहीं कहते कि आप जांच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
1: जैसे तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
0: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
1: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
0: बंद भी करो ये सब। बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
1: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा ना?
0: बेनी को यहां क्यों घसीट लाया?
1: मैं घसीट लाया? ये कहो, बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है। और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
0: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
1: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
0: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
1: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
0: तुम्हें क्या हो गया है?
1: तुम उससे ज्यादा बेनी के इस फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा। ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।
0: मिल गया संतोष।

0: मुझे क्षमा करना बहनी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बहनी। कौन कौन है?
1: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
0: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर, आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
1: कैसी शंका?
0: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
1: ओह डेजी, तुम्हारे सवाल बड़ा विचित्र है।
0: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
1: नहीं।
0: मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
1: लॉरेंस को? नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
0: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
1: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
0: आपकी ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
1: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो क्या हुआ?
0: बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
1: क्या?
0: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
1: क्या?
0: लेकिन वास्तव में बात डॉक्टर, डॉक्टर आप मुझ पर एक कृपा कीजिए। प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
1: मैं?
0: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर।
1: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है। मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। आई एम सॉरी।
0: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
1: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
0: प्लीज डॉक्टर।
1: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
0: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले ये बेनी का प्रेत है।
2: बेनी का प्रेत?
0: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
1: डॉक्टर लॉरेंस?
2: ओ डॉक्टर रामदास,
1: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था, उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।

0: बैठ जाइए।
1: लॉरेंस, आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
0: जी,
1: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा ना ले, आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
2: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
1: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
2: समझा नहीं।
1: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
2: What do you mean, डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
1: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
2: डॉक्टर।
1: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
2: नहीं नहीं, पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
1: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
2: स्टॉप दिस नॉनसेंस, आई से डॉक्टर।
1: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
2: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
1: नहीं, नहीं, नहीं। तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझकर ही किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
2: डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज अ मेयर डेथ। एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
1: नो, इट वाज नॉट अ मेयर डेथ, इट वाज अ क्लियर मर्डर।
2: डॉक्टर, नो, नो डॉक्टर।
1: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं। डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
2: नो नो नो, क्यों डॉक्टर?
1: सच है ना, सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उर्ण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों, बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाँप क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
2: डॉक्टर, डॉक्टर
1: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
2: सच है, सच है डॉक्टर। लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
1: बेचारा बेनी। मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
2: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज यह सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
1: नहीं कहूंगा।
2: थैंक यू।
1: नहीं कहूंगा
2: डॉक्टर,
1: क्योंकि न कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर लॉरेंस, मैं अब चलता हूं।
2: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
3: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
2: डेजी, डेजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
3: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
2: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार

0: करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
1: लॉरेंस तुम अचानक,
0: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
1: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
0: हाँ हाँ, लेकिन लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, कोई कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
1: मैं भी तुम्हें,
0: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
1: भुला दूंगी, हमेशा के लिए भुला दूंगी।
0: हाँ, वो डेजी मैंने मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
1: हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ।
0: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ उसको फ्रेम करवा के यहां रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उससे किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेजी हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
1: हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। हाँ। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
0: डेजी
1: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
0: ये क्या कह रही हो तुम डेजी?
1: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
0: नहीं, नहीं, डेजी
1: तुमने अपने सहपाठी और अपने पर की जान ली।
0: नहीं नहीं नहीं, डेजी सुनो तो।
1: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह
0: सकते। डेजी ये सच नहीं है, मैं कहता हूँ डेजी।
1: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
0: ओह माय गॉड,
1: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
0: ओह नो,
1: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
0: विदा?
1: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ
0: था। डेजी, डेजी,
1: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना। अरे अरे, ये आपको क्या हो रहा है? ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं?
0: डेजी, ये मेरी नसें टूट रही है। डेजी डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है। डेजी
1: नहीं लॉरेंस, नहीं नहीं लॉरेंस, विश्वास करो मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस लॉरेंस लॉरेंस लॉरेंस लॉरेंस, ये कैसे हो गया? करो करो डॉक्टर डॉक्टर। मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई, डॉक्टर आए लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे।

0: अदालत मुकदमा हत्या का आरोप सजा और जेल की एक कोठरी की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना छुल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे?
1: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
1: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की।

0: पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लहरा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता।

0: तो कभी छा।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
2: जी,
3: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है। आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
2: जी,
3: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा। तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
2: जी।
3: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
2: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्र कवि प्रदीप जी के बारे में
3: जी।
2: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
3: मैं तो अच्छी हूँ
2: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
3: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
2: अच्छा।
3: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
2: जी,
3: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
2: अच्छा जी।
3: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
2: ही हैं।
3: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी।

0: बैठे थे वो सब गुजराती थे।
1: जी
0: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहां पर थे
1: जी,
0: रावल जी।
1: अच्छा।
0: और उन्होंने उनको सुना, उन्होंने जाकर के हिमांशु राय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
1: जी।
0: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूं भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया, अपनी शैली में उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इंप्रेस हो गए। और वो इंप्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
1: अच्छा।
0: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूं, मैं तो कवि हूं और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार
1: बन गए। थी कौन से सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें लिया गया?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
1: जी,
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल।
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप, तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए? उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार
1: जी, एक्टर
0: एक्टर। तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए
1: और
0: प्रदीप कुमार अलग हो गए। तो ये आपके सवाल का जवाब है।
1: तो मितुल जी आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का।
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना।
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार,
1: हेमंत कुमार की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: हाँ जी बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं। हाँ। प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कवि प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था।
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था।
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती
0: जाना
1: थी।
0: जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति
0: और सिद्धांतवादी।
1: सिद्धांतवादी, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
0: अच्छा।
1: हाँ। तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती
0: जी,
1: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
0: अच्छा जी।
1: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
0: इतनी फ्रीडम थी।
1: फ्रीडम, हाँ। तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
0: जी।
1: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने 7 फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
0: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूं और तुम पानी।

0: अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
1: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं। तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
0: अच्छा।
1: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे। तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
0: वो गर्म है,
1: मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी? दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
0: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
1: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा।
0: अच्छा।
1: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफकोर्स दो तीन साड़ियां तो दी होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू। अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ।
0: अच्छा। सब
1: तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं। तो उन्होंने बोल दिया वहां पर मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को लेके। तो वहां से कोई नहीं आया, वहां मेरी दादी मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं ना, तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था, अरे नारायण जी आप आए हैं आइए। बोलते माफ कीजिए लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
0: जी जी।
1: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
0: जी।
1: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए और वैसे मतलब ये जो यूनियन था
0: वो संबंध
1: विवाह का, तो वो खुशी खुशी उसकी समापन हुआ।
0: जी जी। तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही,
1: पानी बन के रही। हाँ, एक्चुअली वो भी आग थी, लेकिन वो पानी बन के रही।
0: जी, ये सबसे बड़ी बात है। जी,
1: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी।
0: मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल में की गई। हाँ, नाना नानी की द्वारा।
1: हाँ, ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
0: जी।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं। लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पढ़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की
1: आम
0: तरह
1: पिता
0: वो रहे
1: की तरह
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा, कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति
0: जी, बिल्कुल,
1: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण,
0: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया
1: जी, जी।
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम, इंदौर, वहां पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए, तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई, मतलब मेरे ताऊजी, वो इलाहाबाद में रहते थे।

0: और वहां पर उनका घर था, तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद. मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे. तो वो इलाहाबाद में गए, वहां पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की. वहां पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे और बड़े बड़े जो वहां के नेता थे वो वहां पर रोज ही उनके वहां कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था. और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था. तो तभी से एक माहौल भारत की आजादी के लिए लड़ाई
1: जी
0: वो उन्होंने वहां बहुत नजदीक से देखा. और इलाहाबाद में ही काफी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि जहां पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है. तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया. पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है, ये कोई
1: मतलब
0: जानबूझ के
1: प्रेरित
0: नहीं
1: हुए
0: हुआ.
1: क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था,
0: हाँ
1: तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है
0: हाँ
1: वो आम जन तक पहुंचना चाहिए.
0: हाँ और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
1: जी
0: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे. हाँ तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया.
1: हाँ,
0: और
1: तब
0: फिर
1: तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में.
0: नहीं, वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की. वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे
1: जी
0: मुंबई.
1: जी हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान.
0: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई. और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया
1: उग्र
0: था उस
1: रूप में.
0: वक्त.
1: हाँ जी
0: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू.
1: जी क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो जिस कविता ने.
0: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
1: जी
0: थी,
1: जी
0: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ.
1: बिल्कुल.
0: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूँ. चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये
1: जी
0: कविता
1: जी
0: लिखी
1: बिल्कुल.
0: है. वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था,
1: बहुत खूब.
0: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण. वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था.
1: क्या बात है, बहुत खूब.
0: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है लेकिन ये यही कविता है जो उन्होंने
1: लिखी
0: उसी वक्त
1: उसी
0: लिखी.
1: दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ
0: अंकुर
1: और
0: पैदा
1: वहां से
0: हुआ.
1: वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए.
0: हाँ
1: जी तो मित्तल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं. आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो.
0: मैं तो सोचती हूं कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज
1: जी
0: हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है.
1: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे. पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत.

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी।
1: लेकिन जो बातें सुनी और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी
0: जी।
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
0: भूमिगत।
1: तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे
0: जी।
1: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहां से। नहीं नहीं देखिए, ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि

0: शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
1: बिल्कुल,
0: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है? तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
1: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
0: शब्दों की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे।

0: तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
1: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ी गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
0: शब्दों
1: क्योंकि
0: की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
1: बिल्कुल। और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता है।
0: और दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
0: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो
1: जी
0: उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती
1: कश्ती
0: निकाल
1: निकाल
0: के,
1: के।
0: तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी, सबसे बड़ी बात
0: सही
1: ये
0: बात है।
1: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
0: बहुत ज्यादा गांधी जी उनके हीरो थे, तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि एक बच्चों के भाषा में लिखा
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है, इस गाने के
1: कोई
0: सिवाय वो पूरी नहीं
1: गाना
0: होती।
1: जी बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ।
0: जी
1: तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
0: यही गीत
1: साबरमती के संत।
0: साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।

0: मित्तल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना? लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं, भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहां क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गाँव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं,

0: लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे, तो
1: जी
0: ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे, उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
1: जी
0: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
1: नहीं है,
0: सारे गामा नहीं है,
1: कॉपी की भी नहीं है,
0: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है। ठीक है, तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया
1: जी।
0: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
1: बिल्कुल,
0: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं।
1: बिल्कुल, वो
0: एक छोटे पिंजरे में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत और भी कई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हाँ, और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको क्या बताऊँ,
1: दर्पण में
0: मुखड़ा देख ले दर्पण में, तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं। आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
1: सीरीज है उनके पास, हाँ, और आज भी उनके
0: सुनते हैं लोग,
1: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद करते हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
0: पिंजरे के पंछी सुनिए।
1: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़। साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बज चुके हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी ये सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में युवाओं के लिए सुनिए हमारे ये कार्यक्रम तरुण कुसुम।

नमस्कार, आप सभी युवा दोस्तों को एक बार फिर आपके इस रेडियो हम सफर संजीव कुमार सुधाकर का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं युवा दोस्तों? बिल्कुल अच्छे होंगे आप सभी। माना इन दिनों मौसम लगातार बदलता जा रहा है, थोड़ी सी परेशानी भी बीच बीच में हम आपको देखने को मिल रही है। वास्तव में प्रकृति पर्यावरण में जो हम मनुष्यों के द्वारा छेड़छाड़ की गई है ना, ये सब उसी का परिणाम है। मौसम की बेरुखी यह हमें सीधा इशारा करती है कि भाई अब हमें संभल जाना चाहिए, अपने जीवन शैली में सुधार करने की जरूरत है, अपनी जरूरतों को कम करने की जरूरत है, अनावश्यक जरूरतें जिसे साधारण भाषा में हम विलासिता कहते हैं, मतलब विलासितापूर्ण चीजों के लिए हम अपनी उस प्रकृति का नुकसान पहुंचा रहे हैं जो हमें जिंदगी का आधार देती है, जो हमें जीवन का आधार देती है, जिसका स्वच्छ रहना, जिसका फलना।

फूलना हमारे फलने फूलने के लिए जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ढेर सारी बातें फिर होगी हर दिन की तरह, लेकिन आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम अपने युवा श्रोताओं के लिए माटी की सौंधी खुशबू लिए प्यारे प्यारे लोकगीत लेकर आते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इस कार्यक्रम में अब हम आपके साथ होते हैं शाम 5 बजे से 5:40 तक। साथ ही अपने सुनने वालों को बता दें, शाम 5:40 से 6 बजे के बीच हम आपको सुनवाते हैं कुछ गजल और फिल्मी गाने। श्रोताओं, आइए ना बिना देर किए हुए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये नचारी, गायक कलाकार अरविंद कुमार झा।

0: नितिन किया है आकाशवाणी दरभंगा। युवा श्रोताओं के लिए आप सुन रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम तरुण कुसुम। श्रोताओं, अरविंद कुमार झा का गाया ये प्यारा सा लोकगीत हम आपको सुनवा रहे थे। भक्ति भजन का ये सुंदर सा अनुपम सा रूप, जब हम अपने आराध्य से एकाकार होते हैं, संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से, नृत्य और भी भक्ति के जो कहते हैं ना, नवधा भक्ति के जो प्रकार है, उसमें एक प्रकार ये भी है कि संगीत और गीत के जरिए हम अपने आराध्य तक अपने मन की बातों को भी पहुंचाते हैं। और देखिए ना, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि दोस्तों, इन दिनों मौसम बड़ा बदला बदला सा लग रहा है। कभी अचानक तेज गर्मी, फिर अचानक आंधी तूफान, बरसात, ये सब वास्तव में प्रकृति के उस नुकसान को दिखाता है ना, जो एक दो दिन में नहीं हुआ है युवा दोस्तों, सालों साल इसका नुकसान होता रहा है। और कहीं ना कहीं ये हमें वार्निंग दे रही है कि अब अगर हम नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगा। सब कुछ आप युवाओं के हाथ में होता है, चाहे बात देश के उज्जवल भविष्य की हो, सुरक्षा की हो, सम्मान की हो। हमारी अगली पीढ़ी ने जो हमें सौंपा है, उसे सुंदर और स्वच्छ बनाए रखना, यह हम सबों का पुनित कर्तव्य है, हमारे जीवन का उद्देश्य है। इन दिनों जब तेज धूप में हम चिलचिलाती गर्मी को महसूस करते हैं ना, और सफर में जब हम किसी राह से गुजरते रहते हैं, दूर दूर तक अगर कहीं कोई पेड़ पौधा ना हो, तो सफर बड़ी मुश्किल भरी हो जाती है। लेकिन आज भी ऐसी कई पुरानी सड़कें हैं जिनके दोनों ओर बड़े बड़े विशाल पेड़ लगे हुए हैं। पता ही नहीं चलता कि गर्मी कितनी तेज है। उस पेड़ की छांव में कुछ देर बैठने का जो मजा होता है ना, वो आज के इस आधुनिक उपकरणों में नहीं है जो गर्मी भगाने के नाम पर हम खरीद कर ले आते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, है ना युवा दोस्त। तो प्रकृति का जो साथ है, उसकी जो बात है ना, वो तो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आइए ना फिलहाल आपके लिए ये अगला लोकगीत।
1: तीन गो मूरत देखी जोगी और जोगिनिया, तीन गो मूरत देखी जोगी और जोगिनिया, धै

अशोक कुमार पासवान को आप सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। युवा श्रोताओं के लिए आप सुन रहे हैं हमारे ये कार्यक्रम तरुण कुसुम। अपने सुनने वालों को हम याद दिला दें, आज रात 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दरभंगा से मन की बात के मैथिली अनुवाद का प्रसारण। समय याद रखें, रात 8 बजे।

श्रोताओं, ये थे अरविंद कुमार झा। आप सुन रहे थे इनका गाया ये देवी गीत। युवा दोस्तों, हमारी आपकी ज़िंदगी में जब हम आप आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर दिन हमारा बेहतर ही रहता है। कभी कभी हमारा मन काम की थकान से बोझिल भी हो जाता है, या फिर कभी जब जिस तरह का हम चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, अगर उस तरह की सफलता नहीं मिलती तो मन में झुंझलाहट और खींच भी उत्पन्न होती रहती है। उस वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी चीज़ को जो धैर्य और मेहनत और ईमानदारी के साथ जब हम करते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट, उसका परिणाम हमेशा बेहतर होता है। अगर हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार असफलता मिल रही है, तो हमें बार बार प्रयास करने की ज़रूरत है बेहतर तरीके से। कभी कभी हम प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती, तो उस वक्त हमें ये सोचना होगा कि जिस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं, क्या वो तरीका सही है। कभी कभी हम किसी एक विषय को लगातार पढ़ते रहते हैं, दूसरे विषय को हम भूल जाते हैं। किसी एक विषय में अगर हमें बेहतर परिणाम मिल जाए और दूसरे विषय में अगर हम कमज़ोर पड़ जाएं, तो फिर सफलता प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।

इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति जब भी हम आगे बढ़े तो हमें इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि उससे जरूरी जुड़ी जो जो बातें हैं, मतलब जो जरूरी बातें हैं, उसे पूरी तरीके से हमें ईमानदारी के साथ पूरा करना है, समय देना है, समझना है और आगे बढ़ना है। जिंदगी जो है, अगर आज हार का सामना हमें करना सिखा देती है ना, तो फिर जीत मुश्किल नहीं है, जरूरत है अपनी हार को स्वीकार करने की। अगर हम अपनी हार को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर जीतना मुश्किल होगा। हार को स्वीकार करने का मतलब हमें अपनी कमजोरियों को समझना, उन कमियों को जानना जो आगे बढ़ने में हमारे लिए जरूरी है, लेकिन कहीं भूल बस हमसे वो छूट रहा है। जिंदगी में हमेशा अच्छे लोगों से, बड़े बुजुर्गों से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने परिवार के लोगों से किसी विषय में अगर लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो जरूर सलाह लीजिए, पूछना चाहिए। अंदर में मन में कोई घुटन नहीं रखनी चाहिए, घुटन तनाव पैदा करता है और तनाव लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा बाधक माना जाता है। तनाव को जिंदगी में अगर हम अपने ऊपर हावी होने देंगे तो यह हमें कमजोर कर देगा, खोखला कर देगा। इसलिए ऐसी स्थिति जब भी हो, आपका मन घबराए, कोई बात आपको समझ ना आए, तो निसंकोच, चाहे कैसी भी बात हो, कैसी भी मुश्किल जिंदगी में हो, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, आपके शिक्षक, आपके परिवार का वो कोई सदस्य, या आपका ऐसा कोई सच्चा दोस्त, उसे वो बात जरूर बताएं। और हमेशा कोई ना कोई देवदूत आपको जरूर मिल जाएगा जो आपकी जिंदगी में एक बेहतर सलाह देकर आपकी जिंदगी के रुख को मोड़ देगा। बिल्कुल, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। विश्वास कीजिए अपने इस रेडियो हम सफर के इस बात को। पूछना कोई गुनाह नहीं है, उससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। हमेशा जिंदगी में इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हम अगर किसी से कुछ पूछते हैं, चाहे वो उम्र में हमसे छोटा ही क्यों ना हो, वहां हम छोटे नहीं होते, हम बड़े हो जाते हैं अपने ज्ञान से, अपने विचार से, अपने संस्कार से, है ना दोस्तों। ढेर सारी बातें और भी होंगी, कुछ ज्यादा बोल गया हो तो क्षमा कीजिएगा। सुनवाते हैं आपको ये प्यारे सा लोकगीत।

पार्वती पति दारिद्र फेरू, हेमकांत झा का गाया ये गीत आप सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। युवा श्रोताओं के लिए आप सुन रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम तरुण कुसुम। श्रोताओं, युवा दोस्तों, आज माना कि हमारी जिंदगी में कुछ कमियां हैं, आज हम उस जगह नहीं जहां पहुंचने के ख्वाब, जहां पहुंचना हमारा लक्ष्य है, तो उसके लिए कल को बेहतर करने के लिए हमें आज, आज मतलब इस पल को बेहतर करना होगा। अक्सर कई बार हम सोचते हैं कि अरे यार ये काम जो है ना वो कल हम कर लेंगे, कल से हम बेहतर तरीके से सारे काम करेंगे, कल से सारी चीज़ों को हम एकदम कहते हैं ना कि वो रूटीन वाइज करेंगे। कल कभी होता ही नहीं, जो भी करना है हमें आज करना है, इस वक्त करना है। ज़िंदगी में वैसी जो भी चीज़ें हैं जो हमें हमारी सफलता से दूर करती हैं, उन्हें अपने ज़िंदगी से अलग कर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जो हमें आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं कोई रुकावट पैदा कर रहा है, उन चीज़ों से हमें दूर हो जाना चाहिए। चाहे वो हमारी ज़िंदगी में वैसी बुरी आदतें हो, चाहे वैसे बुरे लोग हो। देखिए, ज़िंदगी में कई बार जब हम सोचते हैं ना समय दोबारा मिलता नहीं, मैं अक्सर कहता हूँ आप सुनने वालों से कि समय जो है ये अपने निश्चित चाल से यूं ही चलता रहेगा, दिन महीने साल के रूप में ये यूं ही बदलता रहेगा। आज हम हैं, कल कोई और था, कल कोई और रहेगा। ये सफ़र हमें यूं ही चलना सिखाता है। तो ज़िंदगी में लाख कठिनाइयाँ हो, बेहतर तरीके से अपने विषय वस्तु को समझकर उसकी बेहतर तैयारी कर आगे बढ़िए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर इंसान में ऊपर वाला कोई ना कोई ऐसा गुण जरूर देते हैं जो किसी और में नहीं होता। कई हमारे ऐसे युवा मित्र हैं जिनकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, चाहे वो बड़े प्यारे गीत गाते हैं या कोई वाद्य यंत्र वो बजाते हैं। कई युवा दोस्त लिखने की कला में बड़े निपुण होते हैं, काव्य चाहे कहानी बेहतर तरीके से वो लिख पाते हैं। कई ऐसे दोस्त होते हैं हमारे युवा जो खेल और खेल गतिविधियों में बड़े ही माहिर होते हैं, उनके लिए उनका वो क्षेत्र भी जिंदगी में बेहतर सफलता दे सकता है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम सब में कोई ना कोई ऐसा गुण जरूर भगवान देकर हमें भेजते हैं, जिसे बस निखारने की जरूरत है, और इसे निखार लीजिए, सफलता आपके कदमों में होगी। सुनवाते हैं आपको इस कार्यक्रम का ये अगला गीत, माटी की सौंधी खुशबू लिए हुए ये प्यारे प्यारे लोक संगीत लोकगीत हम आप तक पहुंचाते हैं आपके इस कार्यक्रम तरुण कुसुम के माध्यम से आप तक।

0: सनवा के सखी सब भेलर कुरिया सुकून दिनवा सुकून दिनवा हमर माह के अंगन।
1: ब्रजेश कुमार सुमन के गाए इस लोकगीत के साथ ही तरुण कुसुम इस कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। दीजिए अपने इस रेडियो हम सफर संजीव कुमार सुधाकर को विदा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, नमस्कार।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम तरुण कुसुम। शाम के 5:40 हुए हैं आकाशवाणी दरभंगा से। अब समय हो चला है चंद गीत और गजलों का। भूपेंद्र सिंह और मिताली का गाया ये गजल हम आपको सुनवाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह को। चंद गीत और गजलें आप सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा।

0: चंद गीत और गजलें आप सुन रहे थे। आज जिन कलाकारों के गाए गजल हमने आपको सुनवाए हैं वे थे भूपेंद्र सिंह, मिताली सिंह, अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। इस समय शाम के 6 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना

0: ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। जानकारी प्राप्त कीजिए। आज हमारी सभा में प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। आज की हमारी सभा में अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:10 से आप सुनेंगे महाकवि की रचनाएं विद्यापति गीत। शाम 6:30 समय होगा ग्रामीण भाइयों के लिए हमारे कार्यक्रम गांव घर का। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के चिट्ठियों पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम गुनगुनाइत मन। साथ ही गामघर कार्यक्रम में आज चर्चा होगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस इस विषय पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम होगा खेती गृहस्थी शाम 7 बजे से। किसान श्रोता सुनेंगे चर्चा खाद एवं उर्वरक के समुचित प्रयोग। प्रादेशिक समाचारों का समय होगा शाम 7:30। इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। शाम 7:47 पर आप सुनेंगे जिले की हलचल। श्रम संगीत का कार्यक्रम होगा शाम 7:52 पर। और श्रोताओं आज रात 8 बजे आप सुनेंगे मन की बात के मैथिली अनुवाद का प्रसारण।

समाचार संध्या का समय होगा रात 8:45 पर, रात 9 बजे न्यूज एट 9 और रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अनुगूंज। इन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। रात 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू खबरें, इसे भी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और आज रात 10 बजे श्रोता सुन सकेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। समय याद रखें रात 10 बजे कार्यक्रम होगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। रात 11 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे, रात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होगा। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज हमारी सभा में प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। लगातार बारिश के इन दिनों में अपने घर के बच्चों को वैसी जगह खेलने जाने से मना करें जहां पानी से भरे हुए गड्ढे हो या वैसे क्षेत्र जहां जल भराव हो। ऐसी जगहों पर अपने छोटे बच्चों को खेलने जाने से मना करें, छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।

दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग चालान से बचने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए अवश्य करें। यातायात नियमों का पालन जहां हमें सुरक्षित रखता है, वहीं ये सड़क पर चलने वाले अन्य राहगीरों की जान को भी बचाता है।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। शाम के 6:10 हुए हैं। समय हो चला है महाकवि की रचनाओं का। सुनिए विद्यापति गीत।

सुर सारी गेल बढ़ियाई, शिकायत सुर

वाले उछल पपा।

महाकवि की ये रचनाएं आप सुन रहे थे विद्यापति गीत। विद्यापति गीतों के आज कलाकार थे काशीनाथ झा किरण और सूर्यनारायण यादव। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन एक साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी बैजू कुमार झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आइ आकाशवाणी सँ मन की बात कार्यक्रम में देश विदेशक लोक सभक संग अपन विचार साझा कयलनि। मन की बात कार्यक्रमक ई 134वीं कड़ी छल। प्रधानमंत्री देशवासी लोकनि सँ भीषण गर्मी के लऽ कऽ एहि दिन मे अत्यधिक सावधानी बरतबा आ सरकारी दिशा निर्देश सभक पालन करबाक अपील कयलनि। ओ लोक सभकेँ पर्याप्त मात्रा में पानि पीबा आ रौद सँ बचबाक उपाय कऽ कऽ घर सँ बाहर निकलबाक सलाह देलनि। प्रधानमंत्री कहलनि जे गर्मी सँ राहतक लेल आम पन्ना, छाँछ, लस्सी, सतुआ, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत आ सोल कढ़ी केर सेवन करब उपयोगी अछि। ओ कहलनि जे ई पेय पदार्थ एक भारत श्रेष्ठ भारत केर भावना के देखबैत अछि आ एहि मे पीढ़ी सभक अनुभव समाहित अछि। प्रधानमंत्री कहलनि जे सरकार देशक अमूल्य धरोहर सभक संरक्षण लेल प्रयासरत अछि। ओ जनौलनि जे ज्ञान भारतम अभियानक तहत छत्तीसगढ़ केर मल्हार मे 6वीं-7वीं शताब्दी केर पांडु वंशक महर्षि बलार्जुन सँ जुड़ल दुर्लभ तांबाक 3 गोट प्लेट सेहो भेटल अछि। प्रधानमंत्री झारखंड केर राजधानी रांची मे आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिताक चर्चा कयलनि। एहि मे लगभग 800 एथलीट भाग लेने छलाह। श्री मोदी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वीन शंकर, देव मीना आ कुलदीप कुमार के 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़बा पर बधाई देलनि। ओ 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़े वाला गुरविंदर सिंह आ अनिमेश कुजूर सँ गप सेहो कयलनि। प्रधानमंत्री कहलनि जे खगोल विज्ञान देशक सभ पीढ़ी में जिज्ञासा जगौलक अछि। ओ कहलनि जे खगोल विज्ञान देश में तेजी सँ लोकप्रिय भऽ रहल अछि। श्री मोदी युवा लोकनि सँ खगोल विज्ञान क्लब में सम्मिलित होयबाक आ छुट्टी केर दरमियान तारामंडल देखबाक अपील कयलनि।

0: प्रधानमंत्री जनौलनि जे नमामि गंगे अभियानक तहत बनाओल गेल भारतक पहिल गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभालक। श्री मोदी कहलनि जे गंगा डॉल्फिन संरक्षण सँ नदीक जैव विविधता आ अमूल्य प्राकृतिक धरोहर केर संरक्षण सेहो होइत अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आइ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक मन की बात कार्यक्रम के सुनलनि आ कार्यक्रम में विशेष रूप सँ बिहारक उल्लेख कयल जयबा पर प्रधानमंत्रीक प्रति आभार जतौलनि। मुख्यमंत्री कहलनि जे कार्यक्रम में भीषण गर्मी सँ बचावक लेल बिहारक पारंपरिक पेय सतुआ आ प्रसिद्ध जर्दालू आम के उल्लेख करब राज्यक विशिष्ट पहचान के राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करैत अछि। श्री चौधरी कहलनि जे प्रधानमंत्री द्वारा बिहारक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उत्पाद आ जनजीवन सँ जुड़ल विषय सभक उल्लेख राज्यवासी लोकनिक लेल गर्व आ सम्मानक विषय अछि। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन आइ 27वां नौसेना प्रमुखक कार्यभार ग्रहण कयलनि। ओ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी केर स्थान लेलनि अछि। कार्यभार ग्रहण कयलाक बाद श्री स्वामीनाथन कहलनि जे चुनौतीपूर्ण, जटिल आ अनिश्चितता सँ भरल परिवेश के देखैत नौसेना सक्रिय रूप सँ तैनात अछि। ओ कहलनि जे नौसेनाक आधुनिकीकरण कयल जा रहल अछि आ एकरा श्रेष्ठतम स्तरक युद्ध क्षमता सँ लैस कयल जायत। एहि अवसर पर निवर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी कहलनि जे देशक नौसेनाक नेतृत्व करब हुनका लेल सम्मानक गप रहल अछि। आईपीएल 2026 केर खिताबी मुकाबला आइ अहमदाबादक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलाओल जायत। फाइनल मैच में पिछला बेरक विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु केर सामना गुजरात टाइटन्स सँ होयत। दुनू टीम पूरा टूर्नामेंट में शानदार खेल देखबैत फाइनल में जगह बनौलक अछि। ई महामुकाबला आइ साँझ 7:30 बजे सँ शुरू होयत। प्रदेश भर में पिछला 24 घंटा के दरमियान मौसम शुष्क बनल अछि। पिछला 24 घंटा में 37.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमानक संग कैमूरक भभुआ प्रदेशक सबसँ गर्म स्थान रहल। मौसम विभाग अगला 24 घंटा के दरमियान प्रदेशक उत्तर पूर्व भागक किछु ठाम बरखाक संभावना जतौलक अछि। अररिया जिला में पुलिस छापेमारी अभियान चलाकर फराक फराक क्षेत्र सबसँ 900 लीटर देशी विदेशी शराबक संग 41 गोटे के गिरफ्तार कयलक अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। समय हो चला है ग्रामीण भाइयों के लिए हमारे इस कार्यक्रम गांव घर का।

कार्यक्रम गुनगुनाइत मन सुन निहार समस्त स्नेही श्रोता लोकन के लाल बहनक नमस्कार। आई श्रोता लोकन आई रवि दिन है आजुक दिन हम अहाँ लोकन के लिए अनने छी कार्यक्रम गुनगुनाइत मन एके अंतर्गत आई एक दोहा सुनबाब संगे अहाँ लोकन के पत्र आधारित लोकगीत से सुनबाब। तो पहिने तो जे दोहा अनने छी से कहि दै छी। देखियौ दोहा तो अहाँ सब गोटा के बुझल रहैए आ दोहा से हम सब किछु सीखै छी याद रहैए ओ दोहा तो ओहि हिसाबसँ चलै छी तऽ जीवनमे हमसब से आगू बढ़ै छी। तऽ आइ दोहा जे अइ से अनने छी समय पाय फल देत है समय पाय झड़ि जात सदा रहे नहि एक सी का रहीम पछतात। रहीम जी के ई दोहा अइ। एहि दोहाके माध्यमसँ कवि रहीम बड़ कम शब्दमे बड़ बेसी गप कहि गेल छथि जकरा हमरा लोकनिके अपना जीवनमे आत्मसात करबाक चाही। जेना समय पर गाछ वृक्ष फल वा फूल दैत अछि ओहिना एकटा समय एहनो अबैत अछि जखन ओ पतझड़ लऽ लैत अछि। ठीक ओहिना जीवनमे अपना सबके समय पर सुख ओ दुख क्रम लागल रहैत अछि। तैं हमरा लोकनिके एहिसँ से धैर्य बनाकर रखबाक चाही आ घबरेबाक नहि चाही। एकदम ई सत्य अछि हमरा लोकनिके ई बुझबाक चाही जे सब दिन एक समान नहि रहि सकै छी। समय के संग सभक स्थिति

को बदलैत अछि, तैं कोनो तरहक परिस्थिति मे धैर्य धारण कऽ कऽ रहबाक चाही। एहिसँ हम लोकनि ई सीख लै छी। देखियौ श्रोता लोकनि, आइ एकटा आर बड़ महत्वपूर्ण दिन अइ, तकर चर्चा कऽ रहल छी, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस। प्रत्येक वर्ष श्रोता लोकनि, हमरा लोकनि 31 मई यानि आजुक दिन विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनबै छी, जे आइ अछि। ई दिवस दुनिया भरिमे आजुक दिन मनाओल जाइत अछि। एकर मुख्य उद्देश्य तम्बाकू के सेवन व एकर उत्पाद के नकारात्मक दृष्टिकोण सँ व्यापक प्रचार प्रसार करब अछि, जे एकर सेवन केनिहार लोकनि के स्वास्थ्य पर एकर कुप्रभाव दिस ध्यान आकर्षित करैत अछि। तैं हमरा लोकनि के तम्बाकू के सेवन कखनो नहि करबाक चाही, कदापि नहि करबाक चाही। ई हमेशा सदैत ध्यान रखबाक चाही। श्रोता लोकनि, बहुत रास अपना सब गप सप करै छी, संगे गीतनाद तऽ सेहो सुनायब। तऽ सबसँ पहिने एकटा गीत सुना दै छी, फेर आगू चर्चा करब।

हाँ, एखन जे ई गीत सुनि रहल छलहुँ हँ, अरहुलके माला, ई गीत सुनबा लेल से बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 सँ हमर श्रोता लिखने छलाह, संतोष कुमार, अनिता राज, गरी महाराज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, ई सब सुनऽ चाहै छलाह से सुनबा देलियनि। आब एकटा दोसर चिट्ठी सेहो आयल अछि, ओ आयल अछि झंझारपुर लंगरा चौकसँ। लिखैवला हमर

हाँ एखन जे ई गीत सुनि रहल छलहुँ हँ अरहुल के माला, ई गीत सुनबा लेल से बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 सँ हमर श्रोता लिखने छलाह, संतोष कुमार, अनिता राज, गरी महाराज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, ई सब सुनऽ चाहै छलाह तऽ से सुनबा देलियनि। आब एकटा दोसर चिट्ठी सेहो आयल अछि, ओ आयल अछि झंझारपुर लंगरा चौकसँ। लिखैवला हमर श्रोता छथि हरे राम पासवान, काजल कुमारी, जयशंकर पासवान, रानी कुमारी, आ एकटा आर चिट्ठी अइ जे आयल अइ ग्राम सप्ताहसँ। ओ लिखैवला हमर श्रोता छथि विद्या, लवली, पीहू, मौली आ आकांक्षा, तऽ ईसब सुनऽ चाहै छथि से ई लोकगीत।

0: हाँ एखन हमरा लोकनि ई गीत सुनै छलहुँ हँ। आ आब देखियौ श्रोता लोकनि, अल्पसंख्यक के लेल प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम, अल्पसंख्यक कल्याण 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यक लोकनिक कल्याण वास्ते चलाओल जा रहल अछि, जाहि अंतर्गत 15 गोट बिंदु पर हिनका लोकनि के विकास हेतु कार्य कयल जाइत अछि, जाहिमे एकटा बिंदु शिक्षा पर सेहो जोर देल गेल अछि। एहि लेल अल्पसंख्यक समुदायक कल्याण लेल छात्रवृत्ति योजना, स्कूली शिक्षा ओ बुनियादी ढांचा के विकास, कोचिंग ओ मार्गदर्शन, स्कूलक निर्माण ओ आधुनिकीकरण, मदरसा के आधुनिकीकरण इत्यादि पर ध्यान देल जा रहल अछि। एहि योजना सँ लाभ उठेबाक लेल वस्तुतः जानकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट के देख सकै छी, ओ शिक्षा के क्षेत्र में एहिसँ लाभ उठा सकै छी। श्रोता लोकनि, एखन अपना सबके गप केलहुँ आ आइ अहाँ लोकनि के मनपसंद लोकगीत अहाँ लोकनि जे फरमाइश करै छी ओ सुनबै छी। तऽ बहुत रास चिट्ठी आयल छल मुदा आइ तऽ समय आब नहि अइ, तैँ फेर अगिला रवि कऽ जे हमसब आयब तऽ फेर अहाँ लोकनि के जतेक चिट्ठी अइ जतबा भऽ सकत से अहाँ लोकनि के सुनायब। एखन इएह आग्रह करब जे अहाँ लोकनि अहिना चिट्ठी खूब पठबैत रही आ हमसब अहाँ लोकनि के अहिना गीत सुनबैत रही। पता तऽ बुझले अइ, तैयो एक बेर फेर कहि दै छी, कार्यक्रम गुनगुनाइत मन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड अछि 8460004। तऽ एहि पता पर अहाँ सब बहुत रास चिट्ठी पठायब आ अपन मनपसंद लोकगीत अहाँ सब सुनि सकै छी, मनोरंजन कऽ सकै छी। आ आब देखियौ अपन हमर सबके जे कार्यक्रम अइ ओहि कार्यक्रम मे आब एकटा प्राइज कार्यक्रम के सेहो आब बेर भऽ रहल अछि। तऽ श्रोता लोकनि, पहिने ओ प्राइज कार्यक्रम अहाँ लोकनि के सुनवा दै छी। प्राइज कार्यक्रम अइ ममता का आंचल, तऽ ई पहिने आब अहाँ सब सुनि ली।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
2: नमस्कार, राजेश हूँ, ममता का आंचल ये कार्यक्रम का नाम है। आज ढेर सारी बातें करनी है श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी की तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं। शनिवार के दिन आज का ये अंतिम कार्यक्रम है। हाँ, ये नहीं समझिए कि कार्यक्रम खत्म हो गया। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने फोन कॉल किया था कि संडे का दिन रहता तो ज्यादा अच्छा होता। आपकी बातें हमने मानी, श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी ने मानी और संडे को अब ये कार्यक्रम हमारा आएगा। नोट कर लें, पूरे बिहार में जिस स्टेशन से आप हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से। पूर्णिया से अगर आप हमें सुनते हैं आकाशवाणी के, तो 7 से लेकर 7:25 पर हमारा ये कार्यक्रम अब प्रसारित होगा जून महीने 7 तारीख से। सासाराम वालों, आपके लिए कार्यक्रम उपलब्ध होगा रविवार को संध्या 7:00 से 7:15 पर। पटना प्राइमरी चैनल अगर आप सुनते हैं तो 6:45 से 7 बजे तक। विविध भारती पर 9 से 9:15 रात्रि में आप ये कार्यक्रम का आनंद ले पाएंगे, ज्ञान ले पाएंगे। दरभंगा आकाशवाणी से ये प्रसारित होगा 6:45 से 7 बजे तक। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बैठी हैं डॉक्टर श्रद्धा, लेकिन हम फोन नंबर पहले बताएंगे कि अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होना तो डॉक्टर श्रद्धा से बात कर लीजिएगा। हम बातचीत करते हैं इसके अंदर कि IVF पद्धति से बच्चा प्राप्त किया जा सकता है अगर शादी के 2-3 साल हो गए बच्चा नहीं है। फोन नंबर नोट कीजिए 9162562266 9162562266। हिंदी में भी बता देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं हिंदी में 9162562266। स्टूडियो में डॉक्टर श्रद्धा बैठी हैं, उन्होंने ही कहा कि और धीरे बताया जाए, है ना, क्योंकि फोन कॉल तो उन्हीं के पास आते हैं। चलिए डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है और आज का ये पूरा कार्यक्रम शनिवार के दिन का अंतिम कार्यक्रम ममता का आंचल आपके हवाले।
3: नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी। आज हम बात करेंगे उन सभी दंपति के लिए जो काफी दिन से कोशिश कर रहे हैं बच्चा ठहरने के लिए, चिंतित हैं क्या करें, कहाँ इलाज कराएं, बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा है, तो हम उनके लिए बात करेंगे ताकि उन्हें आगे का रास्ता समझ में आए। निसंतानता क्या होती है, सबसे पहले ये जानना है। अगर कोई दंपति पिछले 1 साल

0: से कोशिश कर रहा है बच्चा ठहरने के लिए और उन्हें बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, तो वैसे दंपति को निसंतान दंपति कहा जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है, कोई अभिशाप नहीं है, ये जानना जरूरी है। और विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है तो इसके लिए इलाज भी अब अवेलेबल हो चुका है। अगर एक साल में आपको बच्चा नहीं ठहरा तो अब जरूरी है आप किसी भी डॉक्टर से जाइए और अपना जांच कराना शुरू कीजिए। और डॉक्टर जब जांच करके आपको जो भी दवाई लिखते हैं वो सब खाइए। अगर आपको बच्चा ठहर गया तो हमारे तरफ से भी बधाई, लेकिन बच्चा अगर शादी के 2 साल हो गए कोशिश करते हुए और आपने आपको अभी तक बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, तो अब जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलने का, क्योंकि निसंतान रोग विशेषज्ञ आपका बीमारी बेहतर समझेंगे। जिस तरह कैंसर का बीमारी कैंसर के डॉक्टर बेहतर समझते हैं, शुगर का बीमारी शुगर के डॉक्टर बेहतर समझते हैं, उसी तरह निसंतानता का बीमारी निसंतान रोग विशेषज्ञ बेहतर समझेंगे। जिस तरह एक हड्डी का बीमारी हड्डी रोग विशेषज्ञ बेहतर समझेंगे, उसी तरह निसंतानता का बीमारी निसंतान रोग विशेषज्ञ बेहतर समझते हैं। मैं ये भी बताना चाहती हूँ इस रेडियो के माध्यम से उन सभी श्रोताओं को, खासकर बड़े बुजुर्ग को, कि जमाना बदल रहा है, निसंतानता तेजी से बढ़ते जा रही है। एक जमाना था जब बहुत कम लोग ही निसंतानता से जूझते थे, लेकिन जूझते सभी थे, हर जमाने में लोग जूझते रहे हैं। अब बीमारी बढ़ते जा रही है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर 6 में से 1 दंपति वैसा है जो निसंतानता से जूझ रहा है और ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है,
1: ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर श्रद्धा ने कहा, कार्यक्रम चल रहा है ममता का आंचल, मैं हूँ राजेश और डॉक्टर श्रद्धा हमारे साथ बैठी हैं, आपसे बातचीत कर रही हैं। हम एक बार नंबर बताना चाहेंगे डॉक्टर श्रद्धा का कि अगर आपको आवश्यकता हो तो जरूर बात करें। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पास पड़ोस में कहीं भी, परिवार में, समाज में कहीं भी ऐसी समस्या हो तो उनसे ये नंबर शेयर करें। नंबर है 9162562266, 9162562266। निसंतानता एक बीमारी है, सिर्फ सही डॉक्टर से इलाज हो तो बच्चा हो सकता है, और अब तो IVF पद्धति से बच्चा प्राप्त किया जा सकता है। हाँ डॉक्टर श्रद्धा, आफ्टरऑल ये क्यों बढ़ रही है?
0: इसका बड़ा कारण जो है वो है हमारा लाइफस्टाइल, हमारे रहने का तरीका। आजकल मैं ये भी बताना चाहूंगी, सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंडिंग है लोग, और इस ट्रेंड से ये भी पता चला है कि लोग अब काम, मतलब एक्टिविटी कम करते हैं, रील्स ज़्यादा देखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है निसंतानता का। रील्स इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप काम कम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग रात को भी रील्स देखते हैं, उससे नींद पूरा नहीं होता है। और ये हम सभी को पता होना चाहिए कि नींद बहुत ज़रूरी होती है। नींद वो समय होता है जिस समय बॉडी का रिपेयर होता है, और कितने सारे हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, मेलाटोनिन, ये सब सिक्रीट होता है जो कि एक इंसान की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। तो मैं यही आग्रह करती हूँ कि अच्छा लाइफस्टाइल लीड कीजिए। अच्छा लाइफस्टाइल का मतलब है रोज सुबह उठिए, व्यायाम कीजिए, घर की बनी हुई साग सब्जी खाना खाइए, और अपना काम कीजिए। मोबाइल्स के रील से थोड़ा दूर रहिए। मोबाइल तो आज के दिन में डेफिनेटली हम सभी के लिए एक वरदान है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है कि लोग रील्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, उस चीज से दूर रहिए। और जरूरत है हेल्दी खाना खाने का, जंक फूड्स जो होता है उससे दूर रहिए, घर की बनी हुई साग सब्जी खाइए। आजकल ट्रेंड बढ़ता जा रहा है सिगरेट, गुटखा, बीडी, तंबाकू, क्योंकि टीवी में भी बहुत एड्स आते हैं इनके तो। बट साथ में ये भी आप जरूर देखते होंगे, लिखा रहता होगा कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान शरीर के लिए ठीक नहीं है। इससे सिर्फ कैंसर नहीं होता है, इससे सिर्फ हार्ट अटैक नहीं होता, इससे निसंतानता भी बढ़ते जा रही है। खासकर पुरुषों में देखा गया है इसके कारण उनके शुक्राणु घट रहे हैं, औरतों में ये देखा गया है उनका अंडा का क्वालिटी घट रहा है। इसलिए आप अच्छा लाइफस्टाइल

0: लीड कीजिए ताकि जो निसंतानता जो है उससे आप बचे, न सिर्फ निसंतानता से बचे, बहुत सारा बीमारी से आप बच सकते हैं, डायबिटीज से, आप हार्ट की बीमारी से, बहुत सारी बीमारियां, डिप्रेशन से, ओबेसिटी से, ये सब से बच सकते हैं।
1: ओ रियली, अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कर लें डॉक्टर श्रद्धा, और जो लोग हमें सुन रहे हैं राजेश यही कहता है ना कि अगर लाइफ स्टाइल को ठीक कर लेना तो ज्यादा से ज्यादा बीमारियां खुद ब खुद हमसे दूर चली जाती हैं। जी हाँ, आधुनिक होना अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी परंपरा को भी ना छोड़ें तो शायद हमारे जीवन में थोड़ा सुकून मिले, खुशियां मिले, और आपस में एक बॉन्डिंग हो, एक अच्छा माहौल मिलेगा परिवार में, और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। कार्यक्रम चल रहा है ममता का आंचल, मैं हूँ राजेश, डॉक्टर श्रद्धा आपके बातों का आंसर कर रही हैं। वैसे दंपतियों के लिए ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए लेकिन अभी भी बच्चा नहीं है। जी हाँ, और अभी भी बच्चे की तलाश में हैं, डॉक्टर से डॉक्टर, डॉक्टर से डॉक्टर जा रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कह रहे हैं कि विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलिए, ये सिर्फ एक बीमारी है, और अब तो IVF पद्धति से बच्चा प्राप्त करना बहुत आसान है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी, भिखना पहाड़ी मोड़ पटना की तरफ से। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर नोट कीजिए, 9162562266, 9162562266 ये नंबर है। और एक बात और बता दें कि आज शनिवार के दिन आप हमें अंतिम बार सुन रहे हैं, आप अगले महीने से यानी जून से आप सुनेंगे पूर्णिया वालों 7 बजे शाम से हमारा ये कार्यक्रम, सासाराम वाले भी सुनेंगे शाम 7 बजे से, पटना जो प्राइमरी चैनल है हमारा वो 6:45 से, पटना विविध भारती वाले रात्रि 9 बजे से, और दरभंगा आकाशवाणी से ये प्रसारित किया जाएगा 6:45 पर। और डॉक्टर श्रद्धा का नंबर नोट कीजिए, 9162562266, 9162562266। अब एक बात बताइए डॉक्टर श्रद्धा, क्या कारण है निसंतानता का, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर दीजिए।
0: निसंतानता का कारण औरत भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ये देखा गया है कि 30% कारण औरत होती है, 30% कारण पुरुष होते हैं, और बाकी 40% कारण वो होता है जिसमें जिसको अनएक्सप्लेन कहते हैं, यानी कि औरत और पुरुष दोनों हो सकते हैं लेकिन वहाँ बीमारी पकड़ाया ही नहीं गया है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि बीमारी पकड़ाया ही नहीं गया। मेरे पास बहुत से मरीज ऐसे आते हैं, फोन भी आता है कि हमने सारा जाँच करा लिया, हमारा सारा रिपोर्ट ठीक है, लेकिन शादी के 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, 10 साल हो गए, और अब तक बच्चा नहीं ठहरा। इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी कि जांच जितना अभी तक जांच हो पाया है उसमें रिपोर्ट ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर तरह से फिट है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी जांच अभी तक नहीं आ पाए हैं, साइंस वहां तक नहीं पहुंचा है जिससे वो पर्टिकुलर बीमारी पता चल पाए। तो बीमारी है, आप जाके इलाज कराएं अगर 2 साल में आपको बच्चा नहीं ठहरा। दूसरा, जो औरत अगर हम लोग पूछे कि औरत किस तरह से रिस्पॉन्सिबल हो सकती, औरत भी जिम्मेदार हो सकती है निसंतानता के लिए। इनफैक्ट औरत को ज़्यादा समाज ज़्यादा प्रताड़ित भी करता है कि वो ज़्यादा कारण होती है। औरत में जो दिक्कत हो सकता है, वो सबसे बड़ा दिक्कत हो सकता है कि उनके अंडाशय में अंडा कम हो सकता है या अंडा बढ़ सकता है। अंडा बढ़ता है, उस कंडीशन को हम लोग PCOD कहते हैं। PCOD का एक नया नाम हो गया है PMOS, तो बधाई सबों को, क्योंकि साइंटिस्ट और बेहतर समझ पाए हैं PMS PCOD की बीमारी को। लेकिन यहाँ भी जो सबसे बड़ा कारण है निसंतानता का, वो लाइफस्टाइल है, और अगर आप जानकार हो जाते हैं तो फिर आप इस बीमारी से भी ओवरकम कर सकते हैं। वही बात करें अगर हम लोग पुरुष के, तो पुरुष भी कारण होते हैं निसंतानता की। अच्छी बात है कि बहुत लोग, बहुत सारे पुरुष के माँ बाप ये बात समझ रहे हैं कि पुरुष भी कारण होते हैं, और पुरुष आकर के अपना भी जांच कराते हैं, ना कि जस्ट अपनी पत्नी को या बहू को आगे ठेल दिया जाता है जांच कराने के लिए। तो पुरुष में भी ये

0: देखा गया है कि उनके शुक्राणु कितने में कमी होती है, कितनों में नील शुक्राणु होता है। शुक्राणु है तो उनका चाल नहीं होता है, या फिर शुक्राणु का बनावट बहुत गड़बड़ होता है, ये बड़ा कारण होता है जिसके कारण निसंतानता हो रही है।
1: बहुत सही बात बताई आपने डॉक्टर श्रद्धा की, पुरुषों को भी सोचना पड़ेगा महिलाओं के साथ साथ, और डॉक्टर के पास दोनों को जाना पड़ेगा। ढेर सारी बातें हैं हाँ, जो अगले महीने से फिर से रविवार के दिन आप ये कार्यक्रम सुनेंगे तो चर्चा होगी, आपके हम फोन कॉल भी आमंत्रित करेंगे। आप जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आज शनिवार के दिन, अगर आपके कोई सवाल हैं तो इस नंबर पर भेजें 9162562266 9162562266। और अब रविवार के दिन आप सुन पाएंगे आकाशवाणी पूर्णिया से शाम 7 बजे से ये कार्यक्रम, आकाशवाणी सासाराम से भी 7 बजे, पटना प्राइमरी चैनल पर ये 6:45, पटना विविध भारती पर रात्रि 9 बजे, और दरभंगा आकाशवाणी से 6:45 पर ये कार्यक्रम ममता का आंचल प्रसारित किया जाएगा। मैं भी यानी राजेश भी होगा, डॉक्टर श्रद्धा भी होंगे, और हमारे तमाम सुनने वाले भी होंगे। बच्चा जिनको नहीं है, है ना, तो पास के डॉक्टर से संपर्क करें। चलने से पहले थैंक यू कहते हैं श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी को, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का वैसे दंपतियों के लिए मौका दिया जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए हैं और अभी भी बच्चा नहीं है। उनसे सिर्फ यही कहेंगे ये बीमारी है और अब IVF पद्धति से आप बच्चा पा सकते हैं। तो मुलाकात होगी जून महीने में, जी हाँ, रविवार के शाम में, है ना। चले नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: हाँ, एखन अपना सब सुन रहा चल में प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। आ देखियो श्रोता लोगन, जे दंपति के बच्चा नहीं छन कोनो एले घबरेबाक नहीं छे, डॉक्टर से सलाह लेबाक चाही आ निश्चिंत पूर्वक धैर्य धऽ कऽ रहबाक चाही। आ निश्चित रूप से जिनका कोनो गड़बड़ी नहीं छन तब बच्चा निश्चित रूप से हेतन, उनका आंगन में जरूर किलकारी हेतन। आब हमर सबके कार्यक्रम गुनगुनाइत मन समेटबाक बेर भऽ गेलै, तऽ एकरा आब समेटी एहि दलान पर कार्यक्रम खेती गृहस्थी पसारी। सबसे पहिने किसान भाई लोकनिक कार्यक्रम में स्वागत करै छियनि, नमस्कार करै छियनि। आइ चर्चा करब किसान भाई लोकन जे खाद आ उर्वरक के जे प्रयोग हम सब करै छी कोनो फसल में, तो ओकर समुचित उपयोग करबाक चाही। किया तो कोनो फसल जखन हम सब लगबै छी तऽ बिना खाद उर्वरक के तो होइ या नहि, ओहिमे तऽ देबो पड़ैया, मुदा ओ कोना दी एहि प्रसंग से ध्यान रखबाक चाही। फसल मे खाद उर्वरक व्यवहार कोना करी ई बहुत महत्वपूर्ण गप अछि, तैं एकरा व्यवहार केना करी तखने मनोनुकूल उत्पादन भऽ सकैया, जो व्यवहार ओकर समुचित रूप सँ करब। तऽ किसान भाई लोकनि अपना सब पोषक तत्वक आपूर्ति माटि मे जैविक खाद ओ रासायनिक उर्वरक माध्यम सँ करैत छी। फसलक अनुसारे अलग अलग मात्रा मे पोषक तत्वक आवश्यकता होइत अछि, जकरा लेल खाद उर्वरक व्यवहार करबा मे से एकर मात्रा और व्यवहारक विधि पर ध्यान राखब बड़ आवश्यक होइत अछि। खाद ओ उर्वरक व्यवहार सदैत माटिक जांच करा कऽ तखन करबाक चाही जे ओहिमे कोन माटि कोन खाद देबाक चाही, कथीके ओहिमे कमी अइ। उर्वरक व्यवहार के संग संग जैविक खादक निर्धारित मात्रा मे मिला कऽ ओकर व्यवहार करब लाभकारी होइत अछि। माटिक जांच द्वारा माटि मे उपलब्ध पोषक तत्वक मात्रा, माटिक श्रेणी और एकर प्रतिक्रियाक ज्ञान भऽ जाइत अछि, जाहिसँ उर्वरक प्रकार ओ मात्रा निर्धारित करबा मे हमरा लोकन के सहायता भेटित अछि। स्नेही किसान भाई लोकन, उर्वरक व्यवहार बिया के 5 से 1.5 इंच अलग पट्टी के रूप में करब बेसी लाभकारी होइत अछि। जो स्फूर उर्वरक दाना वाला होइत अछि तो बेसी निक मानल जाइत अछि। अम्लीय चूनायुक्त लवणीय और क्षारीय माटि मे स्फूर के व्यवहार पट्टी में करब बेसी लाभदायक होइत अछि। जहाँ तक संभव होवे उर्वरक के व्यवहार बिया सँ संपर्क नहि हेबाक चाही, उर्वरक के ई ध्यान रखबाक चाही ओकर व्यवहार करबा काल। नेत्रजनीय उर्वरक व्यवहार करबा काल ई ध्यान राखी जे एकर पूरा मात्रा एकै खेप में नहि व्यवहार करबाक चाही, अपितु 2 से 3 खेप में खेत में एकर व्यवहार

0: करब बेसी नीक मानल जाइत अछि। एतबे नहि, बेसी बलुआही माटिमे पोटासक मात्रा एक बेर नहि दू खेपमे देबाक चाही, मुदा फास्फोरस केर व्यवहार एकै बेरमे करबाक चाही। अमोनियम सल्फेट अथवा यूरिया लगातार व्यवहार अम्लीय उदासीन माटिमे कयलासँ 5-6 वर्षक अंतर पर चूनक व्यवहार सेहो आवश्यक भऽ जाइत अछि, जकर मात्राके निर्धारण माटिक अम्लीयता के आधार पर से करबाक चाही। अमोनियम सल्फेट के व्यवहार माटिक अम्लीयता के आधार पर करबाक चाही आ खेतक सतह पर यूरिया के व्यवहार नहि कऽ कऽ कम से कम 1.5 इंच नीचा देबाक चाही। आ नीमक खल्ली मिश्रित अथवा लोह आधारित यूरिया के व्यवहार करब बेसी लाभदायक होइत अछि। फसल पर यूरिया घोलक छिड़काव सेहो कयल जा सकैत अछि, मुदा ई ध्यान रहे जे घोलक सांद्रता 2-3% से बेसी नहि रहबाक चाही। फसल में रासायनिक उर्वरक उपलब्धि के बढ़ेबाक लेल और एकर बहाव के कम करबाक लेल रासायनिक उर्वरक घोल के बनाकर एकरा लकड़ीक कुन्नी अथवा गंधकीय प्रेसमेड में यूरियाक दाना व जैविक पदार्थ के 1:2 अनुपातक आधार पर एकरा मिला कर तखन सुखा कर व्यवहार करब बेसी लाभप्रद मानल जाइत अछि। किसान भाई लोकन, यूरिया के चून रहित नमी वाला माटिक संग संग 1:5 अनुपात में मिला कर गोली बना ली और गोली के 24 घंटा धरि छाहरि में सुखा ली, एकर बाद धानक खेत में जड़ लग माटि में धऽ कऽ दाबि दियक। स्प्रेक व्यवहार जँ धान आ गहूँम फसिल चक्र में एक बेर करबाक रहे तखन गहूँम में करब बेसी लाभदायक होइत अछि, कारण एकर प्रभाव धान पर सेहो पड़ैत अछि। आ बिहारक माटि में गंधक केर कमी पाओल जाइत अछि, जकर पूर्तिक लेल प्राय 20-40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गंधक तेलहनी ओ दलहनी कंद मूल वाला फसलक लेल व्यवहार कऽ सकैत छी। तऽ किसान भाई लोकनि, फिर आगू गप सप करब, आब चली अपना लोकनि किछु मनोरंजन दिस। तऽ पहिने किछु मनोरंजन भऽ जाए, गीत नाद सुनि ली तहन काज करबामे कनि मोन लगै छै, तऽ आउ ने सुनै छी हमरा लोकनि ई लोकगीत।
1: जय

हाँ, तऽ एखन हमसभ हेमकान्त झाके स्वरमे ई नचारी सुनै छलहुँ हँ। आशा करै छी हमर किसान भाइ लोकनिके खूब नीक लागल हेतनि। आ किसान भाइ लोकनि, जखन मौसमके जानकारी अहाँ लोकनिके रहैए तऽ ओहि हिसाबसँ अहाँसभ अपन अपन काजके समेट लै छी। मनमे कनिको ई उहापो नहि होइए जे हड़बड़ा जायब, तऽ सभसँ पहिने तऽ मौसमके एक झलक सुनि ली। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार भारत मौसम विज्ञान विभागके सहयोगसँ ई पूर्वानुमान जताओल जाइत अछि जे अगिला 48 घण्टामे उत्तर बिहारक जिला सभमे बरखाक सम्भावना बनल रहत। एहिके बाद मौसमके मुख्यतः शुष्क रहबाक सम्भावना अछि। अधिकतम तापमान 35 लऽ कऽ 36 डिग्री सेल्सियस, जखनकि न्यूनतम तापमान 25 लऽ कऽ 27 डिग्री सेल्सियसके बीच रहबाक सम्भावना अछि। सापेक्ष आर्द्रता भिनसरमे 85 लऽ कऽ 90% धरि, ओ दुपहरियामे 35 लऽ कऽ 40% धरि रहबाक सम्भावना अछि। अगिला 48 घण्टामे जाहि क्षेत्रमे बरखा होयत ओतय हवाके गति 20-30 किलोमीटर प्रति घण्टा भऽ सकैत अछि। ओना बेसी ठाम 8 लऽ कऽ 12 किलोमीटर प्रति घण्टाके गतिसँ पूर्वा हवा चलबाक सम्भावना अछि। तऽ ई छल हमर सभके मौसम पूर्वानुमान। आ मौसमके हिसाबसँ किसान भाइ लोकनि अपन काज समेट लै छथि, ई योजना बना लै छथि। आ देखबे कऽ रहल छी एखन मौसम जहन कह रहल अइ कतहु कतहु हल्लुक पानि बरखा, तऽ किसान भाइ लोकनि से साकांक्ष रहथि, काज खेतमे जखन करै छथि तऽ ई ध्यान रहनि जे मौसम जँ खराब होइ छै तऽ अपन खेतमे काज नहि करथि, कतहु अपन शरण लऽ लेथि, अपन घर चलि जाथि, या आने ठाम कोनो घर द्वार छै तऽ ओतऽ शरण लेथि, जतऽ जखन ठनका ठनकाके सम्भावना रहैए तऽ खेतमे काज कदापि नहि करथि। आब मौसम, आब किसान भाइ लोकनि एकटा पहिने एकटा गीत सुनि लिअ, ओहिके बाद फेर आगू अपनासभ गपशप करब। तऽ सुनि लिअ पहिने ई लोकगीत।

एखन किछु प्रमुख काज अइ जे किसान भाइ लोकनिकेँ ध्यान देबाक चाही कलबर, जेनाकि शरदकालीन कुसियारके फसलके नित्यजन खाद ओ शेष मात्रा दऽ कऽ माटि चढ़ा देबाक चाही, ओकर बेर भऽ गेलै। आ बसन्तकालीन कुसियारके फसलके से कमौनी निकौनी कऽ कऽ से उपरिवेशनवला काजके समेट लेबाक चाही। आ किसान भाइ लोकनि गरमा मूँगके से एखन तैयार भऽ गेल हुआ तऽ ओकरा तोड़ि लेबाक चाही आ ओकरा ओ ई काज सम्पन्न कऽ लेबाक चाही। एकर उपरान्त हरियर खादके लेल माटि पलटवला हरसँ नीक जकाँ जोति कऽ ओहिमे गाड़ि देबाक चाही। मूँग उड़ीद आ राहरिके मिश्रित खेती सेहो अहाँ लोकनि कऽ सकैत छी। आ मूँगफली तिल आ अण्डीके से बाउग करबाक कयल जा सकैए, ओकर बेर भऽ गेलै। आ बाउग मुदा बाउग करऽसँ पहिने बीजोपचार निश्चित रूपसँ कऽ लेबाक चाही, तखने बाउग करबाक चाही, बिना बीजोपचार केने बाउग कखनो नहि करबाक चाही। किसान भाइ लोकनि ग्रीष्मकालीन तरकारी सबमे कमौनी निकौनी आ कीट व्याधि सबसँ सुरक्षाके व्यवस्था करऽपर ध्यान देबाक चाही। आ बरसाती तरकारीवला फसिलमे जे अखन लगा सकै छी, जाहिमे कि प्याजके नर्सरी लगा कऽ बीया लगा देबाक चाही। बरसाती तरकारी सबमे फफूंदनाशक दवाइके सेहो छिड़काव कऽ सकै छी। आ किसान भाइ लोकनि चलैत चलैत एकटा ई फसिल गीत सुनि लै छी हमसभ।

हाँ एखन अपनासभ सुनै छलहुँ हेँ ई फसिल गीत बनि गेल बलमा किसान, पार्वती मिश्राके स्वरमे। हाँ किसान भाइ लोकनि तऽ ठीके, किसान भाइ लोकनिपर हमरा लोकनिके गर्व अछि जे किसान भाइ लोकनि जे फसिल उपजबै छथि तखने हमसभ ओ ग्रहण करै छी। आओर जँ किनको बलमा किसान छथिन तऽ हुनका एहिपर गौरव हेबाक चाही, नहि कि हुनका अयला मोनमे एहन जे नहि ओ किएक नहि बाहर गेला नौकरी कयला, किएक तऽ किसाने भाइ लोकनिसँ तऽ सभ काज होइए। आब हमरसभके कार्यक्रम खेती गृहस्थी समेटबाक बेर भऽ गेलै, तऽ आब किसान भाइ लोकनिसँ चलबाक आज्ञा लै छी। नमस्कार।

किसान भाइयों के लिए ये था हमारा कार्यक्रम खेती गृहस्थी। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण पटना केंद्र से होगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
1: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी

0: जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222504।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बिहार का किया विशेष उल्लेख, सत्तू और जरदालू आम की चर्चा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में विक्रमशिला पुल और गंगा पथ परियोजना का किया निरीक्षण, 203 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आईपीएल क्रिकेट 2026 का फाइनल आज, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। और मौसम विभाग ने आज 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। मन की बात कार्यक्रम की यह 134वीं कड़ी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमूर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की अपील की है।

0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फाजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और कार्यक्रम में विशेष तौर पर बिहार का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में भीषण गर्मी से बचाव के लिए बिहार के पारंपरिक पेय सत्तू तथा प्रसिद्ध जरदालू आम का उल्लेख करना राज्य की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करता है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उत्पादों और जनजीवन से जुड़े विषयों का उल्लेख राज्यवासियों के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। इधर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम को सुना। श्री सिन्हा ने इस कार्यक्रम को देशवासियों के लिए प्रेरणादायक बताया।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात के अंदर लोगों के प्रेरणा देने का, खेल से खिलाड़ी, खेत से खलिहान, स्वच्छता और राष्ट्र गौरव के सारे विषय पर इन्होंने बताए हैं, लोगों को प्रेरणा मिलता है। सभी युवा जो नए आदर्श बेस्ट प्रैक्टिस की चर्चा होती है, इससे हमारे लोगों का मनोबल बढ़ता है, राष्ट्र प्रथम का भाव जगता है।
1: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और विधान पार्षद अरविंद शर्मा समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। डेयरी, पशुपालन और मत्स्य मंत्री नंदकिशोर राम ने पश्चिम चंपारण के रामनगर में और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने वाल्मीकि नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ इस कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज भागलपुर में 203 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने विक्रमशिला पुल और गंगा पथ परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही विक्रमशिला सेतु पर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा।
3: नवंबर को मैं स्वयं आऊंगा और इस पुल को फिर से चालू करूंगा। अभी टेम्पररी चालू हो, और दूसरा जब तक ये पुल चालू नहीं हो तो प्राइवेट गाड़ी हो या आम लोग हो, उसको मुफ्त में इस तरफ से उस तरफ ले जाने की सारी व्यवस्था सरकार के।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा के निलंबन के बाद बिहार के प्रशासनिक हलकों में हाई प्रोफाइल ठेकेदार

ऋषु रंजन सिन्हा उर्फ ऋषु श्री के कारनामों की चर्चा तेज हो गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि सरकार में बैठे शीर्ष अफसरों के साथ ऋषु श्री का नजदीकी रिश्ता था। अधिकारियों से अच्छे संबंध का लाभ लेकर करोड़ों के सरकारी टेंडरों अपनी मर्जी से चहेतों को फायदा पहुंचाता था। जांच एजेंसियों ने ऋषु श्री पर शिकंजा कसा तो मामला सामने आया। गौरतलब है कि योगेश कुमार सागर 2017 बैच के और अभिलाषा कुमारी शर्मा 2014 बैच की बिहार कैडर की आईएएस हैं। श्री सागर उत्तर प्रदेश के बरेली और अभिलाषा कुमारी शर्मा बिहार के नवादा जिले की रहने वाली हैं। दोनों अधिकारी बिहार सरकार में शीर्ष पदों पर कार्य कर चुके हैं। सरकार ठेकों में हेराफेरी के मामलों में इससे पहले जांच एजेंसियों ने आईएएस संजीव हंस, बिहार प्रशासनिक सेवा के मुमुक्षु चौधरी, भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारिणी दास, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोप में दो आईएएस अधिकारियों का निलंबन मुख्यमंत्री

0: में इससे पहले जांच एजेंसियों ने आईएएस संजीव हंस, बिहार प्रशासनिक सेवा के मुमुक्षु चौधरी, भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारिणी दास, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोप में दो आईएएस अधिकारियों का निलंबन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की गई यह बड़ी कार्रवाई है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। इधर विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भागलपुर में भाजपा द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता सरकार और संगठन के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इस अवसर पर भागलपुर विधायक रोहित पांडे, पीरपैंती विधायक मुरारी पासवान, विधान पार्षद लालमोहन गुप्ता और डॉक्टर एनके यादव सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। अररिया जिले में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर अलग अलग क्षेत्रों से 900 लीटर देशी विदेशी शराब के साथ 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले में साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। शेखपुरा जिला में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा न्यायालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। शेखपुरा जिला के करंडे थाना पुलिस ने एक गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्तौल, 1 जिंदा कारतूस और 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर रंगदारी मांगने और मारपीट करने समेत कई अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं। प्रदेश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं 37.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है।
1: दिनांक 1 जून उत्तर पूर्व भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और मेघ गर्जन वज्रपात की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
0: जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी विधान परिषद चुनावों में एनडीए सभी 10 सीटों पर विजय हासिल करेगा।
2: उम्मीदवार को लेकर जो है शीर्ष नेतृत्व में चर्चा हो रही है, उम्मीदवार तय मंथन किया जा रहा है, जल्द ही हम लोग सार्वजनिक करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने 5 सीट राज्यसभा का चुनाव जीते थे, उसी तरह 10 सीट जो है विधान परिषद का चुनाव जीतेंगे।
0: आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज निवर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच हो रहा है। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बॉलिंग का फैसला किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बिहार का किया विशेष उल्लेख, सत्तू और जरदालू आम की चर्चा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में विक्रमशिला पुल और गंगा पथ परियोजना का किया निरीक्षण, 203 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आईपीएल क्रिकेट 2026 का फाइनल आज, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कैमूर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।
2: कैमूर जिले में बीते कुछ दिनों से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। अचानक मौसम में आए बदलाव से एक तरफ जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। आंधी पानी के दौरान तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने से कई इलाकों में कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। वहीं आंधी की वजह से जिले के विभिन्न हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। बीते दिनों जिले में वज्रपात की घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई थी। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे नहीं रहने की अपील की है। इधर समय समय पर हो रही बारिश के कारण जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को मौसम में आए इस बदलाव से काफी राहत मिली है। इधर जिले के किसानों ने रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होते ही खेतों में धान का बिचड़ा डालकर खरीफ फसल की खेती की शुरुआत कर दी है। कृषि विभाग ने इस बार जिले में 1,40,000 हेक्टेयर भूमि में धान की रोपनी का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि बिचड़ा डालने के लिए किसानों को अनुदानित दर पर उन्नत प्रजाति के धान का बीज बहुत जल्द मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल की खेती के लिए किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक भी उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री कुमार ने किसानों से अपील की है कि विभाग द्वारा निबंधित दुकानों पर यदि निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री की जाती है

0: इसकी सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
1: यदि कोई दुकानदार निर्धारित दर से ज्यादा मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करता है तो तत्काल इसकी जानकारी आप कृषि विभाग के पदाधिकारी को दें ताकि इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा सके।
0: राज्य सरकार आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 2 जून को कैमूर जिले में विशेष सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शिविर में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जिले के दौरे पर आने की संभावना है। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला ने माँ मुंडेश्वरी धाम सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा का जायजा लिया। इधर जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं को त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी कार्यालयों में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार सह जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर अपनी समस्याएं रख रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा बीते शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार में कुल 16 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कृषि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विकसित भारत समृद्ध बिहार योजना के तहत किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए जिले में फार्मर रजिस्ट्री का विशेष अभियान शुरू किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि 12 मई से शुरू किया गया यह अभियान आगामी 30 जून तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान जिले के सभी वसुधा केंद्रों पर किसानों को निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि किसान अपने पंचायत के कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार एवं राजस्व कर्मचारी से संपर्क स्थापित कर आसानी से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कैमूर जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस क्रम में जिले में 346 दुर्लभ एवं प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों की पहचान की गई है। मिशन के तहत इन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण पर उन्हें संरक्षित किया जाएगा ताकि भावी पीढ़ियों के लिए इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तकरण छात्र योजना के तहत जिले के 127 दिव्यांगों को बैटरी संचालित साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। बीते दिनों जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने समाहरणालय में आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक में दिव्यांगजनों द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान डीएम ने 127 पात्र दिव्यांगजनों के आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की, जिन्हें शीघ्र ही बैटरी संचालित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। कैमूर जिले में बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग भभुआ शहर स्थित जगजीवन स्टेडियम, दरगाहों एवं मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा की तथा एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने भी बकरीद के अवसर पर अपने पैतृक गाँव नौघरा की मस्जिद में नमाज अदा की। वहीं त्योहार को लेकर जिला प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 176 स्थानों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई थी।
2: अभी आप सुन रहे थे कैमूर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।
3: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। इस समय शाम के 7:52 हुए हैं। समय हो चला है फिल्म संगीत का। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और साथियों का गाया ये गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म देश प्रेमी से।

संतोष आनंद का लिखा ये प्यारा सा गीत फिल्म थे क्रांति, गायक कलाकार महेंद्र कपूर। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं आज की हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम। इस समय रात के 8 हुए हैं। प्रस्तुत है मन की बात के मैथिली अनुवाद का प्रसारण।
1: हमर प्रिय देशवासी लोकन, नमस्कार। मनक बात में एक बेर फिर अपने लोकन से जुड़ कर हमरा बड़ प्रसन्नता भ रहल अछि। देशक फराक फराक हिस्सा में हमरा देशक लोक देश हित में, समाज हित में एहन अद्भुत चीज सब क रहला अछि, आ जखन हुनका विषय में सुनैत छी तो हमरा एकटा नव प्रेरणा भेटैत अछि। आइ कार्यक्रमक शुरुआत हम एथलेटिक्स में देशक एहने उपलब्धि सँ करब। किछुए दिन पूर्व झारखंडक रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कम्पिटिशन भेल। एहिमे लगभग 800 एथलीट्स भाग लेबाक लेल देश भरि सँ आयल छलाह। एहि क्रम में 4 फराक फराक इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटल। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा आ कुलदीप कुमार, ई संगी लोकनि फराक फराक कैटेगरी में नव रिकॉर्ड बनौलनि। हम सबसँ पहिने तऽ हिनका सबकेँ बहुत बहुत बधाई दैत छियनि। संगी लोकनि, एकटा इवेंट जकर देश भरि में बहुत चर्चा भ रहल अछि, ओ अछि 100 मीटर रेस, 100 मीटर केर दौड़। मात्र 2 दिनक भीतर मेन्स 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बेर टूटल। जे 2 एथलीट्स ई कमाल देखौलनि अछि ओ छथि गुरिंदर वीर सिंह आ अनिमेश कुजूर। हम सोचलहुँ जे एहि बेर मोनक बात में एहि दुनू खिलाड़ी सँ गप कयल जाय। अनिमेश जी नमस्कार। गुरिंदर वीर अहूँ के नमस्कार। सत श्री अकाल।
2: नमस्कार सर।
1: अच्छा भाई, अहाँ तो बहुत पैघ अचीवमेंट केलहुँ अछि। अहाँ सभक जोड़ी सेहो बड कमाल केलक अछि। हम संगीत में तो जुगलबंदी देखने छलहुँ, मुदा चुनौती में आब जुगलबंदी होइत अछि। जे एक बेर एकटा चुनौती दिया फिर दोसर ओही चुनौती के उठा ले फिर तेसर बेर कऽ ले, बड़ इंटरेस्टिंग विषय रहल अछि अहाँक। हम चाहे छी जे मोनक बात के श्रोता के पता चलनि जे अहाँ सभक विषय में हुनको जानकारी होनि। अहाँ सब जे पराक्रम केलहुँ अछि ओकर पता चले।
2: नमस्ते सर, हमर नाम अनिमेश कुजूर छी। हम 200 मीटर आ 400 मीटरक नेशनल रिकॉर्ड होल्डर छी आ हम छत्तीसगढ़ सँ बिलोंग करै छी सर, आ एखन हम उड़ीसा सँ खेलाइत छी। हम लास्ट ईयर एशियन मेडल आ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लऽ कऽ अयलहुँ आ हम एथलेटिक्स 2021 सँ चालू केलहुँ जखन हम इसकुल सँ पास आउट भेलहुँ। हम सैनिक इसकुल अम्बिकापुर सँ पास आउट छी आ हम पहिने फुटबॉल खेलायल करैत छलहुँ, आ हमर माता पिता कोविडक समय हमरा थोड़े बहुत छूट दैत छला जे तू जाकर बाहर दौड़ ले आ खेला ले, तँ जखन कोविड समाप्त होमय लागल तँ हमर फुटबॉलक जे मित्र सब छला ओ लोकनि हमरा कहलनि जे स्टेट मीट होइवला छै, जाकर तू पार्टिसिपेट कर, आ हम पार्टिसिपेट केलहुँ। आ हमरा बुझल नहि छल जे ओतहिसँ नेशनल लेवल के सिलेक्शन छै। हम ओतहिसँ नेशनल में सेलेक्ट भेलहुँ आ आइ हम इंडिया के रिप्रेजेंट कऽ रहल छी इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी की अछि?
3: नमस्ते सर,

0: हमर नाम गुरिंदर वीर अछि आ हम इंडियन नेवी में पेटी अफसर छी। इंडिया के सबसे तेज स्प्रिंटर छी। एखन हम 100 मीटर में 10.09 के नेशनल रिकॉर्ड बनेलहुँ अछि आ हम पहिल इंडियन छी जे 10.1 के बैरियर के नीचा दौड़लहुँ अछि आ हम कोशिश कऽ रहल छी जे हम ट्रैक आ वर्दी में सेहो अपन देशक सेवा करी। हमर फादर आ ग्रैंडफादर दुनू स्पोर्ट्स करै छलाह। हमर इंडिया के कल्चर छी जखन कोनो पावनि होइत अछि जेना दियावाती जेना नव साल तऽ हम अपन घरक सफाई करै छी तऽ हम अपन फादर के ट्रॉफी सभक आ मेडल सभक सफाई करै छलहुँ
1: तऽ हमरा ओ बड्ड नीक लागै छल तऽ हम बड़ खुश होइ छलहुँ।
0: तखन जखन हम कोनो ट्रॉफी साफ करै छलहुँ तऽ हम पूछै छलियनि जे ई ट्रॉफी कतौ जीतलहुँ, ई मेडल कतौ जीतलहुँ, ई फोटो कहिया के अछि। तखन फेर ओ अपन खिस्सा सुनबै छलाह कि हम एतौ खेलाइ गेलहुँ, हम ई नेशनल मेडल जीतलहुँ, हम अपन टीम के एहिमे जीतेलहुँ।
1: तखन फेर हमहुँ
0: हुनका कहै छलियनि जे हमरो कोनो स्पोर्ट्स करबाक अछि। ओ रनिंग करबाक लेल जाइ छलाह मॉर्निंगमे तऽ हम हुनका कहऽ लगलियनि जे हमरो लऽ कऽ जायल करू अपना संग, तऽ हमरा लऽ कऽ जाय लगलाह। तऽ ओ जे अपन गेम स्पोर्ट्समे सीखने छलाह से हमरा सिखाबऽ लगलाह तऽ हमर इंटरेस्ट बनऽ लागल। हम
1: उसैन बोल्ट केर
0: वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटैत देखलहुँ। तऽ एकटा स्टोरी अछि एहन फनी, हम एखन टीवी देख रहल छलहुँ तऽ मम्मी हमर टीवी बंद कऽ देलक जे एखन बेटा पढ़बाक टाइम भऽ गेल अहाँ पढ़ू। तऽ हम कहलियनि जे ठीक छै अहाँ हमरा टीवी नहि देखऽ दै छी,
1: एक दिन एहन आयत अहाँ हमरा टीवी में ताकब
0: जे देखू ओ गुरिंदर दौड़ रहल अछि तऽ हमरो खुशी होयत। जखन हमर माँ हमरा टीवी पर दौड़ैत देखती।
2: वाह वाह वाह, बड़ सनगर गप अछि भाई अहाँ के।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली छै सर। फिर हमर फादर ओहो वॉलीबॉल खेलाइ छलथि, घरक प्रॉब्लम केर कारण ओ अपन स्पोर्ट्स छोड़ देलनि। हुनकर जे सपना पूरा करे वाला रहि गेलनि तऽ ओ हमरा भीतर ओ सपना देखलनि, भाई हमर बेटा ओ सपना पूरा करत। तऽ हम हुनकासँ गप करै छलहुँ, फेर सुनै छलहुँ मिल्खा सिंह एतेक परिश्रम करै छलाह। हम हुनका कहै छलियनि जे हमहूँ अहाँके एक दिन सपना पूरा करब। तऽ कहै छलाह सपना पूरा एना नहि होइत छैक, ओहि लेल बहुत हार्ड वर्क करऽ पड़ै छैक, परिश्रम करऽ पड़ै छैक। मिल्खा सिंह जी खूनक उल्टी करै छलाह, रौदमे दौड़ै छलाह, भरि भरि दिन ट्रेनिंग करै छलाह। तऽ ओ चीज सब हमरा इंस्पायर करै छल, हमर फादर हमरा इंस्पायर करै छलाह जे हम दौड़ब तऽ अपना देशक लेल, देशक लेल मेडल आनू, जीतू। आ इहो छल जे जखन हम इवेंट चूज केलहुँ 100 मीटर तऽ सब हमरा कहै छल जे भाई 100 नहि करऽ, 100 इंडियन केर इवेंट नहि छै, इंडियन केर बॉडी 100 मीटर लेल नहि बनल छै। तऽ हमर फादर सदिखन बजै छलाह जे एखन गुरिंदर हम ई चूज केलहुँ अछि, हम एहिसँ पाछू नहि हटब। जे हमरा कहै छथि जे भाई हम नहि कऽ सकब, हम ओकरा कऽ कऽ देखेबै आ तू कऽ कऽ देखेमा, हमरा तोरा पर भरोसा अछि। तऽ ओ भरोसा जखन हमरा पर हमर फादर कयलनि तऽ हम ओहि भरोसके अपन हिम्मत बनाकर चललहुँ। आ आइ हर इंडियन कहै छथि जे भाई इंडियन स्प्रिंट कर।
2: देखू अहाँ दुनू बड़ पैघ कमाल केलहुँ अछि आ मात्र 2 दिनक भीतर अहाँ दुनू 3 बेर नेशनल रिकॉर्ड तोड़लहुँ अछि 100 मीटर रेसमे दौड़ब। जेना गुरिंदर वीर कहलनि जे लोक कहै छथि जे भारतक लोकक तऽ शरीर एहि काज लेल छैहे नहि, एतेक कठिन होइतहुँ अहाँ काज केलहुँ। तऽ ई दुनूसँ हम जानऽ चाहब आ मोनक बात केर श्रोता सेहो सुनऽ चाहता जे कोन साहस छल, की जिद्द छल, कोन सोच छल आ कोना कऽ रहल छलहुँ, ई कतेक कठिन होइत अछि।
0: जी सर, हम गुरिंदर
1: हम जखन

0: स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल छल, बहुत बेर डाउट सेहो आयल जे हम सही कह रहल छी, हम सही चूज केलौं, किएक त सब बेर अहाँ नहीं जीते छी, कखनो कखनो अहाँ सीखे छी। जखन हम हारे छलौं, जखन हम सही परफॉर्मेंस नहीं करे छलौं, कोनो इंजुरी आबि जाए छल तो हमर घरक लोक हमर सपोर्ट करे छला जे भाई कोनो बात नहीं, एक दिन खराब चल गेले, एक साल खराब चल गेले तो ऐसा जिंदगी खराब नहीं होइ छे, सपना देखब नहीं छोड़ी। तो हमर कोच सेहो हमरा ई सिखौलन जे यदि तू नहीं कर मैं तो क्यों नहीं कह सकत। तो एना जखन हमर कम्युनिटी, हमर लग पासक लोक हमरा उत्साहित करे छथि तो हमर कखनो ओ मोटिवेशन नहीं टूटैत अछि।
1: अनिमेश जी,
2: सर हमरा त सब केओ कहे छल जे जखन हम 2021 में चालू केलहुँ एथलेटिक्स तो हमरा कहित छला जे देखू ई नव फील्ड अछि, अहाँ कह सकब कि नहीं, तो हम बजलहुँ जे आब हम एही फील्ड में घुसल छी तो करबे करब। हमर पापा सेहो सदिखन हमरा कहित छला जे तू एही फील्ड में घुसल छ तो कखनो पाछू मुड़ के देखियो नहीं, किएक तो सोचैत त सब छथि जे ई करबाक अछि ओ करबाक अछि, लेकिन क बहुत कमे देखबैत छथि। तू बस एही फील्ड में घुसल छ तो एही पर अटल रहियाँ, एही पर आगू बढ़वाक छे, तोरा सबटा फैसिलिटीज सब चीज हम सपोर्ट करबो, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज हम सब करब, बस तू मेहनत कर आ इंडिया के देखा जे इंडियंस सेहो दौड़ सकैत अछि, किएक त ई हमरो लोक कहे छल जे इंडियंस के जीन्स एहन नहीं छे जे ओ सब 10.1 के भीतर दौड़ सकैत अछि या कियो ओ स्प्रिंट कऽ सकैत अछि, मुदा एखन हम दुनू एहन साबित केलहुँ जे इंडियंस सेहो कऽ सकैत अछि, एहन कोनो हार्ड नहीं छै हमरा लेल, हमहूँ सब किछु कऽ सकै छी। तो सर ई सब चीज हमरा बहुत मोटिवेट करैत अछि आ जेना जेना हम ट्रेनिंग कऽ रहल छी आ टाइमिंग तोड़ रहल छी, अपना आ बाकी इंडियंस के सेहो ई चीज देखा रहल छी जे इंडियंस सेहो कऽ सकै छथि आ हम और करब सर एखन। आ एखन हमरा दुनूक सेलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लेल सेहो भेल अछि, तऽ ओतय अपकमिंग कम्पिटिशन में हम और नीक प्रदर्शन करब।
1: अच्छा देखू, हमरा मन में सेहो एकटा कौतूहल अछि आ लोको कहतनि हम सुनने छी जे अहाँ दुनू गोटे नीक मित्र सेहो छी, अहाँ दुनू किछु ठानि लेने छलहुँ जे तू हमर रिकॉर्ड तोड़ले तो हम तोहर रिकॉर्ड तोड़ दियो की। पहले अनिमेश बताओ।
2: सर जी, पहिने रिकॉर्ड 10.18 के छल जे हमरे छल आ तखन ओकरा गुरिंदरवीर भैया सेमीफाइनल में तोड़लन 10.17 कऽ के, आ हम फेर से ओकरा सेमीफाइनल 2 में 10.15 कऽ के तोड़ देलहुँ। तो ओही समय जखन हमर सेमीफाइनल भेल छल तो हम दुनू खुश छलहुँ जे हाँ चलू ठीक छे, आई रिकॉर्ड टूटल आ चलू हम दुनू तोड़लहुँ, किएक तो ओही समय कम्पिटिशन में राइवलरी रहित अछि, मुदा हम दुनू ठानि के रखने छलहुँ पहिने सँ। ओही सँ पहिने हम सब सऊदी अरब सेहो गेल छलहुँ कम्पिटिशन करबाक लेल, तऽ ओतय सेहो हम दुनू रूममेट्स छलहुँ, तऽ हम दुनू ओतहु गप करैत छलहुँ जे इंडिया के स्प्रिंटिंग के आगू लऽ के जेबाक छै आ हमरे हाथ में अछि ओ चीज, हम जे करब वह बाकी के मोटिवेट करत।
1: गुरिंदर वीर की कह चाहब?
0: हम दुनू निर्णय केने छलहुँ जे हम दुनू नीक दौड़ब, तो कखनो सर एक दोसर के जरूरत होइत छैक तो एक दोसरक संग ठाड़ होइत छी, जेना एखन रिकॉर्ड करबा से पूर्व जखन हम रिकॉर्ड केलहुँ फिर अनिमेश कयलनि, तऽ जखन हम वार्म अप कऽ रहल छलहुँ तो हम अनिमेश के बता रहल छलहुँ एखन अनिमेश ओ ब्लॉक सही अछि, ओहि पर जाकर बैसू, ओतय स्ट्राइड कऽ लिअ, हम वार्म अप एतय करब, एतय वार्म अप सही होयत तऽ एक दोसरक मदद करैत अछि, एक दोसरक मदद करै छी तऽ दोसर सेहो इम्प्रूव करैत अछि, हमहूँ इम्प्रूव करै छी, तऽ दोस्ती सेहो चाही। मुदा सर हम ग्राउंडक बाहर छी, कम्पिटिशनक बाहर छी तऽ हम दोस्त छी, जखन हम ग्राउंड में चलि जाइ छी तऽ हम एक दोसरक कम्पिटिटर भऽ जाइ छी, तऽ ई होइत अछि

0: हम हिनका से फास्ट दौड़ब, हम हिनका से फास्ट भागब।
1: देखू अहाँ सब जे स्पर्धा केलहुँ अछि ने, ओ देशक मान बढ़ेबाक लेल केलहुँ अछि, देशकेँ भविष्यमे एहि स्थान पर पहुँचेबाक लेल केलहुँ अछि आ एकटा पॉजिटिव स्पिरिटसँ केलहुँ अछि। आ हम मानैत छी जे अहाँक जे ई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अछि, खेलब सेहो अछि, एक दोसराकेँ चुनौती सेहो देब अछि आ फेर आगू निकलबाक लेल प्रयास करब अछि आ फेर आगू जेबा लेल एक दोसराक सहयोग करब अछि। ई अद्भुत काज केलहुँ अछि अहाँ सब, हमरा दिससँ अहाँ सबकेँ बहुत बहुत बधाई, हमर बहुत बहुत शुभकामना आ अहाँ देशक नाम सेहो रोशन करब, ई हमरा पूरा विश्वास अछि। अहाँ एहिना मेहनत करैत रहू, बहुत प्रगति होयत, बहुत बहुत शुभकामना हमर।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया अहाँके,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, एखन देशक अधिकांश भागमे बहुत गर्मी पड़ि रहल अछि, तिखगर रौद, गर्म हवा, एहन मौसममे अपन ध्यान राखब बड्ड जरूरी अछि, पानि पिबैत रहू, रौदमे यदि निकलऽ पड़ै तऽ थोड़ेक सम्हरि कऽ निकलू। एहि दिशामे सरकारक भिन्न भिन्न विभाग सब जे गाइडलाइंस जारी कयलक अछि ओहो बिसरब नहि। संगी लोकनि, एतय गर्मीसँ लड़बाक तरीका कतेको बेर भनसाघरमे सेहो भेटैत अछि, अहूँसभ देखने हैब जेना जेना गर्मी बढ़ैत अछि ओहिना ओहिना घरक भानसक स्वाद बदलि जाइत अछि, भानसक प्रकार बदलि जाइत अछि, कतहु मटकीक जल निकलि अबैत अछि, कतहु दही पौरय लगैत अछि तऽ कतहु काँच आम उसनाय लगैत अछि आ फेर शुरू होइत अछि देसी पेय केर दौर। देसी पेयसँ अहूँ परिचित छी, यदि अहाँ उत्तर भारतमे जायब तऽ कतेको ठाम अहाँके भेटत आम पन्ना, कचका आमक स्वाद आ गर्मीसँ उसास सेहो। पंजाब हरियाणा जाउ तऽ लस्सी भेट जायत, बड़का गिलासवला लस्सी। राजस्थान आ गुजरातमे छाछ जेना सब भोजनक सङ्गी बनि जाइत अछि आ बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू केर शरबत, ओकर त बाते की अछि, पेटो भरए तागत सेहो दिए। कोंकण आ गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी। दक्षिण भारत में पानकम, निरमोर, सांबरम आ उड़ीसा में बेलपन्ना। ओ मात्र पेय नहि, भारतक फराक फराक क्षेत्रक परंपराक हिस्सा अछि आ एहिमे एक भारत श्रेष्ठ भारत केर भावनाक झलक सेहो भेटैत अछि। आ एक बात अवश्य ध्यान राखब, एहिमे अधिकांश चीज हमर अपन भनसाघरसँ निकलल अछि, हमर खेत खरिहानसँ निकलल अछि, कोनो पैघ ब्रांडिंग नहि छै, मुदा पीढ़ीक अनुभव ओहिमे सम्मिलित भेल अछि। अहूँ गर्मी क्रममे देसी पेय केर खूब आनन्द लिअ। सङ्गी लोकनि, गर्मी अबिते एकटा आर चर्चा घर घर में शुरू भऽ जाइत अछि आ ओ अछि आम। आम सामान्य चर्चाक विषय होइत अछि, भारत में भरिसक्के कोनो घर होयत जतय गर्मी में आमक गप नहि होइत होय। सब इलाकाक अपन आम, अपन स्वाद, अपन सुगंध। महाराष्ट्र आ कोंकणक हापुस, अल्फांसो, गुजरातक केसर, ई तऽ आम रसक जान छी, उत्तर प्रदेशक दशहरी आ हमर काशी केर नेंगरा। ओना नेंगरा आमक एकटा विशेष बात होइत अछि, पकला के बाद ओकर रंग कतेको बेर हरियरे रहैत छैक। बिहारक जरदालू, जकर सुगंध दूरे सँ चिन्हय मे आबि जायत। चौसा, मालदह, सब नामक संग लोक सभक याद जुड़ल अछि। दक्षिण भारत जाओ तऽ बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मालगोआ, बंगालक हेमसागर, उड़ीसा आ आंध्र प्रदेशक सुवर्ण रेखा, अर्थात जगह बदलैत अछि, आमक रूप रंग आ ओकर स्वाद सेहो बदलि जाइत अछि। आ संगी लोकनि, आमक ई यात्रा आब गाम सँ ग्लोबल मार्केट धरि सेहो पहुँचि रहल अछि। आइ मोनक बातक माध्यमसँ हम आमक उपजासँ जुड़ल अपन किसान भाई बहिन लोकनिक प्रशंसा करब। अहाँ देशक कृषि अर्थव्यवस्था लेल आम किसान नहि, बहुत विशेष छी, एहिना पसरल रहू। संगी लोकनि, गर्मीक एहि दिनमे एना तऽ स्कूलक छुट्टी सब होइत अछि, मुदा

हम एकटा एहन क्लास केर बात करब जाहिमे अपनेक एडमिशन करबाक मोन करय लागत। संगी लोकनि एकटा स्थिति केर कल्पना करू, एकटा एहन स्कूल जतय बच्चा सेहो अबैत हो, युवा सेहो आ बुजुर्ग सेहो, जतय कोनो फीस नहि होय, कोनो पैघ बिल्डिंग नहि होय, कोनो क्लासरूम सेहो नहि होय आ सबसँ रोचक बात ओतय क्लास धारमे लगैत होय। संगी लोकनि ई कोनो खिस्सा नहि छी, ई एकटा वास्तविक प्रयास अछि। केरलम केर आलुआमे साजी बलासेरिल जी एहने एकटा स्विमिंग क्लब चला रहल छथि। एखन धरि 15,000 सँ बेसी लोक एतय हेलब सीख चुकल छथि। साजी जी दिव्यांग बच्चा सबकेँ सेहो हेलब सिखेलनि अछि। एहि प्रयासक पाछू एकटा पीड़ा सेहो नुकायल अछि। किछु वर्ष पहिने एकटा नाह दुर्घटना, कतेको छात्र लोकनिक मृत्यु भऽ गेल छल। ओ घटना साजी जी के भीतर धरि झकझोरि देलकनि। ओ सोचलनि यदि बच्चा सबकेँ हेलय अबैत रहितै तऽ भरिसक कतेको जान बचि जैतै। बस एतहिसँ शुरू भेल हुनक ई अभियान। संगी लोकनि, साजी वलासेरिल जीक जीवन हमरा सबकेँ एकटा बहुत पैघ सीख दैत अछि। सेवा करबाक लेल बहुत पैघ साधन जरूरी नहि अछि, जरूरी होइत अछि एकटा नीक विचार आ लगातार कयल गेल प्रयास। एकरे दम पर हजारों लोकक जीवनमे परिवर्तन आनल जा सकैत अछि। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, बीतल दिनमे हमरा यूरोपक नीदरलैंड जेबाक अवसर भेटल। ओतय हम कतेको मीटिंगमे शामिल भेलहुँ। एहि क्रममे एकटा एहन क्षण आयल जे प्रत्येक भारतीयकेँ गर्वसँ भरि देलक। नीदरलैंडमे आयोजित एकटा विशेष समारोहमे चोला कालक प्राचीन ताम्रपट्टिका भारत केर वापस सौंपल गेल। ओहि कार्यक्रममे नीदरलैंडक प्रधानमंत्री सेहो उपस्थित छलाह। एहि ताम्र पट्टिका सबकेँ लऽ कऽ हमरा देश विदेश सँ लगातार संदेश भेटि रहल अछि। लोक सब खुशी प्रकट कऽ रहल छथि, गर्व व्यक्त कऽ रहल छथि। दुनिया भरिक तमिल समुदायमे सेहो एकरा लऽ कऽ विशेष उत्साह छनि। संगी लोकनि, एहि ताम्र पट्टिकाकेँ लऽ कऽ लोक सबमे बेस जिज्ञासा सेहो छनि। तैं आइ हम एहिसँ जुड़ल किछु गप अपने लोकनिक संग बिलह चाहै छी। एहिमे 21 पैघ 3 छोट ताम्र पट्टिका सब अछि। ई मुख्य रूपसँ राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपन पिता राजा राज राजा चोला केर एकटा वचनकेँ पूरा करबासँ जुड़ल अछि। एहिमे अनै मंगलम गामक एकटा बौद्ध विहारकेँ दान देबाक उल्लेख अछि। एहि ताम्र पट्टिका सबमे चोला वंशक उपलब्धि सभक सेहो वर्णन भेटैत अछि। एहिसँ भाँज लगैत अछि जे चोला साम्राज्यक समुद्री शक्ति कतेक मजगूत छल। दक्षिण पूर्व एशियाक देश सभक सङ्ग हुनक सम्बन्धक जनतब सेहो एहिमे भेटैत अछि। चोला साम्राज्यक समृद्ध इतिहास आ संस्कृति पर हमरा सबकेँ बहुत गर्व अछि। संगी लोकनि, हमर सरकार भारतक एहन अमूल्य धरोहर सभक संरक्षण लेल लगातार प्रयास कऽ रहल अछि। एहि क्रममे ज्ञान भारतम अभियान केर अन्तर्गत छत्तीसगढ़ केर मल्हारमे सेहो एकटा महत्वपूर्ण खोज भेल अछि। एतय 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिका सब भेटल अछि। ई पांडुवंशी राजवंशक महर्षि बालार्जुनक शासनकालसँ जुड़ल मानल जा रहल अछि। विशेषज्ञ मानै छथि जे ई इंस्क्रिप्शंस 6-7 शताब्दीक छी, अर्थात 1400-1500 साल पुरान ई ताम्र पट्टिका सब प्राचीन ब्राह्मी लिपि आ पाली भाषामे लिखल गेल अछि। एहिसँ ओहि समयक शासन व्यवस्था, धर्म आ संस्कृतिक विषयमे महत्वपूर्ण जनतब भेटैत अछि। संगी लोकनि, हमरा सब भारतीयमे खगोल विज्ञान अर्थात एस्ट्रोनॉमी के लऽ कऽ सदिखन विशेष आकर्षण रहल अछि। हमरा देशमे आइयो सदियों पुरान ऑब्जर्वेटरी उपस्थित अछि। एतय अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज भेल अछि। नेविगेशन होय, पंचांग होय वा हमरा सभक पावनि तिहार, एहि सभक सम्बन्ध आकाश आ तारा सबसँ रहल अछि। हमरा ओतय एस्ट्रोनॉमी सब पीढ़ीमे कौतूहल जगौने अछि।

ओकरा एक्सप्लोरेशन लेल प्रेरित केलक अछि आ आजुक युवा लोकनि मे सेहो एकरा लऽ कऽ बेस उत्साह देखाई दैत अछि। आइ काल्हि अहूँ देखैत हैब देशभरि मे एस्ट्रोनॉमी क्लब सब तेजी सँ लोकप्रिय भऽ रहल अछि। पैघ शहर सँ लऽ कऽ छोट कस्बा धरि, स्कूल सँ लऽ कऽ पार्क धरि एकर गतिविधि सब देखाई दैत अछि। हमरा बंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटीक विषय मे जानकारी भेटल। एतहि ऑब्जर्वेशनल सेशन आयोजित कयल जाइत अछि। ई संस्था ग्रामीण क्षेत्र मे एस्ट्रोनॉमी के लोकप्रिय बनेबाक मिशन सेहो शुरू केलक अछि। खगोल मंडल नामक एकटा टीम 30 घंटाक एकटा बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू केलक अछि। संगी लोकनि, राति मे तारा सबके निहारब अपना मे अद्भुत अनुभव होइत अछि। एस्ट्रो केरला नामक एकटा संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप्स आ वर्कशॉप्स आयोजित करैत अछि। एतौ युवा संगी टेलीस्कोप बनाएब आ स्टार मैप्स केर प्रयोग करब सीखैत छथि। राजकोटक बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब गिर केर जंगल सँ कच्छ केर रन तक अपन एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित केने अछि। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था सेहो एस्ट्रोनॉमी केर सबसँ पुरान संस्थान मे सँ एक अछि। एतय ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज केर संग संग पोथी, पुस्तकालय आ टेलीस्कोप लाइब्रेरी केर सुविधा सेहो छैक। हम आईसैक केर सेहो चर्चा करय चाहब। ई एकटा स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क अछि जे एस्ट्रोनॉमी आ एस्ट्रोफिजिक्स क्लब केँ आपस मे जोड़ैत अछि। संगी लोकनि, अपन हॉबीक लेल समय निकालब आ लगातार किछु नव सीखैत रहब बड़ आवश्यक अछि। हम युवा लोकनि सँ आग्रह करब जे ओ कोनो एस्ट्रोनॉमी क्लब सँ अवश्य जुड़ैथि आ एहि छुट्टी मे कोनो तारा मंडल केँ सेहो अवश्य देखऽ जाथि। संगी लोकनि, मोनक बात कार्यक्रम केँ जे लोकनि टीवी पर देखि रहल छथि, हम हुनका सँ कहबनि एकटा वीडियो अवश्य देखब। ई वीडियो पिछला दिन बहुत चर्चा मे रहल। एहिमे किछु लोक बड्ड धैर्य सँ, बहुत सावधानी सँ एकटा गंगा डॉल्फिन केँ बचेबाक प्रयास कऽ रहल छथि। अपनेकेँ ई जानि कऽ आश्चर्य होयत, एहि पूरा प्रयास मे लगभग 13 घंटा लागल आ अंततः ओ डॉल्फिन बचि गेल। संगी लोकनि, एहिमे बहुत पैघ भूमिका रहल भारतक पहिल गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस केर। ई घटना उत्तर प्रदेशक छी। ओतय एकटा गंगा डॉल्फिन नहर मे फंसि गेल छल। एहन समय मे नमामि गंगे अभियानक अंतर्गत बनल ई एम्बुलेंस ओकरा लेल आशा बनि कऽ पहुँचल। फेर बहुत सावधानी सँ ओकरा बाहर निकालल गेल, ओकर जांच कयल गेल, ओकर इलाज कयल गेल आ ओकर बाद ओकरा सुरक्षित राप्ती नदी मे छोड़ि देल गेल। एक तरह सँ कही तऽ एकटा जीवन फेर अपन घर घूमि गेल। संगी लोकनि, ई डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत विशेष अछि। एकरा एकटा चलंत अस्पताल जकाँ तैयार कयल गेल अछि। एहिमे डॉल्फिन के सुरक्षित रखबाक व्यवस्था अछि, ऑक्सीजनक सुविधा अछि, विशेष स्ट्रेचर अछि, बचावक उपकरण अछि। अर्थात यदि कोनो डॉल्फिन घायल भऽ जाय, नहर मे फंसि जाय वा नदी सँ कटि जाय तऽ तुरंत ओकर मदति कयल जा सकैत अछि। संगी लोकनि, जखन हम गंगा डॉल्फिन के बचबैत छी तऽ हम मात्र एकटा प्रजाति के नहि बचबैत छी, हम गंगाक जैव विविधता के बचबैत छी, नदीक पूरा जीवन तंत्र के बचबैत छी आ अपन आबय वाला पीढ़ी लेल प्रकृति केर एकटा अमूल्य धरोहर सेहो बचबैत छी। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, अहाँ सबमे सँ बहुत लोकक नदी, पोखरि वा इनारक पानि सँ जुड़ल स्मृति अवश्य होयत। ककरो पोखरि मे हेलब मोन होयत, ककरो मित्र लोकनिक संग पोखरि कछेर मे खेलायब, ककरो ओहि माटिक सुगंध मोन होयत। नेनपनक एहन स्मृति जीवन भरि मोन मे बसल रहैत अछि। संगी लोकनि, एहने स्मृति सबकेँ बचेबाक एकटा प्रेरक कथा उत्तर प्रदेशक बस्ती जिलासँ सोझा आयल अछि। बस्तीक आकाश गुप्ता अपन गामक मनोरमा नदीकेँ देखि कऽ बहुत दुखी होइत छथि, किएक तँ जाहि नदीकेँ ओ बचपनमे साफ आ जीवन्त देखने छलाह, समयक संग ओहि नदी मे प्लास्टिक जमा

0: होमय लागल छल, गंदगी बढ़त चलि जा रहल छल। श्रीमान आकाश ई तय कयलनि जे शिकायत नहि करता, एकटा नव शुरुआत करता। शिकायत नहि, शुरुआत मंत्र बनि गेल। ओ अपन मित्र सबकेँ संग लेलनि। मात्र जाल छल, फावड़ा छल, टोकरी छल आ सबसँ पैघ तागत छल किछु बदलबाक संकल्प। युवा नदीमे उतरैत छल, जलकुम्भी निकालैत छल आ प्लास्टिक आ कचरा बाहर अनैत छल। कतेको बेर एक दिनमे 50-60 किलो धरि कचरा नदीसँ निकालल गेल। धीरे धीरे मनोरमा नदीक ओ हिस्सा फेरसँ साफ देखाय लागल। लग पासक लोक सभक ध्यान सेहो एहि काज दिस गेल। लोक सबमे स्वच्छताकेँ लऽ कऽ जागरूकता बढ़ल। संगी लोकनि, एहने एकटा प्रेरक कथा गोवासँ सेहो सोझा आयल अछि। गोवाके बालकृष्ण अय्याजी रिटायर्ड टीचर छथि, मुदा समाज लेल काज करबाक हुनक उछाह आइयो ओहिना छनि। हुनका मड्डी तोलाप इलाकामे पानिक समस्या बहुत परेशान करैत छलनि। ओहो समाधान लेल काज आरंभ कयलनि। बालकृष्ण जी पाइपलाइन बिछेबाक काजमे महत्वपूर्ण भूमिका निमाहलनि। एहिसँ कतेको घर धरि जल पहुँचल। जाहि परिवारकेँ पानि लेल रोज संघर्ष करय पड़ैत छलैक, हुनका लेल ई बहुत पैघ उसास बनल। संगी लोकनि, पछिला मास हमरा एकटा बहुत नीक अनुभव भेल। एकर सम्बन्ध मोनक बातसँ सेहो जुड़ल अछि, तैँ आइ हम एकर चर्च अपने लोकनिसँ करय चाहैत छी। तमिलनाडु केर नागरकोइलमे हमर भेंट एकटा शिक्षकसँ भेल। लगभग 3 दशक पहिनहुँ हम हुनकासँ भेंट कयने छलहुँ। हम बात कऽ रहल छी गिरिजा अम्मा जी केर। एहि भेंटघाटक क्रममे किछु युवा छात्र लोकनि सेहो हुनका सङ्ग छलखिन। संगी लोकनि, गिरिजा अम्मा जी लगभग 15 टा स्कूल चलबै छथि। एहिमे चेन्नई केर जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विश्वविद्यालय बहुत प्रमुख अछि। हुनक देशभक्ति केर भावना सभ भारतवासीकेँ प्रेरित करयवला अछि। ओ मोनक बातसँ प्रेरणा लऽ कऽ देशक अनेक सैनिक लेल योगदानक संकल्प लेलनि। एकरा लेल ओ अपन सभ स्कूलक छात्र लोकनिकेँ प्रेरित कयलनि। ओ बच्चा लोकनिसँ कहलनि जे ओ वीर जवान लेल प्रत्येक दिन 1 टका योगदान दैथि, अर्थात 1 सालमे प्रत्येक छात्र दिससँ 365 टका जमा भेल। एहि छोट छोट योगदानसँ लगभग 40 लाख टाका इकट्ठा भेल। गिरिजा अम्मा जी एहि पूरा राशि केर चेक हमरा सौंपलनि। हुनकासँ बातचीतक क्रममे हम अनुभव कयलहुँ जे माँ भारतीक प्रति हुनक समर्पण कतेक गहीर छल। पछिला वर्षे चेन्नई केर पहिल हिंदू विद्यालय अपन 50 वर्ष पूरा कयलक अछि। देशक शिक्षा आ सांस्कृतिक गौरवकेँ आगू बढ़ेबामे एहि स्कूल नेटवर्क के भूमिका बहुत प्रशंसनीय अछि। हम एहिसँ जुड़ल सब गोटाकेँ बहुत बहुत बधाई दैत छी आ ओहि छात्र लोकनिक सेहो विशेष सराहना करैत छी जे अपन वीर सैनिक लेल योगदान देलनि। संगी लोकनि, भारतक सबटा गाममे, सब शहरमे किछु ने किछु एहन भऽ रहल अछि जे हमरा प्रेरणा दैत अछि। कतेको बेर एहि प्रयास सभक बेसी चर्चा नहि होइत अछि, मुदा जखन हम एकरा जनैत छी तऽ ई विश्वास आर मजगूत होइत अछि जे देश अपन लोकक शक्तिसँ आगू बढ़ि रहल अछि। हमर अहाँ सबसँ आग्रह अछि, अपना लगपास एहने प्रयास सबकेँ अवश्य देखू। जे लोक समाज लेल नीक काज कऽ रहल छथि हुनका चिन्हू, हुनक सराहना करू, हुनकासँ सीखू आ भऽ सकय तऽ अपनहु कोनो नीक काजसँ जुड़ू। अगिला मास मोनक बातमे किछु आओर प्रेरक कथा सभक सङ्ग फेर अपने लोकनिसँ जुड़ब। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मन की बात के मैथिली अनुवाद का प्रसारण। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं आज की हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम। लीजिए सुनिए फिल्मों से लिए कुछ देशभक्ति गीत।

फिल्मों से लिए कुछ देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे। ये फिल्में थी काबुलीवाला और जिस देश में गंगा बहती है। गायक कलाकार थे मन्ना डे और मुकेश। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: फूल प्रकृति में घुराए लगते ऊर्जा आबा वाला काल ले
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर
5: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय रात के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
7: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
6: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
7: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
6: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
7: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
6: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके,

0: तेजस्विन शंकर देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श

0: होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि AI तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए AI युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में

0: मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news.

0: the headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashwani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of Class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkhom town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Ayya, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the lair of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
1: Girija Amma ji करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें। इस छोटे-छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि मां भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
0: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर,

0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 people killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty clinch men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़्फ़ुज़, मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासिद के तहत अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेल कूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑन मार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है और IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शहरियों की समाजी मकासद के तहत उनके गैर मामूली तआवुन पर तारीफ की है। उन्होंने इन शहरियों के तहरीक देने वाले इकदाम और हसूलियाबियों को उजागर किया। आकाशवाणी पर अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने केरलम के साजी वाल शेरिल के बारे में इजहार ख्याल किया, जो एक मुफ्त स्विमिंग क्लब चलाते हैं जिससे 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में मदद मिली है। वज़ीर आज़म ने उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के आकाश गुप्ता की कोशिशों का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मनोरमा दरिया की सफाई की मुहिम शुरू की थी, जिससे इस दरिया को दोबारा साफ सुथरा बनाने और समाज में माहौलियाती बेदारी को फरोग देने में मदद मिली। जनाब मोदी ने बाल कृष्णैया की दास्तान भी बयान की, जो गोवा के एक रिटायर टीचर हैं, जिन्होंने पानी की पाइपलाइन डालने में मदद देकर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए काम किया। उन्होंने तमिलनाडु की एक टीचर गिरिजा अम्मा की सिपाहियों की बहबूद के तहत उनके तआवुन को भी सराहा।
2: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
1: खेल कूद के मैदान में भारत की हसूलियाबियों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने एथलीट्स गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को झारखंड के शहर रांची में सीनियर एथलेटिक्स की फेडरेशन के कौमी मुकाबलों में नए कौमी रिकॉर्ड्स बनाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने एथलीट गुरिंदर वीर सिंह और उन्मेष गुजर के 100 मीटर दौड़ के रिकॉर्ड्स तोड़ने के बारे में उनसे बातचीत भी की। जनाब मोदी ने मुल्क के बेशबहा सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ की हुकूमत की लगातार कोशिशों के बारे में भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में मल्हार के मकाम पर पाउंडवंशी संतलत के महर्षि बलार्जुन से मुतल्लिक 6वीं और 7वीं सदी की 3 नायाब तांबा प्लेटों की हालिया दरियाफ्त का भी जिक्र किया।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी

0: महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: वजीर आजम ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी जिक्र किया, जिसके दौरान चोल अहद की कदीम तांबा प्लेटों को वापस भारत के सुपुर्द करने की एक खसूसी तकरीब मुनक़िद की गई। उन्होंने कहा कि इन बेशबहा फनपारों को वापस किए जाने से लोगों में, खासतौर पर दुनिया भर में, तमिल बिरादरी को फख्र महसूस हुआ है और उनमें जोश व जज्बा पैदा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि इन ताबा प्लेटों से चोल सल्तनत की हसूलियाबियों और समंदरी ताकत के बारे में काबिल कदर गहरी मालूमात फराहम होती हैं। वजीर आजम ने नमामि गंगे पहल के तहत तहफुजाती कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नहर में फंसी हुई गंगा की डॉल्फिन को कामयाबी के साथ बचाए जाने का जिक्र किया, जिसमें गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली भारत की पहली एम्बुलेंस की मदद हासिल की गई।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने आज कहा है कि ख्याल और कार्रवाई में इख्तिरा से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। मुल्क के नए CDS की जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणि ने मुसल्लह फौजों, सनात, तालीमी इदारों, स्टार्टअप्स और तहकीक के इको निज़ाम के माबैन मजीद इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया, जो जदीदकारी के लिए बुनियादी हैसियत का हामिल हैं। साबिका फौजियों और वीर नारियों के बहबूद के तई मुसल्लह फौजों के पाबंद रहने की बात दोहराते हुए उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुसल्लह फौजें खुद को वक्फ करते हुए हिम्मत, इज्जत और पेशेवराना महारत के साथ मुल्क की खिदमात अंजाम देती रहेंगी। आज सुबह सवेरे लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के सब्जार में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने नेशनल वार मेमोरियल पर गुलदायरा भी नजर किया। DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ने आज हरियाणा के जिले पंचकुला में वाकई रामगढ़ में अपनी तनसीब पर एक ताकतवर बम का कामयाब तजुर्बा किया है। ये जामे हिफाजती इंतजाम के दौरान भारतीय फजाइया के सीनियर अफसरान की निगरानी में अंजाम दिया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में भारत टेक्नोलॉजी फॉलोअर से एक टेक्नोलॉजी लीडर बन गया है। दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुल्क जदीद तकनीकों की तरक्की में मुसलसल अहम रोल अदा कर रहा है और आलमी सतह पर इख्तिराआत को नई जहत देने में मदद कर रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों और टेक्नोलॉजी के भारतीय इदारों की साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की एक टीम को ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है, जिसे 12वीं जमात के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने के लिए इसके ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निज़ाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि इस निज़ाम की खामियों की निशानदेही कर ली गई है और इनका किस तरह कोई गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में BJP ने बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 इदारों पर जीत हासिल की है। इन इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती आज की गई वोटिंग 17 मई को कराई गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में शानदार जीत हासिल की है। उसने धर्मशाला, सोलन और मंडी सीट जीत ली है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ पालमपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीट जीती है। धर्मशाला में BJP ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने 5 वार्ड्स में जीत हासिल की है। सोलन में BJP ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड्स हासिल किए हैं। मंडी में BJP ने 14 में से 12 जबकि कांग्रेस ने 1 वार्ड्स में जीत हासिल की है। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 वार्ड्स में से 11 वार्ड्स में वाज़े अक्सरियत हासिल की है, जबकि BJP ने 4 वार्ड जीते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती भी मुकम्मल हो चुकी है, अगरचे ये इंतखाबात पार्टी निशान

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या,
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज़ फ़ातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा,
3: हाथ नहीं लगाना,
4: हाथ नहीं लगाना,
3: छोड़ दो। देवी ने तुम्हें धन दिया है और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है, पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। धाम पर बैठकर तमाशा देखना आसान, पर खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। मैं देवी को बताऊंगी कि एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती, देवी तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी।
1: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
2: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहाँ जिंदगी को जिंदगी की नज़र से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल,

0: तो बस यूँ समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूँ जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
1: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
0: जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था, मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहां तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
2: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल, ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
1: श्रोताओं, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
0: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदल कर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
2: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

0: भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच

0: आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

फिल्म बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत राम

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत।

0: बांसुरी।
1: सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और।

स्थिति के उपकरण बदल गए पहले कारण करण।

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।
2: हर

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You were listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadappa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of कंची कामकोटि आस्थाना विद्वान।
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुचरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री वी एन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुचारई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई। ही इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
0: श्री येरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नू कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नू कोरी युनन्नुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पटनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल बी लिसनिंग टू

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: You are now listening to the saxophone recital by Sri Asnapurappu Yerraya in the Ravivasari Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. Sri Yerraya next presents Samagana Priyakaram, a composition of Guru Surajananda in Rag Keeravani, set to Misra Chapputal.

0: श्री येरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। डोलू पर संगति दी श्री वी एन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: You have been listening to the saxophone recital by Sri Asanapuram Yerraya and Party in the Ravivasari Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on special dolu by Sri V. N. Balachandar. This program was recorded in the studios of Akashwani Kadapa, and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.

0: करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their

पर कल सुबह 5:49 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।